0: कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
1: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
0: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जा रहा
1: है। तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे। और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552। स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपियो जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई

0: गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
4: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
5: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज़ जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
6: विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अचरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 169 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0111-2334-8101-2334-44। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
7: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
9: बाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
10: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
9: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
11: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
12: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
13: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
14: बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर है बिंदास मॉर्निंग एंड मंडे की सुबह। और सुबह की रिमझिम फुहारे जैसे कह रही है, नई सुबह है, नई उम्मीद और कुछ नया सीखने का दिन। सोमवार को बोझ समझ कर नहीं, नई शुरुआत समझ कर अपनाइए। आज मौसम भी सुहाना है, बच्चे अपनी मंजिल की ओर स्कूल जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं। याद रखिए एवरीवन, हर सुबह जिंदगी हमें एक नया मौका देती है, बस जरूरत है उसे मुस्कुराकर अपनाने की। और बाहर रिमझिम फुहार पड़ रही है, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है। और देखिए, हम भी अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं एंड बहुत सारे जो लिसनर ऑन द वे अभी हमें कार में सुन रहे हैं, तो वो भी अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं, कुछ अभी तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी से। और हमारी जो विमेन है वो ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी है अभी। सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत जल्दी से गुजर जाता है एंड खूबसूरत भी होता है। मैं आपकी अपनी खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ एंड मंडे का दिन, वीक का पहला दिन, और हाँ, मंथ का लास्ट दिन 31 अगस्त है आज एंड मंडे की सुबह। और समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 8:20। करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी नो इन्फॉर्मेशन खुशी लेकर आई है आपके लिए एंड सब आपसे शेयर करेगी। आप बने रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 पर। गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स। ओहो, आज चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है, इतना सुहाना सा मौसम जो है, तो बनाइए फिर, देर किस बात की है। जब तक आप चाय पकौड़े बनाते हैं ना, तब तक हम आपको एक शानदार सा ट्रैक सुनवाते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ, बाहर हल्की हल्की फुहारें और हवाओं में ठंडक है और मौसम ने एक खूबसूरत सी चादर ओढ़ रखी है। लेकिन दोस्तों, मौसम चाहे जैसा भी हो, अगर दिल में मंजिल पाने का जुनून हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए। फुहारें रास्तों को सुहाना बना सकती हैं, लेकिन मंजिल तक हमें खुद ही चलकर जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज 31 अगस्त के इतिहास के सुनहरे पन्नों पर एक नज़र डालते हैं। उन खास लम्हों को याद करते हैं जब देश दुनिया में कुछ ऐसा घटा जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। आइए जानते हैं 31 अगस्त से जुड़ी कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। दोस्तों, 1997 में ब्रिटेन की लोकप्रिय राजकुमारी डायना की पेरिस में कार हादसे में मौत हुई। दोस्तों, आज ही के दिन 1957 में मलाया ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल की, जिससे आज के मलेशिया की स्वतंत्रता की नींव माना जाता है। 1920 में अमेरिका में पहली बार रेडियो पर समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया था। दोस्तों, 1995 पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी चंडीगढ़ में बम धमाके में उनकी हत्या हुई थी। एंड 1957 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी थी। आज ही के दिन 1968 में भारत ने स्वदेशी रोहिणी रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। और दोस्तों, 1919 में प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था आज ही के दिन। में भारत क्रिकेट के दिग्गज तेज गेंदबाज जवागर श्रीनाथ जी का भी जन्म हुआ था। तो ये थी 31 अगस्त से जुड़ी देश दुनिया की कुछ बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक सिर्फ बीती तारीख का नाम नहीं, बल्कि उन घटनाओं की कहानी है जिन्होंने आज की दुनिया को आकार दिया। और चलिए दोस्तों, अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो गुड मॉर्निंग का मैसेज पहुंचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है। अपने मुरादाबाद के बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ खूबसूरत से गीत जो आपकी सुबह को बनाएंगे ब्यूटीफुल मौसम के साथ।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका। मंडे की सुबह है, खूबसूरत सारा दिन है एंड मंथ का लास्ट डे है और आरजी खुशी आपके साथ है विनास मॉर्निंग शो में। और दोस्तों, आपके यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज भी आ गए हैं बैक टू बैक, मैं उनको भी शामिल करूँगी। एंड अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी मेट्रो इन दिनों से। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं विकी सागर जी हिमगिरी मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग आरजी खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, हाय गुड मॉर्निंग मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बाबू अंसारी जी, शुक्रिया, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। अगला मैसेज हमारे पास आया मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी का, आपको और आपके एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको भी जय श्री कृष्णा। दोस्तों, समय हुआ है 8:47 और मैं आपसे आज की सुबह एक सिंपल सा एक बहुत ही प्यारी सी बात मालूम करने वाली हूँ। दोस्तों, कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा दौर आया है जब परेशानियाँ बहुत थी, मन बिल्कुल डाउन था, लेकिन फिर भी आपने खुद को संभाला और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी? उस मुश्किल वक्त में आपने खुद को कैसे संभाला? क्या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इंसान या फिर कोई छोटी सी उम्मीद थी जिसने आपको हिम्मत दी? तो आज का थॉट ज़रूर आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, शायद आपके एक विचार से सामने वाले को हेल्प हो जाए। तो ज़रूर अपना थॉट हम तक शेयर कीजिएगा आज की मॉर्निंग।

बस मैं आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक न्यूज पर, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और अभी लौट कर आती हूँ तो बताती हूँ अपने मुरादाबाद शहर में क्या हो रहा है।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे खुशी के साथ, और ये है आपका अपना शहर का पहला फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, रसोई के बजट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीनी के दाम में महज एक महीने में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है, एंड बाजार में चीनी की कीमत

और देखिए जो चाय लवर है ना वो तो चीनी खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि चीनी चाय कितने भी महंगी हो जाए चाय नहीं छोड़ेंगे वो। आप भी मेरी तरह चाय लवर हो ना? हाँ, बट मैं दिन में सिर्फ एक ही बार चाय पीती हूँ, वो भी मॉर्निंग में, लेकिन आज से वो भी नहीं पीकर आई हूँ क्योंकि सुबह सुबह जल्दी आना था। लेकिन हाँ, आप गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लीजिए और खुशी के साथ बने रहिए। और दोस्तों अपना मैसेज भी पहुँचाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ खूबसूरत मैसेज आए हैं आज की मॉर्निंग। एंड अमित वर्मा जी का मैसेज हमारे पास आया है हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग आरजे खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। आई होप सब अच्छे ही होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे क्योंकि मंडे का दिन है। अपने आप में बहुत खूबसूरत सा ऑफिस जाने का एक न्यू हफ्ते की शुरुआत है, बहुत सारे काम होते हैं संडे के बाद। वैसे मंडे में ना स्कूल हो या फिर ऑफिस हो जाने का मन नहीं करता ना लेकिन जाना तो पड़ेगा ना दोस्तों। चलिए मैं अभी आपको सुना दी कुछ ट्रैक एंड उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत। आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो भी खुशी आपको बताएगी। आप बने रहिए खुशी के साथ, मुस्कुराएगा एंड सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
1: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
0: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
1: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और वक्त मैं आपको बता देती हूँ, 9:12 हो गए राइट नाउ। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान पानी पीकर 20 किलो वजन घटा सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ऐसा ही हुआ है। चीन की एक महिला ने अपना वजन कम करने के लिए लगातार 15 दिन उपवास किया एंड सिर्फ पानी पिया है। और क्या है पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगी अभी। एंड हमारे पास कुछ मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। निरांशी का मैसेज हमारे पास आया है एंड साथ में अमित, रितु, शंकरलाल हमारे साथ आज की सुबह जुड़े हैं। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि आज कौन कौन सी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, हर दिन अपने आप में स्पेशल होता है एंड हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती हैं। और आज क्या कुछ न्यू है वो मैं आपको बताती हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं।

दोस्तों, हर जिंदगी अनमोल है और एक सही समय पर मिलने वाली मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। एंड आज 31 अगस्त है और आज मनाया जाता है इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ओवरडोज के खतरों के प्रति जागरूक करना और नशे से जुड़ी समस्याओं के कारण जान लेने वाले एंड लोगों को याद करना, और हमें समझाना होगा कि नशे की समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति को जज करने की बजाय जो नशे की समस्या से जूझ रहे हैं, उसे समझें, सहयोग करें और सही डॉक्टर की मदद दिलाने की कोशिश करें। याद रखिए दोस्तों, जागरूकता जिंदगी बचा सकती है और सही समय पर मदद एक नई शुरुआत दे सकती है।

और मैं अभी बस वापस आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। एंड आज और क्या कुछ स्पेशल है एंड बॉलीवुड में सब आपको खुशी बताने वाले हैं यहाँ पर।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है विनास मॉर्निंग एंड आपकी दोस्त आरजी खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, मैंने आपसे एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक बात पूछी थी कि आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा दौर आया है जब परेशानियां बहुत ही, मन बिल्कुल उदास था, लेकिन फिर भी आपने खुद को संभाला और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उस मुश्किल वक्त में आपने खुद को कैसे संभाला? क्या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इंसान या कोई छोटी सी उम्मीद थी जिसने आपको हिम्मत दी? और हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत मैसेज आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे पास यहाँ पर श्वेता जी का मैसेज आया है न्यू मुरादाबाद से। कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहती हैं कि मैम, मैं जब बहुत परेशान होती हूँ तो खुद को याद दिलाती हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर सुनील जी का आया है, सुनील गुप्ता जी का। एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं लाइन पर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग आरजी खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग। और सर कहते हैं कि मेरी लाइफ में कई उतार चढ़ाव आए हैं, मैं उस वक्त थोड़ा रुका भी हूँ, खुद को संभालता भी हूँ और फिर नए सीधे से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि गिव अप करना सोल्यूशन नहीं होता। एग्जैक्टली राइट सर।

नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है पूजा जी का विकास नगर से, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपको सुबह सुबह सुनकर अच्छा लग रहा है, थैंक यू। प्रीति जी कहती हैं कि मैंने सीखा है हर किसी की जिंदगी में ना, हर किसी की लाइफ में अच्छा बुरा समय आता है, इसलिए मुश्किल वक्त में बस पेशेंस रखती हूँ और खुद से कहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी बुरा वक्त हो तो, अमित वर्मा जी के यहाँ पर मैसेज आया है और सर कहते हैं कि खुशी जी बुरा वक्त हो हर किसी के जीवन में आता ही है, इससे निकलने का बेहतर तरीका सिर्फ अच्छी सोच और अपने लोगों का साथ, दृढ़ निश्चय और ईश्वर का साथ, क्योंकि बुरा वक्त आपको कुछ सिखा कर ही जाता है और आगे बढ़ने का तरीका देता है। एग्जैक्टली राइट सर, आई एग्री विद यू, थैंक यू सो मच। आज की सुबह आपने अपने विचार, अपने थॉट शेयर किए हैं मेरे साथ, तो चलिए दोस्तों अभी मैं बस वापस आती हूँ कुछ और म्यूजिकल ब्रेक के, इस पर आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए एंड एक अमेजिंग ट्रैक आज की सुबह मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, हरनूर की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अब बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद शहर में आज कैसा वेदर रहने वाला है। एंड वेदर अपडेट भी मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मौसम कैसे रहने वाला है ये जानना भी बहुत जरूरी है ना। दोस्तों, मुरादाबाद में आज मौसम रहेगा सुहाना और बादलों से घिरा हुआ। अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस एंड न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हल्की सी मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना है। हवा में नमी भी करीब 84 से 86% रहेगी। तो साथ में ना छाता ले जाना मतलब भूलिएगा नहीं, और रेनकोट भी अपने साथ रखिएगा। इसे सुहानी मौसम का आनंद लीजिए। मैं आपकी अपनी आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और हमारे पास कुछ मैसेज भी आए हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमें यहाँ पर गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्दी से रजा हुसैन जी, और ये कहते हैं कि मैम बारिश हो रही है रात से। बारिश का आनंद लीजिए, लेकिन हाँ सावधानी के साथ। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी कश्यप जी का, और ये कहती हैं हमारी तरफ से आप सबको सुबह की गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, सिद्धि यादव, विनायक यादव एंड अनुराधा यादव, रंजीत यादव जी का, और ये कहती है कि आज हमारी अनुराधा बुआ जी का बर्थडे है। ये मैसेज पहुंचा दें काशीराम सम्राट नगर से। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज और कौन कौन से सेलिब्रिटीज का बर्थडे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपकी बुआ जी को आरजे खुशी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, एक और ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अभी लौट कर आएंगे। एंड एक फिल्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जैसे ही हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो सबसे पहले वो भजन हमारी कानों में एकदम ना जैसे मिश्री घुल जाती है ना, कानों में मधुर मधुर सी आवाज़ सुनने को मिलती है, एक अलग ही पॉजिटिव वातावरण हो जाता है। जैसे ही उस इंस्टाग्राम पर उस भजन को सुनते हैं, भक्तिमय माहौल हो जाता है। किस फिल्म की बात कर रही हूँ मैं, अभी लौट कर आऊँगी तो आपको बताऊँगी। आप बने रहिए खुशी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शुभ नाम है विनास, मॉर्निंग खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के जिसने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ लोगों के दिलों में भी जगह बना ली है। सिर्फ 2 करोड़ रुपए की बजट में बनी हनुमान अंश ने बिना बड़े प्रमोशन और बिना ज़्यादा चर्चा के शानदार कमाई की शुरुआत। भले ही उनकी धीमी रही है, लेकिन तीसरे हफ्ते में फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 23 दिनों में भारत में करीब 27.38 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है हनुमान अंश फिल्म ने। लेकिन इस फिल्म की खासियत सिर्फ उसकी कमाई नहीं है दोस्तों, इसे देखने जाने जो जा रहे हैं दर्शक ना, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। फिल्म से जुड़ी मुंडीली भजन मैंने तेरे ही भरोसे प्रभु सागर में नैया डार दई भी लोगों के दिलों को छू रहा है। और कहा जाता है कि इस भजन को गाने वाले कलाकार देख नहीं सकते, लेकिन उनकी आवाज़ में जो श्रद्धा, विश्वास और भाव है, वो सुनने वाले को भीतर तक महसूस होता है। शायद यही असली खूबसूरती है जब आवाज़ आंखों से नहीं दिल से दिखाई देती है, तो वो सभी के दिलों में उतर जाती है। आप सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और जैसे ही आप भी इंस्टाग्राम ओपन करते होंगे तो आपको भी सुनाई देता होगा ये भजन, एंड बहुत ही खूबसूरत सा है।

इस वचन के बारे में जितना हम बोलें उतना कम है, इनो शब्द कम पड़ जाते हैं। इतना खूबसूरत ये भजन है, और जब विश्वास प्रभु पर होता है ना, उनके भरोसे जब हम अपनी नैया को सौंप देते हैं, तो यकीन मानिए एवरीवन, वो पार लगती ही लगती है। एंड बस खुद पर और ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं अभी लौट कर आती हूँ, तो आपसे पूछूंगी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, कड़क क्वेश्चन, ठीक है? तो आप तैयार हो जाएगा, एंड बस मैं अभी वापस आती हूँ। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और खुशी के साथ बने रहिए।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: पूछो जरा पूछो कड़ा क्वेश्चन।
2: बिल्कुल दोस्तों, आपको भी इंतजार था ना कड़े क्वेश्चन का, तो एक कड़क सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज के सुबह बिंदास मॉर्निंग शो में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है, एंड मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, मैं ना एक डायलॉग प्ले कर रही हूँ, आपको बताना है कि जो मैं डायलॉग प्ले कर रही हूँ कौन से फिल्म का है, उस फिल्म का नाम आपको मुझे बताना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही है, एंड एक्टर्स एक्टर भी काफ़ी कमाल के रहे हैं, और ये डायलॉग मैं आपको सुनवा देती हूँ।
3: अंकल जी, लक्ष्मी जी की कृपा से पैसा तो इतना है कि धनतेरस पे आप ही की दुकान खरीद के आप ही को गिफ्ट कर दें। अंकल जी, लक्ष्मी जी की कृपा से पैसा तो इतना है कि धनतेरस पे आप ही की दुकान खरीद के आप ही को गिफ्ट कर दें।
2: हाँ जी दोस्तों, मुझे बताइएगा जो मैंने अभी डायलॉग प्ले किया है ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है। बस इतना सिंपल सा आपको काम करना है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। जल्दी से अपना जवाब पहुंचाएगा, एंड जो सबसे पहले राइट आंसर देंगे वो बनेंगे आज के लकी सुपरस्टार बिंदास मॉर्निंग शो के। तो बस मैं लौट कर आती हूँ एक अमेजिंग ट्रैक के उस पर, आप कहीं मचाइए एंड जल्दी से मुझे आंसर पहुंचाएगा।
4: ले लाके रखेगा, ज्यादा सहर नहीं चाड़ी।
5: ठीक है ठीक है ठीक है।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: आपको क्या लगता है एवरीवन, इतने प्यार से अगर कोई सॉरी बोले तो मान जाना चाहिए ना, है ना? हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी से नाराज हैं या कोई आपसे नाराज है तो प्यार से सॉरी बोलिएगा तो रिश्ते वहीं पर ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मैंने आज की सुबह ही कड़क क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी सा है, लेकिन हमारे जो लिसनर है ना वो थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ चलिए, मैं एक छोटा सा क्लू भी आपको दे देती हूँ। दोस्तों, एक ऐसा शहर है जो अपने झुमके के लिए देश भर में मशहूर है, अब तो आप समझ गए होंगे ना। एंड मैंने क्लू भी दे दिया है और मैं ये डायलॉग अगेन प्ले कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि डायलॉग में कौन सी फिल्म, बस आपको बताना है कि जो डायलॉग में यहाँ पर प्ले कर रही हूँ ना, उस फिल्म का क्या नाम है। इतना सिंपल सा आपको काम करना है आज की मॉर्निंग। तो मैं एक बार फिर से उस डायलॉग को प्ले कर देती हूँ।
1: आप को गिफ्ट कर दे।
2: हमें
1: अंकल जी, लक्ष्मी जी की कृपा से पैसा तो इतना है कि धनतेरस पे आप ही की दुकान खरीद के आप ही को गिफ्ट कर दे।
2: हमें
1: अंकल जी, लक्ष्मी जी की कृपा से पैसा तो इतना है कि धनतेरस पे आप ही की दुकान खरीद के आप ही को गिफ्ट कर दे।
0: हाँ जी, तो बस इतना सा सिंपल सा आपको मैंने आज का कड़क क्वेश्चन दिया है। एंड अब बताइएगा कि जो डायलॉग मैंने प्ले किया है कौन सी फिल्म का है। एंड अब तो मैंने आपको क्लू भी दे दिया है ना, तो जल्दी से बताइए इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप। हाँ एवरीवन, आप तो मूवी देखने वाले हैं एंड फटाक से आप जवाब दे देते हैं, तो अभी भी आप अपना जवाब पहुंचाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। तो एक और ट्रैक एंड उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ। एंड आज की सुबह कौन बनते हैं हमारे शो के लकी सुपर स्टार, वो भी हम आपको बताएंगे। तेरे

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

क्या बात है मैडम जी, इतना मत शर्माइए, बहुत सोहनी लग रही हो तुसी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली आ गया है वो वक्त जिसका सबको इंतजार था। एंड आज हमारे शो के कौन बनते हैं लकी सुपरस्टार, आपको बता देते हैं। सबसे पहले राइट आंसर हमारे पास हमारे कौन है आज की लकी स्टार, वो आपको बताते हैं। लकी सुपरस्टार जिन्होंने दिया है सही जवाब, एंड सबसे पहले तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जोरदार क्लैपिंग हो जाए आज की सुबह। तो ये जोरदार तालियां हमारे लिस्टर के लिए जिन्होंने दिया है सही जवाब। एंड आज की सुबह मैंने बहुत सिंपल सा आपसे एक डायलॉग प्ले किया था और आपको बताना था कि डायलॉग कौन से फिल्म का है। आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए, मैं सोच नहीं सकती अपनी पर। और मैंने आपको एक छोटा सा क्लू भी दिया था, एंड मैंने कहा था दोस्तों एक सिटी है जो झुमके से पूरे देश में पॉपुलर है, एंड वो सिटी है बरेली। और सही जवाब हमें पहुंचाते हैं डी के अरोड़ा जी, चंदन नगर मुरादाबाद से, फ्रॉम द मूवी बरेली की बर्फी। यस, राइट आंसर यही है। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज हमारे शो की बनते हैं आप लकी सुपरस्टार। और बाकी और श्रोताओं ने भी सही जवाब दिया है, लेकिन बहुत देर से दिया है, बहुत सोच कर दिया है ना। कोई बात नहीं, आपने सही जवाब दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सभी को बहुत बहुत मुबारक है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, बरेली की बर्फी फ्रॉम द मूवी। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, बस राइट आंसर पहुंचाया है, उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अफरोज फातिमा जी का, और अफरोज भी सही आंसर के साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, फ्रॉम द मूवी बरेली की बर्फी। यस। और दोस्तों मैं अभी आपके साथ रहने वाली हूँ पूरे 12 बजे तक, एंड अभी शो में नेक्स्ट लेकर हाजिर हूँ, आपको पता ही है ना मॉर्निंग मसाला। हाँ, तो बस आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है, तो आप मुझे फटाफट से अपने मैसेज पहुँचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बस मैं लौट कर आती हूँ एक प्यारे से छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के, उस पर करेंगे फिर दूसरे शो की शुरुआत।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
5: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला शो विद आरजे खुशी। दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। लोग क्या कहेंगे, कौन साथ देगा या कौन नहीं, इन बातों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, क्योंकि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। खुद पर विश्वास रखिए, कोशिश करते रहिए एंड शायद आपकी अगली कोशिश ही आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कामयाबी बन जाए। बिलीव इन योर सेल्फ एवरीवन, खुद पर विश्वास रखिए एंड हर चीज वो आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और दोस्तों, समय हुआ है 10:32। आपके यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आ गए हैं बैक टू बैक, उनको भी हम बिना किसी देरी के शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है। सबसे पहले ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अलीशा मुरादाबाद से। और ये भी सही जवाब की साथ जुड़ी थी, फ्रॉम द मूवी बरेली की बर्फी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं बाबू अंसारी जी, इरशाद अंसारी जी एंड शारिक अली जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, तेरे आने की खुशी में मेरा दिल निकलना चाहे। हाय, इन्होंने नाम नहीं लिखा है लेकिन गाना हमें पहुँचाया है आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। दोस्तों, आज राजकुमार राव का भी बर्थडे है एंड आप भी उनके ऊपर फिल्माए गए ट्रैक सुनना चाहते हैं ना, तो मुझे जल्दी से मैसेज कीजिएगा बिना किसी देरी के। एंड बहुत सारी बातें आज हम शो में करने वाले हैं, तो बस जुड़े रहिए, बने रहिए खुशी के साथ FM मुरादाबाद 89.6 पर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
3: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
2: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
3: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मुरादाबाद 89.6 पर। आरजी खुशी आपके साथ है और शो का नाम तो आपको मालूम ही है। ओहो, नहीं मालूम है, चलिए मैं बता देती हूँ। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर है और अगर हौसला बड़ा हो तो कोई भी ऊंचाई मुश्किल नहीं है। 43 साल की शिवानी ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराकर एक शानदार मिसाल कायम की है। बर्फ से ढकी हजारों फीट ऊंची चोटी, मुश्किल रास्ते और चुनौतीपूर्ण मौसम, लेकिन शिवानी ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर देश का गौरव बढ़ाया। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस उन्हें पूरा करने का हौसला चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई सपना है, उसे उम्र, मुश्किलों या लोगों की बातों से मत रोकिए, कदम बढ़ाइए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों की मुश्किलों से डरते नहीं हैं। और हमारे पास कुछ और मैसेज आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग दी, कैसे हैं आप? रुकैया फातिमा जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये कहती हैं कि मैम, आज मुझे ट्रैक सुनना है अपनी फ्रेंड के लिए। गाना सुनना चाहती हैं माही वे, और इनकी दोस्त हैं द्रक्षा फातिमा एंड इनकी सिस्टर हैं अफरोज फातिमा, आशिया फातिमा एंड नजमा जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए, हाय दी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? द्रक्षा फातिमा जी का ये भी सॉन्ग सुनना चाहती हैं, ओरे पिया। ओ हो, क्या बात है भाई। साथ में रुपया फातिमा है, अफरोज फातिमा है, लाइबा काजमी है और खुशी जी भी है। अरे वाह, और जो लास्ट में आपने रोज भेजा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये भी शो को सुन रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, खुशी जी जय श्री राम, गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, आपको भी जय श्री राम सर, थैंक यू सो मच। आपको हमारा शो पसंद आता है, आप रेगुलर हमें सुनते हैं। और इन्होंने आज की सुबह ना एक थॉट भी शेयर किया है, बहुत ही खूबसूरत सा है, कि भगवान से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए बल्कि हमेशा उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी है बहुत से लोगों के पास उतना भी नहीं है। एग्जैक्टली राइट सर, हमेशा हमें थैंक्सफुल रहना चाहिए, गॉड का भी और अपने पेरेंट्स का भी, हर एक उस इंसान का जो हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, कभी हमें मुश्किलों में हमारा हौसला बनते हैं, कभी गम में वो हमारा साथ देते हैं। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है लाइफ में जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती है तो समझ नहीं आता उस समय कि क्या करें, लेकिन जब उस समय कोई साथी, कोई दोस्त आपका साथ देता है, आपको सही राह दिखाता है, तो वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, उनको भी थैंक यू बोलिएगा। और गौरव जी एक ट्रैक सुनना चाहते हैं, तुम्हें गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो। देखिए सर, सावन तो अब चला गया है, लेकिन हाँ ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। एंड बने रहिए खुशी के साथ, और अभी मुझे कोई थॉट, कोई बात शेयर करना चाहते हैं मुझ तक, तो जल्दी से पहुंचाइए बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, कुछ शब्द ना सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और अमृता प्रीतम जी की लेखनी उन्हीं एहसासों का नाम है। आज 31 अगस्त को हम याद कर रहे हैं पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और कवित्री अमृता प्रीतम जी को। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम, दर्द, जुदाई और जिंदगी के खूबसूरत एहसासों को ऐसी आवाज दी जो आज भी पाठकों के दिलों तक पहुंचती है। साहित्य की दुनिया में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।

और समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:02। यहाँ पर आपके खूबसूरत संदेश भी बैक टू बैक हमें मिल रहे हैं, पहुंच रहे हैं हम तक। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, मैं लिखत फातिमा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डियर, सुबह से आप ही के साथ हैं और अच्छा लग रहा है आज के मॉर्निंग में ये अवसर हमें मिला है दो दो शो होस्ट करने का। और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं, तू बन जा गली बनारस की, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। फ्रॉम द मूवी शादी में जरूर आना एंड अमेजिंग ट्रैक आपने चुना है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि आज राजकुमार राव का बर्थडे है, तो आप उनके ऊपर फिल्माए गए कोई भी ट्रैक सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उनकी फिल्में एक से बढ़कर एक रही हैं और उनकी जर्नी के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कैसे उन्होंने फिल्मी करियर में अपना पहला कदम बढ़ाया, कैसे शुरुआत की, सब कुछ आपको खुशी बताएगी यहाँ पर। तो चलिए सुनते हैं कुछ शानदार ट्रैक, उसके बाद बातचीत करेंगे आपके साथ।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक माही वे। एंड इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी ये प्यारी सी हमारी लिसनर है, एंड इनका नाम हम आपको बता देते हैं। दुरक्षा फातिमा जी ने, एंड कितना प्यारा गाना था ना दोस्तों। मुझे पता था जब आप इस गाने को सुन रहे थे ना तो झूम भी रहे थे, फ्रॉम द मूवी कल हूं ना हूं।

दोस्तों, रिश्ते जब दिल से जुड़ते हैं ना, तो छोटी सी तस्वीर भी बड़ी कहानी कह जाती है। और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका परिणीति चोपड़ा ने अपने बेटे नीर की पहली रक्षाबंधन की बेहद प्यारी सी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें नन्हे नीर ने अपनी बड़ी कजन सिस्टर यानी प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मेरी द्वारा भेजी गई राखी पहनी एंड इस खूबसूरत पल पर प्यार बरसाते हुए परिणीति ने नीर की तरफ से कैप्शन में लिखा है, मेरी प्यारी राखी के लिए मालती दीदी आपका शुक्रिया। वहीं प्रियंका चोपड़ा जी ने भी इस प्यारी सी इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा, दीदी तुम्हें प्यार करती हूँ। बेबी नीर जैसे फैंस और सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है ये पोस्ट। और दोस्तों, भाई बहन का जो प्यार होता है ना, सबसे खूबसूरत होता है। उसमें नोक झोंक भी होती है एंड रूठना मनाना भी होता है, ढेर सारा प्यार भी होता है। और अगर कोई बाहर का थर्ड पर्सन कुछ बोल दे बहन या भाई को, तो फिर देखिए कैसे एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाते हैं। और ये रिश्ता सच में सबसे प्यारा होता है एंड बहुत लकी होते हैं जो बहन भाई एक साथ रहते हैं। और लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड कोई स्टडी की वजह से, जॉब की वजह से, करियर की वजह से बाहर रहते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल आते हैं तो सब एक साथ एकजुट होकर घर में मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा लगता है। और हमारे पास यहाँ पर कुछ और खूबसूरत संदेश भी आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, एक ट्रैक हमें सुनवा दीजिएगा। कोमल शर्मा जी ने अपना मैसेज पहुँचाया आज की सुबह, बिल्कुल सुनवाएंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू, इतना प्यारा सा आपने मैसेज हमें पहुंचाया है आज की सुबह, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, खुशी मैडम जी गुड मॉर्निंग, खेमपाल सैनी जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, धीरे धीरे बारिश पड़ रही है, इस मौसम का आनंद लेने के लिए एक गाना हम सुनना चाहते हैं, दोस्ते इम्तिहान लेती है, बिल्कुल सुनवाएंगे सर, बस आप बने रहिए खुशी के साथ एंड सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए एंड खुशी आपसे कहेगी कि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, तो मुस्कुराते भी रहिए। देखिए, ये जब आप स्माइल करते हैं ना, तो इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है ना, तो प्रे की स्माइल है, क्या कीजिए, इससे सेहत भी अच्छी रहती है, चेहरा भी ग्लो करता है।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। एंड अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक राजकुमार राव एंड साथ में ऐश्वर्या राव पर ये ट्रैक फिल्माया गया था, और सच में बहुत ही प्यारा सा ट्रैक था। सुनिधि चौहान जी की आवाज़ में एंड दिव्या कुमार की बड़ी खूबसूरत आवाज़। और दोस्तों, आज बॉलीवुड के एक ऐसे शानदार एक्टर का बर्थडे है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से साबित किया कि स्टार बनने के लिए सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि टैलेंट और मेहनत भी ज़रूरी है। आज 31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुरुग्राम में जन्मे राजकुमार राव का असली नाम राजकुमार यादव है। आज वो बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर में गिने जाते हैं। राजकुमार राव ने साल 2010 में फिल्म लव, सेक्स और धोखा से बतौर लीड एक्टर अपना डेब्यू किया, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्होंने कड़ा स्ट्रगल किया और छोटे छोटे रोल से अपनी पहचान बनानी शुरू की। काई पोचे, शाहिद क्वीन एंड स्त्री और बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग एक्टिंग का रंग मतलब उनका दिखाई दिया। और राजकुमार राव की सबसे खास बात यह है कि वह हर किरदार में खुद को इतना ढाल लेते हैं कि स्क्रीन पर किरदार ही असली नज़र आता है। तो आज उनके बर्थडे पर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे राजकुमार राव, आप यूं ही अपने शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीतते रहें। और मैंने आपसे कहा था कि आप भी कुछ ट्रैक सुनना चाहते हैं जो राजकुमार राव पर फिल्माया गया है, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और कुछ मैसेज भी यहाँ पर आए हैं तो मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम आरजी खुशी जी। वालेकुम सलाम। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अनामोलक फ्रॉम कश्मीर से, और ये कहते हैं, आपका शो मुझे अच्छा लगता है मैम, हर दिन सुनता हूं मैं आपको, मुझे भी एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा। तन्हाई तन्हाई ट्रैक सुनना चाहते हैं। श्योर सर, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सुनवाऊंगी आपको ये प्यारा सा ट्रैक। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग आरजे जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी परवलीज जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, एक बार फिर से आपको मॉर्निंग मसाला प्रोग्राम में सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। बिल्कुल सर, आपकी दुआएं हैं और आपका संडे भी बहुत ही बढ़िया गुजरा होगा। हाँ जी, बस ठीक था, क्योंकि आप सबसे यहाँ पर मुलाकात हुई कल, संडे में बातचीत हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और ये कहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशंस और गानों का चयन हमेशा की तरह बेहद उमदा लगता है, आपकी आवाज़ और बातें करने का अंदाज भी पूरे प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बना देता है, शुक्रिया आपका। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आसिफ फ्रॉम इटली से, तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं कुछ खूबसूरत गीत और वापस आते हैं। एंड जुड़े रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 पर आरजे खुशी के साथ।

देखिए दोस्तों, हम आपकी केयर भी करते हैं और आपके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, है ना। तभी तो हम आपसे मुलाकात करने आते हैं ना एवरी मॉर्निंग 10 से 12। और अभी आपने ये सुना अमेजिंग ट्रैक, और यहाँ पर कुछ और खूबसूरत मैसेज आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, एंड अरशाद हुसैन अंसारी जी और साथ में सैयद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। खुशी जी, आदाब, कैसी हैं आप? आपका शो हम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, शुक्रिया आपका सर। एक ट्रैक हमें सुनवा दीजिएगा मैम, तेरे नैना मेरे नैनो से बातें करते हैं। बिल्कुल सुनवाएंगे सर ये ट्रैक आपको। अगला मैसेज हमारे पास आया जीत कसाना जी का, माया देवी जी और ऋतिक जी हैं, साथ में अदिति कसाना जी हैं लदावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। अगला मैसेज हमारे पास आया मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी का, हमारी तरफ से आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये ट्रैक सुना चाहते हैं आशिकी फिल्म का, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, और ये भी एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रॉम द मूवी दिल का रिश्ता।

0: नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है अलीशा का मुरादाबाद से, और ये कहती हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे राजकुमार राव सर को, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। तो दोस्तों कुछ ट्रैक तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन अभी कुछ एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है, क्योंकि एड ब्रेक भी चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लौट कर आएंगे, फिर से आपसे बातचीत करेंगे।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

दोस्तों अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल का रिश्ता। और अभी जाने का भी वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले कुछ और यहाँ पर संदेश आए, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है गुलाम जलानी पाशा जी का, और ये ट्रैक सुना चाहते हैं, मेरी जिंदगी है तू। ऑफ कोर्स सर, सुनवाएंगे ये गाना। एंड हमारे पास कुछ टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, और ये टेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाती है नेहा फ्रॉम मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग डियर, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हेलो दी, आप कैसे हैं? मैं प्रीति मुरादाबाद से। प्रीति, आई एम गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की मॉर्निंग आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने शो में पार्टिसिपेट किया, और आपकी चॉइस तो बहुत ही प्यारी होती है ट्रैक की, जो भी आप यहाँ पर भेजते हैं रिक्वेस्ट। क्योंकि दोस्तों हर एक जो ट्रैक हम यू नो आप लोग सेंड करते हैं, भेजते हैं, कोई भी ट्रैक अगर सुनना चाहते हैं तो उसके पीछे ना कोई तो बात होती है। कभी वो गाना किसी यादों से जुड़ा होता है, तो कभी कोई ट्रैक अपने किसी के यू नो करीब ले जाता है, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल को सुकून दे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी ट्रैक होते हैं जो खुशी ने नहीं सुने होते हैं, बट आपकी जो रिक्वेस्ट आती है उनके ज़रिए हमें भी सुनने का मौका मिल जाता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपसे, सी यू सून। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: कैसा है तू? बहुत दिन से तेरी आवाज नहीं सुनी ना, कुछ बोलना यार।
1: क्या बोलूं?
0: अरे कुछ भी बोलना यार।
1: क्या और भी कोई मेरी आवाज सुन रहा है?
0: हाँ नहीं नहीं कोई नहीं है यार, मैं अकेला हूँ यार।
1: देख पल्लू, मैं तुझे सालों से जानता हूँ, बनने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मैं किसी को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ और ना ही किसी की आवाज सुनना चाहता हूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ गई। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य 10 से 19 साल की उम्र में ना सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह से माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सिहतिया जी हैं। सिहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे खुशी जी। देखिए, जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बात जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिहतिया जी। वैसे किशोर अवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: सिहतिया जी, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखिए खुशी जी, कई बातें जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किल बढ़ा सकता है। गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का भी अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सिहतिया जी, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात कर रहे हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं। जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
1: बिल्कुल आरजे खुशी जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे? इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं, उनकी बातें सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सिहतिया जी, अब हम सुन रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर और गृहस्थी तक ही सीमित हो जाती।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है सिहतिया जी?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो गुपचुप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा।
0: ठीक कहा आपने सिहतिया जी। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
1: किशोर अवस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वह कभी कभी ऐसा काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसा बचा जाए, तो वह अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: सिहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहे, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसे में कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से ये फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मनाना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल सिहतिया जी, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
0: लेकिन सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया तो वे कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है?
1: बिल्कुल खुशी जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है, यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूर्ण कार्यक्रम, इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना, इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बातें कर सके।
0: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा है क्या?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना, इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाता था, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, ग्रे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह सभी किसी न किसी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
0: सेहतिया, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
1: देखिए RJ खुशी जी, एक और बढ़िया योजना है ARSH, इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: ये तो बहुत बढ़िया है सीतिया जी।
1: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गई। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
0: बिल्कुल सेहतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी नुकसान होता है।
1: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, चक्कर आते रहते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र आई तो वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उनकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता ना चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
0: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
1: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है, धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
0: क्या बात है सियातिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
1: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे हैं। उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं सिहतिया जी। दोस्तों ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले लेते हैं हम अपने सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए हम जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो दोस्तों सेहत सही
0: तो लाभ कई। सुनते रहिएगा अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सेहत से लाभ कई में। एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूं और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजेरीना।
1: अरे पहले आराम से बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। मगर आरजेरीना, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी बारिश और मुश्किल हालात में भी तुमने हमारे श्रोताओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा।
0: यही तो हमारी सामुदायिक रेडियो की खासियत है, हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो अपने श्रोताओं को कभी अकेले छोड़ते थोड़ी हैं। हम सब उन्हें जानकारी और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज किस मुद्दे पर चर्चा करेंगी?
0: भाभी, बस इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल है तो क्यों ना आज बाढ़ और उससे होने वाली बीमारियों पर ही बात की जाए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती है कई तरह की फैलने वाली बीमारियां और साथ इन बीमारियों से बढ़ने वाले खर्चे, तो इसके लिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
1: सही कहा अर्जरीना, बाढ़ तो खैर बाढ़ है पर बाढ़ का पानी साफ नहीं होता, इसमें नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और तरह तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। यही गंदा पानी जब खाने पीने की चीजों या पीने के पानी में मिल जाता है तो लोगों को बहुत सी बीमारियों की लपेट में ले लेता है। ऐसे में हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
0: और हाँ, जब पानी धीरे धीरे सूखता है तो जगह जगह गड्ढों में पानी जमा रहता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और वहीं सबसे तेज मच्छर पनपते हैं, फिर मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं।
0: भाभी आपने तो देखा ही होगा पिछले साल रामपुर गांव में क्या हुआ था।
1: अरे कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ बाढ़ आई थी, नालियों का गंदा पानी, खेतों की कीचड़ सब मिलकर कुएं और हैंडपंप तक चला गया, लोग वहीं का पानी पीने लगे, बस वहीं से बीमारियां फैल गई। यही हैजा का सबसे बड़ा कारण होता है, कई लोग बीमार पड़ गए। रेशमा को गंदा पानी पीने से अचानक उल्टी, दस्त होने लगा, बच्चा इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ बहुत घबरा गई, पहले तो सोचा कि घर पर ही इलाज कर लें, लेकिन हालात और बिगड़ गए।
0: फिर क्या किया गया भाभी?
1: रेशमा को हम तुरंत गांव के हेल्थ सेंटर ले गए, डॉक्टर साहब ने जांच की और बोले कि रेशमा को हैजा है। इस बीमारी से उसके शरीर का पानी बहुत कम हो गया था, डॉक्टर साहब ने उसे ORS का घोल पिलाया, दवा भी दी, अच्छा हुआ समय पर इलाज मिल गया, इसीलिए रेशमा जल्दी ठीक हो गई।
0: भाभी बाढ़ के समय बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे दस्त, उल्टी और पेट दर्द, ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है?
1: रीना जी, बाढ़ के दौरान पानी गंदा हो जाता है, लोग वही पानी पी लेते हैं या उसे खाना बना लेते हैं, इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़, शरीर में गड़बड़ी के लक्षण हैं।
0: तो भाभी प्राथमिक सावधानी क्या होनी चाहिए?
1: बचाव के लिए साफ पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं, हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर कोई ज्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर से अवश्य दिखाएं।
0: बिल्कुल भाभी, हैजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और ताज़ा भोजन करना। वैसे आजकल गाँव में बहुत लोग बुखार से भी परेशान है, डॉक्टर साहब बोल रहे थे टाइफाइड फैल रहा है, टाइफाइड कैसे होता है?
1: टाइफाइड बुखार साल्मोनेला नामक जीवाणु के कारण होता है, इसका मुख्य कारण है मल मुख मार्ग है, यानी ये संक्रमण तब फैलता है जब दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है। ये दूषित संक्रमण व्यक्ति या बिना लक्षण वाले वाहक के मल से होता है, गंदगी, साफ पानी की, बिना धोए फल, सब्जियां या सड़क का खाना खाने से ये संक्रमण आम तौर पर फैलता है, खासकर बरसात या बाढ़ के बाद ये बीमारी तेजी से फैलती है।
0: अच्छा, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: लक्षण बड़े साफ होते हैं रीना, लगातार तेज बुखार आना, सर दर्द करना, पेट में दर्द रहना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना और कई बार उल्टी भी हो जाती है, ये सब दिखें तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो सकता है।
0: और इससे बचने का क्या उपाय है?
1: इस बीमारी से बचना है तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, जैसे काम करके घर आने पर साबुन से हाथ धो लें, बच्चे खेल कर आए तो उनके हाथ पैर साफ करें, पानी चाहे कुएं का हो या हैंडपंप का उबाल कर ही पिएं। कई बार पानी साफ दिखता है लेकिन अंदर की गंदगी नजर नहीं आती। खाना हमेशा ढककर रखें। बाढ़ के बाद तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हर तरफ कीटाणु फैले रहते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार रहे, थकान लगे या पेट दर्द करे तो मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
0: सही कहा भाभी, दवा तो डॉक्टर देगा लेकिन समझदारी और सावधानी हमारे हाथ में है। तो सभी सुनने वाले श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी, साफ सफाई से रहने से हमारी पास भी नहीं भटकेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रीना।
0: भाभी, बाढ़ के बाद पड़ोस के गांव में कई लोग बुखार, थकान और पेट की शिकायत लेकर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है, ये बीमारी कैसे होती है?
1: हेपेटाइटिस ए और कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये सीधे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। गंदे पानी, दूषित भोजन में मौजूद कीटाणु शरीर में जाकर लीवर को खराब कर देते हैं, यही है हेपेटाइटिस का असली कारण।
0: तो भाभी, इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: अगर किसी को लगातार थकान लगे, हल्का बुखार बना रहे, पेट भारी लगे और खासकर आंखें व पेशाब पीले रंग की दिखने लगे तो समझ लीजिएगा लीवर पर असर हो रहा है। हेपेटाइटिस के साफ संकेत हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं।
0: क्या हमारे गांव में भी ऐसा कोई मामला हुआ है?
1: पास के मोहल्ले में हन्नु काका के बेटे को बाढ़ के बाद यही दिक्कत हुई। उसे बार बार बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोरी थी, धीरे धीरे उसकी आंखें पीली पड़ गई। पहले वो मामूली बुखार समझ घर के पास इलाज कराना शुरू किया लेकिन हालात बिगड़ते गए। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर साहब ने बताया कि हन्नु को हेपेटाइटिस ए है। समय पर इलाज मिला तो बच्चा बच गया, वरना मुश्किल हो सकती थी।
0: भाभी, फिर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो साफ पानी पीजिए। अगर किसी में ये लक्षण दिखे तो खुद इलाज करने की गलती मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। याद रखिए, देर करना जानलेवा हो सकता है।
0: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग बुखार और बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ये तो लेप्टिस्पायरोसिस हो सकता है। लोग इसे आसान भाषा में जंगली बुखार भी कहते हैं, ये बीमारी कैसे होती है?
1: देखिए श्रोताओं, ये बीमारी बाढ़ के गंदे पानी से फैलती है। उस पानी में जानवरों का मलमूत्र मिला होता है। अगर कोई गंदे पानी में जाता है और उसके शरीर पर कहीं भी चोट, खरोच या कटाफटा हिस्सा है तो वहीं से बीमारी अंदर चली जाती है, फिर बुखार, बदन दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
0: अच्छा भाभी, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: शुरुआत में तेज बुखार आता है, सर में और मांसपेशियों में दर्द होता है, कई बार आंखें लाल हो जाती हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो जंगली बुखार लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है।
0: इससे बचने का उपाय क्या है?
1: सबसे जरूरी है सावधानी। बाढ़ के पानी में नंगे पांव मत चलिए। अगर जाना ही पड़े तो रबड़ की चप्पल या बूट पहनकर जाएं। शरीर पर कहीं भी कटा या चोट हो तो उसे अच्छी तरह ढककर रखिए। जंगली बुखार के लक्षण दिखे तो घर पर इलाज करने की जगह डॉक्टर के पास जाइए।
0: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में जगह जगह पानी जमा हो गया है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, डर है कि कहीं डेंगू मलेरिया ना फैल जाए।
1: देखिए, जब बाढ़ का पानी गड्ढों, पुराने डिब्बों, कूलर या टंकी में जमा रह जाता है तो वहीं मच्छर अंडे दे देते हैं। ऐसे पानी में मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियां मच्छर के काटने से ही फैलती हैं। डेंगू वाला मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है जबकि मलेरिया वाला मच्छर रात में काटता है। ये बीमारियां बहुत तकलीफदायक होती हैं और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।
0: ओहो, तो भाभी इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: डेंगू में तेज बुखार आता है, शरीर बहुत टूटता है, आंखों में दर्द होता है और कई बार खून की कमी भी हो जाती है। मलेरिया में अचानक जोर की कपकपी लगती है, फिर तेज बुखार आ जाता है, इसके बाद खूब पसीना छूटता है और मरीज बिल्कुल निडाल हो जाता है। और समय पर इलाज ना मिले तो हालात और भी खराब हो सकते हैं।
0: भाभी, बचाव का सही तरीका क्या है?
1: बचाव आसान है, थोड़ी सावधानी रखनी है। घर के आसपास पानी जमा मत होने दीजिए। टंकी, गमले, कूलर सब हफ्ते में एक बार साफ कीजिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और हाँ, ढीले ढाले पूरे कपड़े पहनिए ताकि मच्छर काट ही ना पाए।
2: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग कहते हैं उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ लोगों को तो फफोले भी पड़ जाते हैं। क्या ये सब त्वचा की बीमारी है?
1: बिल्कुल ठीक। बाढ़ आती है तो कई लोग गंदे पानी में चलते हैं। उस पानी में कीचड़, नालियों का गंदा पानी और जानवरों का मलमूत्र तक मिला होता है। अब जरा सोचिए रीना जी, अगर किसी के हाथ या पैर कटा या घाव है और वो गंदे पानी में चला जाए तो कीटाणु सीधा अंदर घुस जाते हैं, वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है और फिर त्वचा पर तरह तरह के रोग हो जाते हैं।
2: ओहो, तो इसके लक्षण क्या क्या है भाभी?
1: शुरुआत में तो हल्की सी खुजली होती है, फिर धीरे धीरे लाल लाल दाने निकल आते हैं। अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, उससे पानी भी निकलने लगता है। कई बार जलन और दर्द इतना बढ़ जाता है कि आदमी चैन से बैठ ही नहीं पाता। अगर ध्यान ना दिया जाए तो इस शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए।
2: तो लोग इससे कैसे बचे?
1: सबसे पहले तो जितना हो सके गंदे पानी से बचिए। अगर बाहर जाना ही पड़े तो नंगे पांव मत जाइए। रबर की चप्पल या बूट पहन लीजिए। अगर गलती से भीग जाए तो घर आकर साबुन से पैर धो लीजिए। यदि खुजली, लाल चकत्ते या फफोले दिखें तो घरेलू नुस्खे में वक्त मत गवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, तभी सही इलाज होगा।
2: भाभी, बाढ़ के समय कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्या ये किसी बीमारी के संकेत हैं?
1: जी बिल्कुल रीना जी, बाढ़ के दौरान जब लोग एक जगह जैसे स्कूल या पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को खांसी, जुकाम या बुखार है तो बीमारी दूसरों तक पहुंच जाती है। ऊपर से गीले कपड़े, लगातार नमी और चारों तरफ गंदगी, ये सब फेफड़ों पर बुरा असर डालती है। इसी वजह से सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और श्वसन संक्रमण फैलने लगता है।
2: इसके लक्षण क्या होते हैं भाभी?
1: देखिए, इसके लक्षण साफ होते हैं। अगर किसी को बार बार खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में भारीपन लग रहा है या बुखार भी आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि मामला हल्का नहीं है।
2: इसके बचने का सही तरीका क्या है?
1: सबसे पहले तो साफ सफाई रखिए। गंदे और गीले कपड़े तुरंत बदल लीजिए। जहाँ रह रहे हों वहाँ खिड़कियाँ, दरवाजे खोलकर हवा का रास्ता बनाइए। अगर भीड़ में हो तो मास्क जरूर पहने, खासकर जिनको खांसी जुखाम है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ा पहनाइए। किसी को सांस लेने में जरा भी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिएगा।
2: भाभी, बाढ़ के समय लोग सिर्फ पानी से नहीं कई और खतरों से भी जूझते हैं। कई बार लोग जाते हैं, फिसल जाते हैं या फिर किसी जहरीले जीव के काटने से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए?
1: देखिए, बाढ़ का पानी बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखे, अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। इसमें गड्ढे होते हैं, टूटी हुई तारे हो सकती हैं, फिसलन होती है और तेज बहाव से आदमी गिर भी सकता है। सबसे बड़ा डर होता है कि जहरीले जीव का, जैसे सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़ों का, ये सब पानी के साथ बहकर घरों तक आ जाते हैं।
2: अच्छा भाभी, अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो कैसे पहचाने?
1: सांप या बिच्छू काटने की साफ साफ लक्षण दिखते हैं, जैसे काटे गए हिस्से में तेज जलन, सूजन, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना और कई बार तो बेहोश भी हो जाती हैं। अगर सांप जहरीला है तो काटी हुई जगह नीली या काली पड़ जाती है। ऐसे हालात में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है।
2: तो फिर भाभी, ऐसे वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो घबराइए मत। घबराहट में ही लोग गलती कर बैठते हैं। काटे गए हिस्से को हिलाइए मत, हिलाने से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए। देसी इलाज, झाड़ फूंक या नीम हकीम पर समय बिल्कुल मत गवाइए। जितनी जल्दी डॉक्टर तक पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी इलाज होगा। और हाँ, बचाव के लिए आप कुछ बातें जरूर कीजिए, जैसे बाढ़ के पानी में नंगे पांव बिल्कुल भी मत चलिए, रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए, रात को सोते वक्त दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए, घर के कोनों और बिस्तरों के नीचे साफ सफाई कर लीजिए ताकि सांप बिच्छू ना सके।
2: दोस्तों, आपने सुना, बाढ़ सिर्फ पानी नहीं कई खतरनाक बीमारियां भी ले आती है, लेकिन अगर हम सतर्क रहे, साफ सफाई का ध्यान रखे और समय पर इलाज करवाए तो इसके खतरों से बचा जा सकता है। पर जाने जाने से पहले हम लेंगे शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण कराएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। अगली बार फिर मिलेंगे सेहत संबंधित किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: माल कर लिया है श्रोताओं, एक बार फिर से सबसे पहले आपका वार्म वेलकम करते हैं आपके फेवरेट स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और इस प्रोग्राम को आज मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा साथ दे रही है हमारी प्यारी सी को एंकर कुमकुम। बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम स्टूडियो में, कैसी हैं आप?
1: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आज का जो प्रोग्राम है सोच बदलो, आज उसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो काफी डिजिटल के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर देखने से ज्यादा सुनाई देने वाला है कुमकुम जी। कुमकुम हाँ। अभी थोड़ी नई नई है इसलिए ना वो डिजिटल जमाने में ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो देखने की बात कर रही है, लेकिन हम यहाँ सुनाई देने की बात करते हैं क्योंकि यहाँ आवाजों की दुनिया है। तो कुमकुम हमारे साथ अभी नई जुड़ी है, श्रोताओं कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन श्रोताओं प्रोग्राम का नाम बिल्कुल सही बताया, सोच बदलो। आज हम इस पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया की, जहां दोस्ती भी ऑनलाइन है, काम भी ऑनलाइन है और पहचान भी ऑनलाइन है, आजकल तो खाना पीना भी ऑनलाइन है, क्यों कुमकुम जी? कपड़े जी भी ऑनलाइन है,
1: अब तो हमें जो चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाता है।
0: इनफैक्ट मजे की बात यह है आजकल मेकअप भी ऑनलाइन है, आप नहाकर मत आओ, फिल्टर लगाओ, आपका मेकअप भी आ जाता है, तो सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। लेकिन इस डिजिटल जमाने में जितनी चीजें मेरे और आपके लिए आसान है ना कुमकुम, उतनी ही खतरनाक भी है।
1: जी हाँ,
0: सही कहा ना मैंने,
1: सोशल मीडिया से हमारे कनेक्शंस और लोगों तक जा सकते हैं जो निगेटिव रहते हैं हमारे लिए।
0: करेक्ट करेक्ट, और हम वो सारी चीजें जाने जाने में शेयर भी कर देते हैं जिसका हमारे जो हेटर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कई बार। तो श्रोताओं आज इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, आप बिल्कुल चिपक के बैठिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, चलिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, क्या बात है। मतलब बच्चन साहब और रेखा जी पर पिक्चराइजेशन बड़ा ही प्यारा गाना था। आपको कैसा लगा कुमकुम ये गाना?
1: जी ये तो मेरा एक फेवरेट गाना हो गया।
0: अरे वाह, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। और देखिए भाई साहब, निगाहों में गुल नहीं, आजकल निगाहों में सोशल मीडिया के एप्स खुले हुए हैं, कहीं पर इंस्टाग्राम, कहीं पे व्हाट्सएप, कहीं पर फेसबुक और कहीं स्नैपचैट और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा ऐप है जरा ये बताओ, तुम सबसे पहले उठते ही कौन सा ऐप खोलती हो मोबाइल में?
1: Actually, मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ।
0: देखा, व्हाट्सएप के दीवाने भी भरे पड़े हैं, मुझे पता है गाइज, आप भी व्हाट्सएप चलाते हो दोस्तों, मैं जानता हूँ मैम। दीदी जी, सुबह उठते ही व्हाट्सएप मत चलाया करो, फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग बेबी आ जाता है ना सुबह उठते ही, मुझे पता है। तुम्हारे पास किसका गुड मॉर्निंग आता है सबसे पहले?
1: एक्चुअली मेरी फैमिली का ही आता है।
0: ये लो भाई, आजकल ना जमाना बड़ा डिजिटल हो गया है, फैमिली के साथ बैठे हैं फिर भी ऑनलाइन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं।
1: हाँ, जी नहीं, मेरी
0: हाँ, शादी
1: हो गई
0: तो बात अलग है। जी हाँ, वो तो फिर चलो समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स है ना, इसमें जो लोग खेलते हैं गुड मॉर्निंग, हमको भी कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों खैर, जितनी मजे की चीज है ना सोशल मीडिया, उतनी घातक और खतरनाक भी है। क्यों कुमकुम? क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम जो जी रहे हैं वो एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई है, बहुत कन्वीनियंट हो गई है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क भी बढ़ गया है। डिजिटल स्कैम्स लगातार हो रहे हैं, हम इन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सावधानी हम नहीं रखेंगे तो चीजें खराब भी हो सकती हैं।
1: हाँ, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ।
0: हाँ प्लीज।
1: जैसे कि डेटिंग एप्स हैं।
0: हाँ, अरे वाह, बताओ बताओ।
1: डेटिंग एप्स पे जो गर्ल्स अपने पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, कई बार उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है।
0: True.
1: या बॉयज के साथ भी हो जाता
0: True,
1: है।
0: True. आजकल तो लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे आईडी बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, और आपको मैसेज करेंगे ये वो। इनफैक्ट सबसे मजे की बात तो ये है कि आजकल आप ही के दोस्त के नाम की आईडी बना के आपसे पैसे लूट रहे होते हैं लोग।
1: जी राइट,
0: ये भी बहुत हो रहा होता है। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा?
1: मेरे साथ तो नहीं, बट मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है, क्योंकि उसके साथ तो मैंने ही करा था।
0: अयो रामा भाई, सबसे बड़ी यहाँ पर क्राइम, साइबर क्राइम बैठी हुई है, क्या करो।
1: बट वो एक प्रैंक था।
0: अच्छा, प्रैंक था, बट यार ऐसे प्रैंक मत किया करो, दिक्कत हो जाती है। वेल, इसे जोक्स अपार्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, और अगर हम बदलेंगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। और आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी कि खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो तुम क्या मानती हो कुमकुम, ऑनलाइन जितनी सारी चीजें आजकल हमें मिल रही हैं, इसमें क्या रिस्क भी है?
1: जी हाँ, अगर हम अपनी सारी चीजें ही सोशल कर देंगे तो सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगी, और जिससे हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
0: और लोग करते हैं यार
1: जी,
0: अगर लोग चाय भी पी रहे हैं उसकी फोटो, थोड़ी देर बाद सैंडविच खा रहे हैं उसकी फोटो, कहीं जा रहे हैं उसकी फोटो, मैं गाइस यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ।
1: एक्चुअली लोकेशन इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ डालते हैं कि लोकेशन के साथ कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं,
0: और जबकि वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है।
1: जी, आप पैसे निकाल लें एटीएम से, तब आप ऑनलाइन है, लाइव आ रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है।
0: गॉट इट, बिल्कुल सही कहा इसने। और श्रोताओं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आज हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद ही शेयर कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि लोकेशन, एग्जैक्टली फोन नंबर भी हम कई बार डाल देते हैं ना जब हम आईडी बना रहे होते हैं। आजकल तो खैर लोग कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड भी डाल देते हैं भाई, जबकि वो नहीं डालना होता है, दिस इज फुल ऑफ प्राइवेसी, बट क्या ही कर सकते हैं। देखिए हमारा डेली रूटीन है, मानते हैं, एक तो आदत भी हो गई है कहीं ना कहीं कुमकुम इस चीज की ना हमें, कि उठते ही हर चीज शेयर करनी है, हर चीज को दिखाना है,
1: सोशल मीडिया का कीड़ा बनना हो गया है एक तरह से।
0: करेक्ट करेक्ट, मतलब पूरे आदि बन चुके हैं हम
1: जी।
0: अगर एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो पता नहीं लोगों का क्या हाल होगा,
1: आधी दुनिया रुक जाएगी।
0: सच बोल रही है यार, ये तो मुझे भी लगता है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है खतरा, यानी कि हैकर्स या फिर फ्रॉड जिन्हें हम कहते हैं। और आज छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, और आज का हमारा टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कैसे आप बच सकते हैं सोशल फ्रॉड से, इस पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, सोच बदलो प्रोग्राम के अंतर्गत आपके साथ तमाम बातें साझा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौट कर आ रहे हैं मैं और कुमकुम।

0: क्या गाना था यार, मजा आ गया किशोरदा की आवाज सुन के। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल बताओ, कल का तो नहीं पता, लेकिन आज भी अगर आपने चीजों को सही से मैनेज नहीं किया तो बिल्कुल कल का कुछ पता नहीं चलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताता हूँ अभी आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी का खुली बात के साथ स्वागत है जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, सोशल मीडिया सिक्योरिटी। बहुत जरूरी है आजकल, जहां सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर कोई इस्तेमाल करता है। इस सोशल मीडिया में थोड़ी थोड़ी सावधानी भी बहुत जरूरी है, थोड़ी नहीं पूरी सावधानी बहुत जरूरी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। तो मेरे साथ दे रही है कुमकुम जी। कुमकुम, आपको कैसे लगा ये गाना और आप क्या कहना चाहेंगी इस गाने के बारे में?
1: ये गाना तो बहुत अच्छा था और मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी हाँ खुद को आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में भी और आगे बताएंगे। इतने हम आनंद जी से जानते हैं, क्या क्या बोलना चाहिए?
0: देखो यार, मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे ना जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अक्सर अवॉइड करनी चाहिए, और ये गलतियां हम डेली करते हैं, जैसे कि हम कोई भी ऐसा नॉन लिंक हमारे पास आता है इंस्टा या फेसबुक पे, हम तुरंत क्लिक कर देते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे आता है, हम तुरंत क्लिक कर लेते हैं, और ये लिंक पे क्लिक करना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, तुम्हें भी पता होगा हर फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास 2 मिनट में आती है, ऐसे ऐसे लोगों की आती है जिनको हम जानते भी नहीं है, और कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, कई बारी होता है ना कि हम अपना पासवर्ड बहुत कमजोर बनाते हैं, कई बारी अपना फोन नंबर रख लेते हैं, कई बारी 1, 2, 3, 4, 5 रख लेते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, लेकिन ये पासवर्ड हैकर्स बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम हो सकता है सोशल मीडिया वाला। दूसरी बात, सबसे अहम जो आपको याद रखनी है, किसी को भी अपना OTP नहीं बताना है, ये तो आप भी जानती हैं।
1: शेयर नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे OTP को लेकर?
1: OTP को लेकर मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ बातें, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, हमारी सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के ऐप्स के जो भी होते हैं उसका OTP आता है, जो हम कभी कभी दोस्तों में अपनी ID बताने के चक्कर में शेयर कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। OTP तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों याद रखिए, OTP वन टाइम पासवर्ड नहीं होता, only to person, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कुमकुम ने, जो पासवर्ड है ये सिर्फ आपके लिए है, आप ही का बनाया हुआ है, और आप इसका सही इस्तेमाल करें और हर किसी के साथ अपनी पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी साझा ना करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं नहीं जाएंगे, सुनते रहेंगे कुमकुम और आनंद को। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
8: हाँ जी दोस्तों, कैसे हालचाल है, मैं आशा लाइन दुनिया में बीतता है। सोशल मीडिया आखिर क्या सच में हमारे लिए जितना लाभदायक है क्या उतना खतरनाक भी है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। श्रोताओं, आज हम फोटो वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, परिवार और दोस्तों से जुड़ते रहते हैं, निजी विचार और जानकारी पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी पोस्ट कौन कौन देख रहा है और उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर ज्यादा जानकारी साझा करना आपको ठगी, पहचान की चोरी और ब्लैकमेल का शिकार भी बना सकता है। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एक पोस्ट कई मुसीबतें लेकर आ सकता है। रोहन, दोस्तों मैं परिवार के साथ 7 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ। ये रहा होटल का नाम और पूरा ट्रैवल प्लान। रोहन, तुम्हारे अकाउंट से मैसेज आया है, तुम फंस गए हो या पैसे चाहिए? क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा। किसी ठग ने रोहन की पोस्ट से जानकारी लेकर उसके नाम से नकली प्रोफाइल बना ली, उसके दोस्त को मैसेज भेज दिया, मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत पैसे भेज दो। कुछ दोस्तों ने पैसे भी भेज दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ खतरे ऐसे हैं जो आम हैं, जैसे कि फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी, फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेल या मार्फिंग, फ्रॉड लिंक और गिफ्ट स्कैम, लोन या इनाम का लालच। कई बार ठग आपकी प्रोफाइल से आपका जन्मदिन, आपका मोबाइल नंबर, आपके परिवार की जानकारी इकट्ठा करके आपके पासवर्ड का अंदाजा भी लगा लेता है। अगर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं तो आप जरूर सतर्क रहिए। अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, आप इनाम जीत गए हैं जैसा मैसेज आना, बैंक या लोन का ऑफर सोशल मीडिया से, किसी करीबी के नाम से अचानक पैसे मांगना, संदिग्ध लिंक। याद रखिए, हर प्रोफाइल असली नहीं होती। सोशल मीडिया को आखिर सुरक्षित कैसे रखें? आपकी प्रोफाइल प्राइवेट होनी चाहिए, मजबूत और अलग पासवर्ड होना चाहिए, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू होना चाहिए। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अपनी लोकेशन सार्वजनिक रूप से पोस्ट न करें, निजी दस्तावेज या पहचान संबंधी जानकारी साझा न करें। महिलाओं और छात्रों को मैं कुछ खास सलाह देना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाओं को फर्जी प्रोफाइल से परेशान किया जाता है, छात्रों को फर्जी स्कॉलरशिप या जॉब ऑफर दिया जाता है, इसलिए अनजान लोगों से चैटिंग में सावधानी रखें। फोटो और वीडियो सोच समझ कर शेयर करें, ब्लैकमेल होने पर चुप ना रहें। अगर सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया हो तो आपका अकाउंट हैक हो जाए, कोई फर्जी प्रोफाइल बन जाए, ब्लैकमेल किया जाए, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और आप अपनी शिकायत www.cybercrime.government.in पर भी जाकर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा की अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े 7 ऐसे नियम मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। कम से कम निजी जानकारी शेयर करें, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, मजबूत पासवर्ड रखें, संदिग्ध लिंक से बचें, लोकेशन सार्वजनिक ना करें, शक हो तो तुरंत उसे रिपोर्ट कर दें। श्रोताओं, सोशल मीडिया हमें जोड़ता है लेकिन सावधानी के बिना नुकसान भी पहुंचा सकता है। लाइक और शेयर से पहले एक बार जरूर सोचें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया FM मुरादाबाद 89.6 MHz से। कार्यक्रम से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी जरूर बरतें। जैसा कि बताया गया कि हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर आपने अपना पासवर्ड कमजोर बनाया है तो ऐसा करें कि उस पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें। अपनी प्रोफाइल किसी के साथ साझा न करें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं अपनी फोटो, तो कोशिश करें आप लोकेशन वहाँ पर ना साझा करें। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है जिसमें पैसे की लेन देन के बारे में बात हो रही है, तो उसे इग्नोर करें। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी उकसाते हैं, तो उन चीजों से बचकर रहें। जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोचें कि शायद ये सोशल मीडिया आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
0: तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो जानकारी सुनी इस पे आप जरूर अमल करेंगे, गौर करेंगे और इन छोटे छोटे बिंदुओं को अपने जीवन में आप जरूर उतारेंगे। और भैया, ईच वन टू कीच वन आप भी अप्लाई करें, औरों को भी करवाएं। तो ये छोटी सी जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है सोच बदलो, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम यहीं पर अटके रह जाएंगे, क्यों कुमकुम? तो इसीलिए हमारा मुद्दा भी यही है कि सोच बदलना जरूरी है, और सोच बदलने के साथ साथ छोटी छोटी चीजों का बदलना जरूरी है, डेली रूटीन की हैबिट को बदलना जरूरी है। अच्छा, मान लो कुम, आज हम सोशल मीडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां दिन भर में तमाम 50 फोटो हम शेयर करते हैं, 100 लाइक्स हमारे पे आती हैं।

0: नहीं आती है तो बड़े डिप्रेशन में हो जाते हैं। यार मेरी पड़ोसन की फोटो पे 50 लाइक आए हैं, मेरे पे 2 ही आए हैं, ये सोच के भी लोग तनाव में चले जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: है
1: बहुत सारी लेडीज भी ऐसी होती हैं, बहुत सारे पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये उठ रहा है और हम नहीं उठ रहे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ऐसा सोच के।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा मान लीजिए अगर आनंद जी आपको वो इंस्टाग्राम पे कोई लिंक सेंड करे कि हाँ आपने 50 लाख की लॉटरी जीती है और आपका भाग्य खुल चुका है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे?
0: देखो यार, अगर 50 लाख की लॉटरी या 25 लाख की लॉटरी का मेरे को कोई मैसेज आता है और वो कहेगा कि पहले लिंक क्लिक करो, तो मैं एक्साइटमेंट तो सबको होगी, मैं जरूर सोचूंगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 50 लाख का मुझे लालच दिया जा रहा हो।
1: जी हाँ, ऐसा मेरे भाई के साथ भी हो चुका है।
0: अच्छा?
1: तो पक्का बोला था,
0: मतलब
1: कि आपकी लॉटरी में बाइक निकली है।
0: कौन सी वाली थी, स्प्लेंडर या कौन सी?
1: सुपर बाइक।
0: सुपर बाइक या केटीएम बाइक?
1: नहीं, सुपर बाइक।
0: अरे
1: वो एक जो कि यहाँ नहीं था, इंडिया से बाहर का था, उसमें बोला गया था कि आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आके ले लो और 15,000 रुपए पहले जमा कर दो।
0: अरे बाप रे, तो मतलब ये तो धड़ाधड़ वाला धोखाधड़ी था यार। तो मतलब किया तो नहीं भाई ने ऐसा?
1: नहीं, भैया ने बोला कि आप हमारे पहले बाइक खुद लेके आओ, अगर आप हैंड टू हैंड देंगे तब हम आपको दे देंगे।
0: ओके, तो ये तो चलिए अच्छा बोला भैया ने, थैंक गॉड। तो इससे कहीं ना कहीं आप बच गए।
1: जी,
0: है ना दोस्तों, ऐसे आए दिन हमारे साथ भी होते हैं। और जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपके इंस्टाग्राम पे रैंडमली कोई मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपए का लॉटरी पैकेज, इस पे लिंक पे क्लिक करें एंड अपने अकाउंट में जल्दी से विड्रॉल करें पेमेंट, तो आपको ना ये बेवकूफी नहीं करनी है, आपको सावधान और सतर्कता के साथ, स्मार्टनेस के साथ काम करना है, आपने उस लिंक को इग्नोर करना है। रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरे इंस्टाग्राम पे आया था रिक्वेस्ट में, बट मैंने उसको डिलीट किया और मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, क्योंकि कभी कभी होता है हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हमने कोई लॉटरी खेली नहीं है तो हम जीतेंगे कहां से?
1: जी,
0: सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरी बात यह है, अगर आपने जाने जाने में ऐसे लिंक पे क्लिक कर भी दिया तो बॉस आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा, जो आपकी मेहनत की कमाई है वो भी कैसे लूट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना दोस्तों, लालच से बचिए और समझदारी को अपनाइए, बहुत जरूरी है। फिलहाल FM मुरादाबाद 89.6 FM की ओर से, ये आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो जो आपको कहता है सोच बदलिए, अपने इरादों को बदलिए और थोड़ी सी नई सोच को अपनाइए, है ना, स्मार्ट सोच को अपनाइए। आप सिर्फ पुरानी चीजों पे नहीं रहना है, स्मार्ट सोच का मतलब यही है कि जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा स्मार्ट बनाइए। जैसे डिजिटल हम सोचते हैं ना कि यार सब चीजें आसान हो जाए, वैसे थोड़ा सोच को भी आसान बनाइए। बहुत ज्यादा अगर थका दोगे तो कहीं ना कहीं जाने जाने में लिंक पे क्लिक कर दोगे, और लिंक पे क्लिक किया तो लॉस हो जाएगा। क्यों?
1: जी राइट, आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है जिससे कि आप खो ना जाएं और लिंक पे क्लिक ना कर जाएं।
0: फिलहाल तो हम दोनों खोने वाले हैं अभी एक खूबसूरत गाने में, उसके बाद हम दोनों लेंगे जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ और अहम और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, तो एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं मैं और कुमकुम।

0: बिल्कुल जी, मैं भी यही कहता हूँ अक्सर अपने इंस्टाग्राम को देख के कि तू है जहाँ मैं हूँ वहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम के बिना तो यार बड़ा अधूरा सा लगता है यार कुमकुम। अगर एक दिन भी रील ना डालो, फोटो ना डालो, तो ऐसा लगता है यार कुछ तो मिस था आज के दिन में। बट वही चीज, अगर हम गड़बड़ कर देते हैं तो वो हमारे लिए घातक भी हो जाती है। रिसेंटली किस्सा बताता हूँ, मेरे पड़ोस में एक फैमिली के यहाँ पे शादी थी और वो लोग बाहर जा रहे थे शादी सेलिब्रेट करने, बट उनका एक बेटा जो भाई साहब सोशल मीडिया पे हर एक अपडेट डालता है, मतलब छोटी छोटी अपडेट, अब ये अपडेट उनके ऊपर भारी पड़ गई। उन्होंने सारी लोकेशन वगैरह सब डाल दी कि हम 2 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, ये वो। अब उसके बाद जो उनके हेटर्स हैं, या यू कह सकते हैं जो मौके की फिराक में थे, उन्हें मौका मिला, घर में जाके चोरी कर ली। अब उससे बहुत बड़ा लॉस हो गया परिवार को जब ये पता लगा, तो सिर्फ किस वजह से हुआ, सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना गाइज, जितना आपको हैपनिंग और प्यारा साउंड करते हुए नजर आता है, जितने हम खुश दिखाई देते हैं, एक्चुअल में उतने होते नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको लिटरली बताऊं कुमकुम, कुछ चीजें तो सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा चल रहा है ना?
1: आजकल दिखावे की दुनिया है।
0: है, आई नो दैट, बट इस दिखावे की दुनिया में जो फेक चीजें उनसे भी बचना है यार, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और चलते चलते मैं और कुमकुम जो है बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन छोटी सी गलती हमें बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। एग्जैक्टली, तो बस याद रखिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, जो आप कर रहे हैं अच्छे से करिए, लेकिन हर चीज को अपलोड मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी फोटो का कौन गलत इस्तेमाल कर ले। AI का जमाना है आजकल, तो वैसे भी गर्दन किसी और की होती है, बॉडी किसी और की होती है, तो उसका शिकार आप ना हो, हम ना हो, इसलिए सावधानी सबसे बड़ी सतर्कता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर और मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तब तक के लिए मैं RJ आनंद लेता हूँ आपसे इजाजत, अनुमति, और कुमकुम आप भी चलो बाय करो।
1: बाय,
0: बस भी इतना ही बोलेगी अभी, उसको ज्यादा थोड़ा सा जो है मतलब सीखने की जरूरत है, अभी उसको ज्यादा आ नहीं रहा है, इसने प्यार से बोला बाय। चलो ठीक है, चलो मैं अपना थैला उठाता हूँ, लाओ। अरे मेरा ये फेस वॉश तो रख दो। अरे बाबा मेरी सनस्क्रीन भी रखो इसमें। तो गाइस धूप बहुत हो रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो अपने थैले के अंदर सनस्क्रीन और ये काला चश्मा, मेरा चश्मा कहाँ गया यार, कुमकुम मेरा चश्मा है क्या? अच्छा ये, हाँ। तो गाइस आप लोग भी अपना चश्मा, पानी की बॉटल और ये सनस्क्रीन सब अपने साथ रखिए, और ख्याल रखिए, और डिजिटली थोड़ा सा एक्टिव रहिए, बट सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ।
1: आपके हाथ में
0: क्या बात है, बिल्कुल मेरे हाथ में मेरा थैला दो। चलो बाय गाइस।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: कभी कभी बदलाव की कहानी बहुत बड़ी नहीं होती, ना उनमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ना कोई चमकदार मंच, बस एक परिवार होता है, कुछ जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों के बीच एक मदद का हाथ।
1: किसी के लिए वह मदद बनती है एक सुरक्षित छत, किसी के लिए परिवार के भोजन का सहारा और किसी के लिए मुश्किल परिस्थितियों के बीच आर्थिक सहायता और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और सरकारी योजनाएं कागज से निकलकर जिंदगी में बदलाव की वजह बने।
1: आज विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम आपको लेकर चल रहे हैं देवरिया, जहां हम सुनेंगे विकास की कोई बड़ी घोषणा नहीं बल्कि एक आम इंसान की अपनी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसके जीवन में बदलाव आया है।
0: हमारी मुलाकात एक ऐसे लाभार्थी से है जिन्होंने जीवन की चुनौतियों के बीच सरकार की योजना का लाभ प्राप्त किया है। अब कहानी हमारी नहीं, उनकी अपनी जुबानी।
1: आज हम उपस्थित हैं देवरिया के अगस्त पार गांव में और यहाँ पर हम लोग ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, तो किन लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजनाएं, तो हमारे साथ एक ग्रामीण व्यक्ति उपस्थित हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: चंद्रिका प्रसाद।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: अगस्त पास पश्चिम तरफ।
1: जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और विकलांगता के आधार पर आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
2: हमको यही विकलांगता के आधार पे आवास मिला है सरकार की तरफ से।
1: जी,
2: अभी बनना थोड़ा बाकी है, छत लगाना है।
1: जी,
2: और ये मिला है।
1: जी, ये कब मिला आपको?
2: अभी हो गया 2-4-5 महीना हो गया।
1: जी, अभी हम लोग देख सकते हैं इसका ढलैया कराना, लिंटर कराना बाकी है।

0: है।
1: ऐसी।
0: अब कराएंगे इसको, ढलैया अभी 1 ही 2 महीने में करा देंगे।
1: जी। इसके अलावा और कौन कौन सा योजना का लाभ ले रहे हैं आप?
0: हाँ, राशन कार्ड में है, नाम
1: जी
0: है, राशन मिलता है।
1: जी तो आपको आवास मिला हुआ है और राशन कार्ड बना हुआ है जिसके तहत आपको राशन मिल रहा है, तो इसको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा है आपके लिए?
0: सरकार को धन्यवाद देना चाहूँ, अच्छा है, मिल रहा है राशन, नहीं तो पहले नहीं मिलता था,
1: जी।
0: बढ़िया है, मिल रहा है, अभी क्या करेंगे,
1: पहले
0: मिलता है।
1: क्या दिक्कत होती थी घर नहीं बनने से?
0: पहले दिक्कत थी, घर नहीं बना तो कहाँ रहेंगे, मड़ई चाटी में रहते थे और क्या।
1: जी।
0: जैसे मड़ई चाटी में जी रहे थे और कुछ,
1: जी। और ये राशन मिलने से क्या फायदा होता
0: राशन
1: है?
0: मिलने से क्या फायदा, रोटी रोजी पेट भरता है और क्या है। पहले दिक्कत बहुत थी, बहुत दिक्कत बोले तो दिक्कत, रोजगार नहीं कुछ नहीं तो क्या करेंगे।
1: जी। तो अभी आपने देखा ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, इसके तहत हम लोग अगस्त पार गांव में पहुंचे हुए थे और यहाँ पे इन भैया से हम लोग ने जाना कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, ये जो विकलांगता के आधार पर मिला हुआ है और पेंशन भी मिल रहा है और राशन कार्ड के तहत इनको राशन भी मिल रहा है, तो इन सभी योजनाओं का ये लाभ ले रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
2: किसी कहानी में सबसे ज्यादा असर तब होता है जब वह कहानी खुद उसी इंसान की आवाज में सुनाई दे जिसने उसे जिया है, और यही वजह है कि लाभार्थी की आवाज किसी भी सरकारी योजना का सबसे मानवीय चेहरा बन जाती है।
3: दिव्यांग जन के लिए सहायता केवल आर्थिक मदद का विषय नहीं, ये उनके जीवन में सम्मान, सहारा और आत्मनिर्भरता की संभावना से भी जुड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग जन के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, और जब ये सहायता किसी जरूरतमंद तक पहुंचती है तो उसके मायने सिर्फ एक सरकारी लाभ तक सीमित नहीं रहते।
2: लेकिन किसी योजना का लाभ जमीन पर कैसे पहुंचता है, कितने लोग इससे जुड़े हैं, लाभार्थियों तक पहुंचने में प्रशासन की क्या भूमिका है, और पात्र व्यक्ति अगर अभी तक योजना से नहीं जुड़ा है तो वो क्या करे, इन सवालों के जवाब जानने के लिए अब हम सीधे जुड़ते हैं देवरिया के जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह से।
4: सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश भारत में रह रहे हैं जिसका मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक गणराज्य, अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा में खाने पीने रहने और विकास के लिए सभी को समान और जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा आप देखेंगे ICDS डिपार्टमेंट द्वारा पोषण की सुविधाएं दी जा रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य की योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, और लोग बेशक हो जाते हैं तो उनके लिए मनरेगा है, आवास दिया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए पेंशन दिया जा रहा है, और भी जैसे कृषि सम्मान निधि है, कामधेनु योजना है, नंदनी योजना है जिसके लाभ उठा के लोग पशुपालन कर सकते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। अब जैसे जो भी सरकारी पैसा खर्च होता है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसका अप्रत्यक्ष लाभ आप देखेंगे लोगों के रोजगार में मिलता है। जैसे आप कोई व्यक्ति आवास बनाता है, लगभग 1.5 लाख रुपया सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, शहरी क्षेत्र में यह धनराशि 2 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो आप देखेंगे तो उसमें ईंट की जरूरत पड़ती है, छड़ की जरूरत पड़ती है, बालू की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ती है और मजदूर की जरूरत पड़ती है। तो इन कार्यों के लिए और सामग्री के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो सरकार अपने नागरिकों के लिए हर एक विकास के लिए हर एक कदम उठाने को तैयार है, बस देवरिया के लोगों को आपका सहयोग चाहिए प्रशासन के साथ। आप कोई भी समस्या हो जो जायज हो और यदि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटा हो तो आप अपने ग्राम प्रधान से, अपने वार्ड मेंबर से, EO से, BDO से संपर्क करके उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जगह जगह जनसेवा केंद्र हैं, वहां उचित जानकारी प्राप्त करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी पात्रता के अनुसार लाभान्वित हो सकते हैं। आशा है कि आप अपना सशक्तिकरण कर देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद।
3: सोचिए, एक परिवार के लिए अपना घर क्या होता है? सिर्फ ईंट, सीमेंट और चार दीवारें? नहीं, घर होता है सुरक्षा, घर होता है सुकून और सबसे बढ़कर अपने होने का एहसास।
2: इसी सोच के साथ पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास योजना जैसी पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहां जरूरतमंद परिवारों को पक्के और सुरक्षित आवास की दिशा में सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
3: और जब किसी परिवार को अपने घर का सहारा मिलता है तो उसके साथ बदलती है उस परिवार की उम्मीद।
2: हमारे साथ मौजूद लाभार्थियों की कहानी में भी आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब हम सुनते हैं उनकी अपनी आवाज में।
1: नमस्कार, मैं हूं हेमा। आज हम उपस्थित हैं देवरिया के महाराजपुर गांव में और आज हम यहां पे उपस्थित हैं एक कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस महाराजपुर गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ एक भैया उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
5: जितेंद्र
1: जी, कौन से गांव से हैं?
5: महाराजपुर गांव से।
1: जी, आपको सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का जो है लाभ मिल रहा है?
5: एक घर मिला है, हमारी पेंशन आता है सरकार की तरफ से।
1: राशन कार्ड में आपका नाम है क्या?
5: जी
1: जी। और जॉब कार्ड भी है?
5: जॉब कार्ड भी है
1: जी। अच्छा, घर बनने से पहले आपकी क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
5: हम घर बनने से हमको बहुत लाभ मिल गया है, अरे आराम मिलता है, मतलब हमारा घर बहुत अच्छा बन गया है, नहीं तो हम लोग पलान में रहते थे।
1: जी जी। विकलांग के आधार पर आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है, तो पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
5: पहले स्थिति थी कि हम लोग बारिश से भीग जाते थे, रहने का कोई सुविधा नहीं था, तो अब सरकार द्वारा मिला है
1: जी।
5: अब हमारा घर बन गया है, अब घर में हम रहते हैं
1: जी। और राशन कार्ड में भी आपका नाम है?
5: जी नाम जी। है सरकार की तरफ से, काम भी मिलता है तो पापा हमारे करते हैं।
1: अच्छा, सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, तो पहले जो है क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हुए हैं?
5: पहले हम लोग के पास गरीबी था, अब सरकार की तरफ से मिलता है तो थोड़ा हम लोग खा पी लेते हैं
1: जी। अब अच्छी स्थिति हो गई
5: है? अच्छी स्थिति हो गई है मुख्यमंत्री योजना के लिए
1: जी। अच्छा, आपके गांव में भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप उन लोग को क्या बताएंगे?
5: हम यही बतलाएंगे कि कागज पत्र बनवा लीजिए और जाकर भर दीजिए, मिल जाएगा आप लोग को भी, जैसे हमको मिला है, हमको रहने के लिए सुविधा मिला है, हम उन लोग को भी बतलाएंगे जाकर
1: जी। इन सभी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे?
5: सबसे ज्यादा जोगी जी को धन्यवाद देंगे। और हमको पहले अनाज उनाज खरीदना पड़ता था, राशन खरीदना पड़ता था, अब उतना नहीं खरीदना पड़ता है, सब्जी उब्जी खाली खरीद कर खाते हैं हम लोग। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, हमारे जैसे विकलांग आदमी को लोग सुविधा दिए हैं।
1: तो अभी आपने देखा कि हम लोग देवरिया के महाराजपुर गांव में आए हुए हैं और भैया से बातचीत हुई और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया और क्या क्या योजना का लाभ इनको मिल रहा है, जैसे कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना जो विकलांगता के तहत मिला हुआ है और इनका राशन कार्ड है और जॉब कार्ड बना हुआ है, तो इन सभी योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है और ये बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ये जो हम लोग कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी के तहत हम लोग इस गांव में पहुंचे हुए थे और भैया के द्वारा बताया गया कि कौन कौन सी योजनाओं का ये लाभ उठा रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
3: किसी के लिए पक्का घर शायद हमारे लिए सामान्य बात हो, लेकिन जिस परिवार ने वर्षों तक असुरक्षा या अभाव के बीच जीवन बिताया हो उसके लिए अपना घर मिलना एक नई शुरुआत जैसा होता है।
2: और यही वह जगह है जहां सरकारी योजना और आम नागरिक की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ती हैं। विकास की एक और बुनियादी जरूरत है भोजन, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए सबसे पहली चिंता होती है घर की रसोई चलती रहे।
3: इस दिशा में राशन कार्ड पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सरकार की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं के जरिए पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
2: और इस योजना का महत्व शायद वही बेहतर समझ सकता है जिसके घर की रसोई तक इसका सीधा असर पहुंचता है।
3: एक कार्ड एक व्यवस्था, लेकिन किसी परिवार के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक जरूरी सहारा।
2: और यही वजह है कि विकास को केवल बड़े निर्माण कार्यों से नहीं, बल्कि इस बात से भी समझना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम परिवार के जीवन में कितनी आसानी और सम्मान के साथ पहुंच रहा है।
3: दिव्यांग जन की सहायता हो, आवास का सहारा हो, या फिर राशन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, इन सभी योजनाओं के पीछे एक साझा उद्देश्य दिखाई देता है, जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना।
2: उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने, उनकी जरूरतों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
3: और इन योजनाओं की सबसे खूबसूरत तस्वीर किसी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि लाभार्थी के चेहरे पर दिखाई देती है। किसी के लिए सरकार की योजना एक सुविधा है, लेकिन किसी और के लिए वही सुविधा जिंदगी का सहारा बन जाती है। एक घर, एक राशन कार्ड, एक सहायता, सुनने में शायद छोटी चीजें लगे, लेकिन जब यही छोटी छोटी मदद किसी परिवार की जरूरत पूरी करती है तो उसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है।
2: किसी के लिए यह आत्मसम्मान की ओर एक कदम है, किसी के लिए सुरक्षित भविष्य की शुरुआत है, और किसी के लिए मुश्किल वक्त में मिला एक जरूरी सहारा।
3: उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य इसी तरह समाज के जरूरतमंद वर्गों को योजनाओं से जोड़ना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना है।
2: और विकास की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसकी कहानी किसी एक की नहीं होती, हर लाभार्थी के साथ इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है।
3: आज देवरिया से सुनाई गई ये आवाजें हमें यही याद दिलाती है कि विकास तब पूरा होता है जब उसका लाभ आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे।
2: और जब किसी की जिंदगी में सरकारी योजना एक नई उम्मीद जगाती है तो वह सिर्फ एक लाभार्थी नहीं रहता, वह विकास की कहानी का हिस्सा बन जाता है।
3: इन्हीं कहानियों को आपके सामने लाता रहेगा
2: आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
3: मैं हूं आपका सुमंत कुमार।
2: और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हेमा।
3: मिलते हैं फिर विकास की एक और कहानी के साथ। नमस्कार।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन

0: ना हो, इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
0: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं, उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी, और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
0: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
0: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया, उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
0: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें, और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है, और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना करना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें। और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रसार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी।
2: Are still missing. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
3: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
5: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुक्कुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
3: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
6: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
8: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
3: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
8: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4,000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहां व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
9: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
9: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
3: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
3: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
10: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
11: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
3: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371 7117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
13: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
12: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: अपना काम हमारे ऊपर डाल दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, कर लेंगे। मन नहीं था फिर भी किसी की बात मान ली, थक गए थे फिर भी किसी के लिए समय निकाल लिया, और जब अपने लिए कुछ करने की बारी आई तो हम खुद से ही कह देते हैं अभी नहीं बाद में। लेकिन श्रोताओं, आज के इस महिला मंच शो में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, सो देखिए काम करना जरूरी है हर किसी के लिए। जब भी कोई काम बोले आप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना खुद के लिए टाइम निकालिए और कभी कभी ना बोलना भी सीखिए, क्योंकि अक्सर लड़कियां महिलाएं होती हैं वो ना नहीं बोलती है, हमेशा काम के लिए तैनात रहती है, जिसने बोला काम करो तो कर देती है, लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है।
1: साथियों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और क्या हर बार हाँ कहना हमें अच्छा इंसान बनाता है, या फिर कभी कभी अपने लिए ना कहना भी जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, हर हाँ रिश्ता नहीं बचाती और हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती। कभी कभी एक छोटा सा ना आपको खुद से दोबारा जोड़ देता है। तो आज बात करेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देने की, बात करेंगे अपनी सीमाओं की, अपने सम्मान की, और अपने लिए ना कहना सीखने की। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला मंच, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से भी पूछेंगे, क्या खुशी, क्या तू खुश है? और एक बार आपका जो भी नाम है आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप खुद से खुश हैं? आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ना सिर्फ दो अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला बुरा ना मान जाए, उसे लगेगा कि हम स्वार्थी हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा, और डर में हम अपनी इच्छा के खिलाफ बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरों की हर उम्मीद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप भी थक सकते हैं, आपका भी मन नहीं हो सकता है, आपके पास भी समय कम हो सकता है, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एवरीवन, आप आखिरी बार कब सिर्फ इसलिए हाँ बोले थे क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा ना मान जाए? और अगर आप उस समय ना कह देते तो क्या होता? मुझे अपने संदेश जरूर भीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896।
0: तो देखिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अच्छा इंसान बनने की गलत परिभाषा। हमारे मन में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात, अच्छी बेटी वही है जो सबके काम आए, अच्छी पत्नी वही है जो सबको खुश रखे, अच्छा दोस्त वही है जो हर समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप हर किसी के लिए मौजूद है लेकिन खुद के लिए कभी कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे। अच्छा इंसान होना और खुद को भूल जाना दो अलग बात। और घर वाले तो अक्सर हमें सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको साथ दो जो आपके साथ, जैसे आप किसी के लिए एक बात पर खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करूंगी, तो जो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, सामने वाला भी आपको वैसा रिप्लाई दे और आपके साथ वैसा ही रहे, तो बिल्कुल आप भी उनके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही व्यवहार करे जैसा सामने वाला करता है। और कभी कभी हर विमनिया को ना भी कर देना चाहिए। शाम होते ही सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती है, भाई कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कभी अपने पसंद के कुछ नहीं बनाती है। तो कभी कभी ना करके ये बोला करिए कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, बाहर एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी जिंदगी जीने का मौका मिले, बाहर घूमने का मौका मिले। और बाहर घूमने का ये सबसे आसान तरीका है कि शाम के खाने के लिए ना कर दो, आज खाना नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। तो देखिए आपको भी टाइम मिलेगा और आप भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगी, और बाहर के नजारे हैं जो बाहर की देश दुनिया है आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी, क्योंकि चार दीवारी में रहना और भाई थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ताजगी हवा लीजिए और अपने जीवन को एंजॉय करिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे श्रोता एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ। एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए है, तो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो। मेरे साथ आरजे खुशी भी है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ, ना स्वार्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए ना कहना स्वार्थ, लेकिन नहीं। अगर कोई आपसे कहता है आज मेरे साथ बाहर चलो और आपका मन नहीं है, तो आप प्यार से कह सकते हैं आज मेरा मन थोड़ा आराम करने का है। हर किसी और दिल मिलते हैं, इसमें स्वार्थ कहाँ है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है कि बाद में करूँगी या फिर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आपका मन ना हो ना कोई काम करने के लिए और आप उसको जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम आप बेटर कर ही नहीं पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपका जो काम है वो कर दूंगी। शायद आप और बेटर उस टाइम कर पाए। और जब मन नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तो आपका वो सारा काम गलत ही होता जाता है। आप उसको खुद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है, तो वो आपसे आराम मांगती है, तो उसको आराम दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उस काम को कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं खुशी से जानना चाहूंगी, कहाँ हो भैया तुम? बातें सुन रही है भैया, लड़के चुप चुप के। अरे बोलो भाई, तुम भी कुछ?
1: हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी। बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पहले आपको सुन लेती हूँ। और दोस्तों, मैं भी आपसे कुछ एक छोटा सा संवाद शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ना कहने के बाद अपराध बोध होता है? मतलब आपने किसी को मना तो कर दिया, लेकिन बाद में मन में बार बार चलता रहता है शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। ये मेरे साथ होती ना, मैं
0: हाँ, मेरे साथ भी होता है।
1: मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ना बोल दिया, मुझे हाँ बोलना
0: और
1: चाहिए।
0: वो मुझे लगता है कि वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमता
1: रहता
0: है।
1: हाँ।
0: सामने भी जब जाते हैं ना उसके पास, तो मैंने कहा यार क्या सोच रहा होगा ये, क्या सोच रही होगी।
1: सेम सिचुएशन होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आज का हमारा महिला मंच बहुत खास है आपके लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। घर में सबकी मदद करना, दोस्तों के काम आना, ऑफिस में दोस्तों का काम कर देना, मीरा के लिए सब सामान्य था। उसकी एक आदत थी, वह किसी को ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफिस में कोई कहता मीरा मेरा ये काम कर दो, वह कहती हाँ। दोस्त फोन पर कहते मीरा मेरे साथ बाजार चलोगी, मीरा बोलती हाँ चलूंगी। घर में कोई कहता आज ये काम तुम कर देना, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। धीरे धीरे मीरा थकने लगी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई घर लौट कर आई। उस दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मीरा ने कहा कुछ नहीं माँ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा माँ मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। माँ कुछ देर चुप रही, उन्होंने बहुत प्यार से कहा बेटा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में तुम खुद के लिए बुरी बन गई हो। मीरा चौंक गई। माँ ने कहा तुमने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन कभी खुद से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक साथी ने फिर अपना काम मीरा को देते हुए कहा मीरा ये भी काम कर देना मीरा प्लीज। मीरा कुछ सेकंड चुप। पहली बार उसने मुस्कुरा कर कहा माफ कीजिएगा आज मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कहा सामने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई, बड़ा रिश्ता नहीं टूटा, ऑफिस बंद नहीं हुआ। मीरा को बस पहली बार महसूस हुआ अरे मैं मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मीरा ने हर बात पर ना कहना शुरू नहीं किया। जहाँ सच में जरूरत है वहाँ मदद करो, लेकिन जहाँ आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो वहाँ अपनी सीमा तय करो। और दोस्तों, मीरा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आया जब उसने दूसरों को खुश करने से पहले खुद को भी इम्पोर्टेंस दी, खुद को भी महत्व देना शुरू किया। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए, लौट कर आते हैं हम आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच, जहां पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो मेल्स होती है ना, जैसे रीना ने भी आपको बताया दोस्तों कि वो कभी लड़कियां भी ना बोलती ही नहीं है, हमेशा हर काम के लिए हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आगे क्या हुआ है सब आपको बताऊंगी अभी एक प्यारे से गाने के इस बार।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अपने तो अपने होते हैं, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। फिलहाल इस महिला मंच में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो शुरू यानी कि जारी रखते हैं। रिश्तों में ना क्यों जरूरी है, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग सोचते हैं कि ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके एक सम्मानजनक ना होकर स्वीकार ना कर सकता, उस रिश्ते में कभी ना कभी संतुलन की जरूरत है। सच्चे रिश्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए और सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करे। यही स्वस्थ रिश्ता होता है, क्योंकि जो आपकी बात समझे, जो आपका अहमियत करे, मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। और रिश्ता वो नहीं कि जो आपने हाँ कहा वो टूट गया और उसने अगले ने सोचा कि यार इसका तो यही काम है, ये ना कर देती, इसे बोलना ही बेकार है, आज के बाद मैं इसे कुछ काम बोलूंगा ही नहीं, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। मुझे ये लगता है वहाँ पर आपको ना करना बहुत जरूरी। जो इंसान आपको समझता है, जिस रिश्ते में आपको समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, वो आपको समझेगा, वहाँ पर आपकी बातें अच्छे से सुनी भी जाएगी, तो वो रिश्ता हमारे लिए बेस्ट होता है। ना कि ना कहा और टूट गया, वो रिश्ता नहीं होता है। सो महिलाओं के लिए यानी कि खास बात क्या है, जो आज कल की हमारी प्यारी विमेन है उनके लिए खास बात क्या है, और आज की ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर में सबकी जरूरत समझती हैं, सबके खाने का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहती हैं मेरे लिए क्या। याद रखिए, आप घर की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना समय है, आपके अपने सपने हैं, घर वालों की देखभाल कीजिए, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। अक्सर महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती है, उनको अगर थोड़ी तबीयत भी खराब होती है ना तो बस एक ही बात कहती है, यार ठीक है दवाई लेके ठीक हो जाएगा, क्या ही जरूरत है, वो दवाई लेके दो एक दिन के लिए ठीक भी हो जाता, फिर से उनके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए कदम बढ़ाइए, आप अगर आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आप परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगी, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार वालों को आप खुश नहीं रख पाएंगी। और जब आपकी लग रहा है कि आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्योंकि हर समय हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं। आप जितना अच्छा बन के दिखाएंगे आपसे उतना ही काम कराया जाएगा और आप उतने ही बेवकूफ बनते जाएंगे, इसीलिए थोड़ा दिमाग से काम करिए। देखिए हर किसी के साथ काम करिए लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बच्चों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। बच्चों को भी ना कहना सिखाइए, क्योंकि अक्सर माँ बाप यही सिखाते हैं हमें कि हर किसी के साथ रहो, हर किसी की बात मानो, जो भी तुम्हें कोई कहे मतलब जो तुमसे बड़ा है उनकी बातों का सम्मान करें, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ना कहना भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनको ना कहना नहीं सिखाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बड़ों की बात मानो, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें ऐसी बात के लिए मजबूर करे जिसे वो असहज महसूस करे तो वो साफ शब्दों में ना कह सके और किसी भरोसेमंद बड़े को बता सके। ना कहना सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं, कई बार ये अपने सुरक्षा सम्मान की बात भी होती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा बनो मत सिखाइए, ये भी सिखाइए अपनी बात कहना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, तो कभी कभी एक ऐसा अनजान व्यक्ति भी सामने आ जाता है जिसको नहीं जानता है बच्चा, और फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, वो ले लेता है और हमें नहीं पता उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं मिलावट है, और बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि रास्ते में अकेले भी आते हैं। तो ऐसी जगह पर यानी कि बच्चों को ना कहना भी सिखाना चाहिए कि जो अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं जानते हैं उनको आप ना बोलो, अगर उनके साथ भी अगर आप बोलते हो तो आजकल आप सभी को पता है कि कितना स्कैम चला हुआ है, है, बच्चे के साथ भी धोखाधड़ी होती है, तो बच्चों को ना कहना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि जब आपके साथ अनजान व्यक्ति आते हैं तो उसे कम बात करें। और साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है और उसे कह रहा है कि बेटा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैन में छोड़ देता हूँ, तुम पैदल चल रहे हो धूप में ना, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाइए कि वहाँ पर आपको ना बोले। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बाहर जाते हैं और बच्चे लालच में भी आ जाते हैं, बच्चे होते दिल के सच्चे, वो उनको लालच मिल जाता है कि चलो मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, तो ले लो और खा लो और मेरे साथ चलो, तो बच्चे चल भी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सावधान करिए, जो घर वाले दे रहे वो खाओ, लेकिन जब आपको बाहर दिया जा रहा है तो मत खाओ। और कोई भी कहता है कि दो कदम पर मेरे साथ चलो तो वो भी आपको ना कहना है, वहाँ पर बच्चों को सिखाइए, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी।
1: क्या बात है रीना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, कोई अजनबी पर्सन उनको मिल रहा है, तो उनसे कोई चीज ना लें और उनके साथ कहीं भी ना जाएं, क्योंकि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी होता है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। और बच्चों को ना ये भी बताइए, आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपने घर का एड्रेस, पूरा डिटेल्स में पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें बच्चों को याद करवाइए, ताकि बच्चा कभी ऐसी सिचुएशन में अगर फंस जाए, कभी ऐसी कंडीशन, मैं तो कहूँ कि ना आए, लेकिन कभी ऐसा हो तो बच्चों को अगर सारी चीजें याद रहे तो वो अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट कर सकता है एंड अपने सही अपने डायरेक्शन पर वो पहुंच सकता है।
0: और साथ ही साथ बच्चों को ये भी सिखाइए बैड टच और गुड टच।
1: हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत मोस्ट था, क्योंकि चलो हमने बहुत सारे बच्चों के ऊपर बातें की है और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम थोड़ा सा ना फन भी करने वाले हैं, थोड़ी सी मस्ती भी करने वाले हैं, थोड़ा फन एक्टिविटीज हो जाए ना एवरीवन। तो चलो रीना, मैं तुम्हारे साथ एक मजेदार गेम खेलती हूँ, ठीक है? चलो रीना, हमने एक मजेदार गेम खेलते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूंगी जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है,
0: ठीक है?
1: और वो भी प्यार से, ठीक है? तो पहला सवाल मेरा ये है, आप बहुत थकी हुई हो और दोस्त आपसे कहें कि चलो आज पार्टी करते हैं, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: अगर वो मेरे खास होंगे तो हाँ, अदरवाइज ना।
1: चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास पहले से ही बहुत काम है और कोई अपना आपको भी अपना काम दे दे, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: ना।
1: चलो तीसरा सवाल, कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा लेकिन आप सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए चुपचाप हैं, क्या यहाँ हमेशा हाँ सोचेंगी या आपने जवाब ना? ओके, इन्होंने सवाल से पहले ही जवाब दे दिया।
0: तुम क्या कहना चाह रही हो?
1: ठीक है,
0: आगे पूछो।
1: अरे वाह, क्या बात है, रीना तो हर सवाल का राइट आंसर दे दिया है, और ये तो हमारे आज महिला मंच की बन गई है क्वीन, तो उनके लिए जोरदार तालियां। बड़ी खुशी होती है ना जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है। ना कैसे कहें ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है दोस्तों? अब सबसे जरूरी बात, अगर ना कहना है तो कैसे कहें, क्योंकि ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को अपमानित करें, आप प्यार से कह सकते हैं मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगी, या मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन इस बार मेरे लिए संभव नहीं है।
0: मतलब वही बात है ना, मुस्कुरा कर कहनी है, गुस्से में नहीं कहनी।
1: हाँ सिचुएशंस, और अभी मुझे थोड़ा अपने लिए समय चाहिए बस। तो चलिए एवरीवन, मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में नई बातों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सभी अपना ख्याल रखिए।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर

आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो लेकर। हेलो फरमाइश, मुझे पता है कि जैसे ही 3 बजते हैं एंड आपकी जो नजरें हैं वो घड़ी की तरफ रहती हैं और मोबाइल हाथों में होता है।

0: तो दोस्तों आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल कार्यक्रम में कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको हमारा ऑफिशियल नंबर डायल करना होगा एंड मैं आपको बताती हूँ हमारा मोबाइल नंबर 9837896896 98 398 96। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आपको कॉल लगाना है। एंड अभी बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से आज आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हाल चाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आपके परिवार में क्या हाल है?
0: जी सब बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं सर। आप बताइएगा आपके यहाँ पर सब खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है।
0: अच्छा मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है या फिर बादल है?
1: सुबह से बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, बादल है।
0: अच्छा बादल है, तो बताइएगा सर आज आपने कॉल किया है काफी समय के बाद, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैंने तो पिछले हफ्ते शायद नहीं करा था, उससे पहले करा था, तो आप नहीं थी, कोई और थी।
0: जी जी जी रीना मैम होंगी शायद।
1: जी
0: जी तो बताइएगा सर,
1: फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है।
0: हाँ जी,
1: गाने के बोले तेरी याद ना आए या मेरी याद ना आए, कुछ ऐसे बोले हैं।
0: जो लिरिक्स है वो इस तरह से है सर, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। जी तो ये ट्रैक हम आपको सुनवाते हैं। जी जी जी बिल्कुल बताए।

0: Ega?
1: Én Alia Fájnát ömlöm, Fámi Szenár Babon Szári, Mirágyan Szári, Sepi Emadam Szári, Rai Zulam Szári, Sán Úram Szári, Masztúdu Szent, Szári Felé, Sád Ali, egy jó pár, Zisán Márzi, Ézap,
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया सर। नमस्कार, तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं हम आपको।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और देखिए दोस्तों, अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है। एंड समय हम आपको बताएं तो वक्त हुआ है अभी 3:18 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। लेकिन कुछ रिश्ते ना ऐसे होते हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे प्यारे श्रोता तो घड़ी में जैसे ही 3 बजते हैं इंतज़ार करने लगते हैं कि अब तो खुशी जी आने वाली है। और देखिए ना जनाब, हम आ भी गए हैं, क्योंकि सच कहें तो हम भी आपसे दूर कहाँ रह पाते हैं दोस्तों। आपका इंतज़ार, आपकी फरमाइशें और आपकी आवाज़ में छुपा अपनापन हमें रोज़ यहाँ खींच के ले आता है। एंड श्रोताओं, दिल से दिल का रिश्ता है हमारा और आप सभी का। तो हम भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का कोई भी गीत, तो मुझे बिना किसी देरी के आप कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहां से कनेक्ट हो रहे हैं वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी,
0: नमस्कार, नाम बताइएगा अपना सर।
1: अरे वो अब तो बहुत पुराना गाना है और दुनिया के रखवाले
0: सर, अपना नाम तो बताइएगा।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में है वो?
0: नहीं नहीं, मैंने आपका नाम पूछा है। आपका नाम क्या है? अपना आप अपना नाम बताइएगा। अच्छा, ओम प्रकाश जी बात कर रहे हैं। ठीक है सर, सुनवाते हैं ये प्यारा से गीत आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। एंड आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, तो आप हमें बिना किसी देरी के जल्दी से कॉल लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: रहे हैं ऐसी जगह जहाँ हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहाँ बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम पिंटू है, मारावाल लेन पास से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: मैं ठीक हूँ, आपके स्टाफ में आप कैसी हैं मैम?
0: जी हम भी बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा आज आपने कॉल किया है।
1: जी जी, और मैम आपका त्योहार ठीक मना?
0: हमारा फेस्टिवल हाँ जी बहुत अच्छा था।
1: मैं देखा था कि आप शुक्र के दिन आई थी मैम शो होस्ट करने।
0: हाँ जी, फ्राइडे को मैं आई थी शो होस्ट करने
1: मैम। मतलब आप कहीं दूर थे, इसलिए आप गई नहीं थी घर पे शायद है?
0: मेरी फैमिली मेंबर्स सब लोग यहीं थे मेरी क्लोज, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो आज हम राखी तो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, राखी फेस्टिवल, लेकिन हम अपने श्रोताओं को भी राखी को स्पेशल बनाते हैं।
1: आनंद सर ठीक है?
0: हाँ जी आनंद सर भी ठीक है।
1: आनंद सर जो सुबह को जो शो होस्ट करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उनका मूड बना देते हैं सुबह को।
0: ये तो मानना पड़ेगा
1: मैम। चले गए क्या
0: कहीं? नहीं नहीं कहीं गए नहीं है एक्चुअली, अभी थोड़ा सा वो व्यस्त है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं स्टूडियो, बट कल से ज्वाइन करेंगे सब।
1: जी जी, तो मैम मुझे सॉन्ग सुनना है।
0: हाँ
1: मेल दोनों के बाद में है वो। आज मेरे माही तेरी याद आ गई, ऐसी हल्की हल्की सी बरसात आ गई।
0: अच्छा तो बारिश हो रही है अभी? नहीं
1: जी, हल्की हल्की मैम।
0: अच्छा हल्की हल्की बूंदाबांदी है
1: जी मैम। एक शायरी मैं आज करना चाहता हूँ।
0: जी जी इरशाद इरशाद।
1: मैम आज बादल घने हैं तेरी यादों के, आज बादल घने हैं तेरी यादों के, आज तेरे मेरे लम्हों में भीगना होगा, जरा सा मुस्कुरा के ये आसमां देख लेना, अपने खातिर कभी ये मौसम बना होगा।
0: बहुत खूबसूरत लाइनें हैं आपकी।
1: जी मैम
0: जी, तो सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम। तो चलिए अभी पर सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक, एंड आप भी जल्दी से कॉल लगाइए। अभी तक नहीं लगाए तो क्या कर रहे हैं आप, जल्दी लगाओ ना कॉल, तभी तो आप भी जल्दी से इस शो में यू नो अपनी हाजिरी लगा पाओगे ना, अपना फेवरेट ट्रैक सुन पाओगी। जो कहते हैं ना कि पहले आओ पहले पाओ, तो इसीलिए पहले नंबर लगाओ तो पहले फरमाइश कंप्लीट पाओ। और सुनो ये प्यारा सा गाना, मैं बस अभी आती हूँ।

0: वो मुकम्मल सी है और टूटा हुआ हूँ मैं, वो बहती नदी सी है और रुका हुआ हूँ मैं, अब उसके आगे कोई वजूद नहीं मेरा, खजाने सी है वो और लूटा हुआ हूँ मैं।
1: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने एंड आशीष कौर और साथ में शाज भट्ट की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़। एंड अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए उनकी फरमाइश को भी पूरा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार।
2: नमस्कार मैम, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
2: मैं तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से विजय राठौर बोल रहा हूँ।
1: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
2: बस बहुत अच्छे हैं, आज आपकी याद आ रही थी, कॉल की हमने तो लग गया नंबर।
1: ओके जी, बताइएगा सर कैसे हाल चाल है आपके?
2: बस बढ़िया है, मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है।
1: बारिश नहीं हो रही
2: है?
1: अच्छा, बताएगा सर क्या फरमाइश है आज आपकी?
2: आज प्रेम ग्रंथ मूवी का गीत सुना देना मैम।
1: हाँ जी बताएगा।
2: देने की रुताई।
1: ओके, और ये ट्रैक आप किनके साथ सुनना चाहते हैं?
2: ये हमारे दोस्त है, ये विशाल मौर्य है और अभय और नैतिक और हम, बस।
1: अरे वाह, नाम तो बड़े प्यारे प्यारे हैं आपके दोस्तों की। ठीक है सर, सुनवा दें प्यारा सर गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए।
2: ओके मैम, वेलकम।
1: तो चलिए एवरीवन सेलिब्रेट करते हैं, मिलकर एंजॉय करते हैं प्यारा सा ट्रैक। और आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो तुरंत कॉल लगाइएगा आप, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक कलकल यागनिक जी और साथ में विनोद राठौर जी की खूबसूरत सी आवाज़ फ्रॉम द मूवी प्रेम ग्रंथ से, जो 1996 में आई थी। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा। जी क्या नाम है आपका?
1: प्रमोद। प्रमोद
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सर मैं एकता कॉलोनी से बोल रहा हूँ।
0: एकता कॉलोनी से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: नाम है जीने नहीं दूंगा।
0: हाँ जी,
1: तुम याद ना आया करो।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार सर। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं सर की पसंद का गीत। एंड आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो हमें जल्दी से कॉल लगाइएगा। एंड मुस्कुराते रहिए, नंबर लगाते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। समय हुआ है 3:49 और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक लता मंगेशकर जी साथ में शब्बीर कुमार जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी जीने नहीं दूंगा जो 1984 में आई थी। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जिंदगी की हकीकत सिर्फ इतनी होती है, जिंदगी की हकीकत सिर्फ इतनी होती है, जब जाता है इंसान तो किस्मत होती है। इंसान जिस पर अपना हक उससे भी ज्यादा समझता है, वो अमानत अक्सर किसी और की होती है। मैडम जी नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा सर आप।
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी नगरी जिला बरेली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हाल चाल है आपके सर?
1: बहुत बढ़िया हाल चाल है, और हाल चाल तो बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं दोपहर के समय जब आपका शो सुनते हैं, क्योंकि रोज ही सुनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे विचारों के साथ लोगों के मतलब फरमाइश की जीत होते हैं और आपकी बात होती है, तो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि बहुत काम धाम ज्यादा नहीं होता है, काफी हद तक फुर्सत के पल होते हैं, तो ये बहुत आराम के साथ आपका इस कार्यक्रम को सुन लिया जाता है।
0: जी सर, तो बताइएगा आज आपकी क्या फरमाइश है?
1: आज मेरी फरमाइश रहेगी, फिल्म का नाम है सनम बेवफा, इसका एक गाना है, बे इरादा नजर मिल रही तो मुझसे दिल को मेरा मांग बैठे, जिससे पहले चार महीने जरूर अर्ज करना चाहूंगा मैं।
0: जी इरशाद।
1: कि जब भी तन्हाई ने उनको सताया होगा, जब भी तन्हाई ने उनको सताया होगा, तब उनको मेरा ही ख्याल आया होगा। गम ये नहीं कि वो भूल गया मुझको, गम तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइन है आपकी सर।
1: शुक्रिया मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको।
1: ठीक है मैम, ओके।
0: जी तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक। एंड आप भी कोई अपनी फरमाइश का ट्रैक सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का कोई भी गाना, तो हमें तुरंत कॉल लगाइएगा बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। तो सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे कृषि के साथ। शो का नाम है हेलो फरमाइश और आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं एंड मुझे कॉल लगा सकते हैं। तो जल्दी से कॉल लगाइए आप। बहुत सारे श्रोता हैं जो इस समय ट्राई कर रहे हैं कि काश मेरा भी कॉल लग जाए, तो लग जाएगा, बस आप ऐसे ही प्रयास करते रहिए। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम संजय सिंह है, देवापुर से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया हैं। आप भाई, आप कैसे
0: जी? हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ पर सभी प्रेजेंटर्स बहुत अच्छे हैं।
1: सुनने वालों को मेरी राम राम, जय श्री राम।
0: जय श्री राम आपको भी सर। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम गाना सुनेंगे राजा हिंदुस्तान का,
0: ठीक है सर? सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए जी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, हमें उम्मीद है आपका कॉल लग जाएगा। बस आप ट्राई करेंगे तब ना, जब आप ट्राई करोगे तभी तो कॉल लग पाएगा। अब आप प्रयास भी नहीं करोगे और आप सोच रहे हैं कि बस एक बार ट्राई करते हैं कॉल लग जाएगा, इतना भी इजी नहीं है। समझ रहे हैं आप? चलो ये सुनो प्यारा से गाना।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
4: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
3: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर

0: पर आरजे खुशी है आपके साथ। और अभी आपने सुनाई ब्यूटीफुल ट्रैक उदित नारायण जी, अलका ऐनी जी और साथ में सपना अवस्थी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ट्रैक आपने सुना फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से। लिरिक्स थे समीर जी के और म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शर्मन जी। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश। मैम प्लीज पहले रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पीछे से आवाजें रिपीट हो रही हैं। हाँ जी, यस अभी प्रॉपर आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। अपना नाम बताइएगा। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप। गुलफ्शा जी मिलक से बात कर रही हैं, बताइए गुलफ्शा कैसे हैं आप।
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो।
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, बताइए गुलफ्शा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहती हैं आप।
1: मैम ये मेरा भांजा है, ये सुनना चाहता दिल पे चिल्लाई छुड़िया, ये बता रिया मतलब ऐसे दिल दिए छुड़िया।
0: ओ क्या नाम है आपके यूनो भांजी का।
1: जी मैम मेरे भांजी का नाम है अली हमजा।
0: अली हमजा ओके, तो
1: हमने बोल लिया ये रेडियो में ये वाला गाना आएगा तो मतलब पास में लेकर बैठ गया उसे।
0: अच्छा रेडियो अपने साथ में रखा हुआ है उन्होंने। हाँ
1: पास में रखा हुआ।
0: छोटे जो बेबी होते हैं ना बहुत नॉटी होते हैं, नटखट होते हैं
1: एंड
0: हाँ, लेकिन पता है आपको जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना तो अच्छा लगता है पूरा घर, एंड जब घर से छोटे बच्चे इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं तो मन ही नहीं लगता, घर खाली खाली लगने लगता है।
1: मैम हमारे तो मन
0: ही
1: नहीं लगता
0: है। हाँ जी वही हम कह रहे हैं। अच्छा जी तो आपके पास ज्यादा रहता होगा ना।
1: जी यही रहता है।
0: हाँ जहाँ बच्चे को प्यार मिलता है बच्चा वहीं सबसे ज्यादा रहता है,
1: इसकी खाला बहुत प्यार करती है।
0: हाँ ये तो बातों से ही लग रहा है कि उनकी खाला उनको बहुत प्यार करती है। तो चलिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक अली हमजा की रिक्वेस्ट पर, ठीक है एंजॉय कीजिएगा आप सब मिलकर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक सोनू निगम जी की खूबसूरत सी आवाज में।

0: हेलो, गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक दिल पे चलाएं छोरियां। और इधर मुरादाबाद के ट्रैफिक में भाई साहब लोग भी ना हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सड़क पर सिर्फ गाड़ी नहीं, हमारा पेशेंस भी चलना चाहिए। हर कोई जल्दी में है, लेकिन 2 मिनट क्या धैर्य किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। तो जो भी इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा मुस्कुराइए, हॉर्न कम बजाइए, एक दूसरे को थोड़ा रास्ता दीजिए और प्यार से चलिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन सुकून और सुरक्षित पहुंचना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी
0: जी, अपना नाम बताइएगा सर।
1: मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदन गढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बढ़िया है मैडम जी, आपकी फरमाइश सुन रहे हैं।
0: ओके, बताइएगा कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: धूप निकल रही है दीदी, पानी तो गिरा नहीं, चढ़ पा रोकते धूप छाव चल रही है अभी तो।
0: अच्छा, धूप छाव चल रही है, एमपी का मौसम ऐसा है। बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: जी मैडम जी, पुस्तका में राजा हिंदुस्तानी।
0: हाँ,
1: और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता हूँ। और कुछ दोस्तों का नाम भी लेना चाहता हूँ।
0: जी बताइएगा।
1: जी सबसे पहले गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल चंदेल है, और गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र दाता जी है।
0: ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। जी नमस्कार सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक। अभी हमने पहले भी सुना था राजा हिंदुस्तानी का, एंड अभी सेकंड ट्रैक हम सुनने वाले हैं। फिल्म भी बहुत ही अच्छी रही है, एंड गाने भी ना एक से बढ़कर एक हैं, और काफ़ी फरमाइशें हमारे पास आती हैं इन गानों की, इस फिल्म के गानों की। तो चलिए सुनते हैं अभी खूबसूरत सा ट्रैक।

0: जोकर।
1: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपने सुना अभी ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक। और दोस्तों, इन गानों को ना जितने बार हम सुनते हैं दिल करता है कि बार बार सुनते रहें। एंड बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं, आवाज़ बहुत प्यारी है, सीधा दिल से आवाज़ कनेक्ट होती है। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश, नमस्कार
1: जी। नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा। जी
2: जाके चूड़िया पहनाई है, तो सावन के मौसम में हरी हरी चूड़िया पहनाई है, तो बहुत बिक्री हुई है मेरी गाँव मोड़े और गाँव गाँव जाके, तो मुझसे चूड़ी बाबा के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि जब मैं चूड़ी पहनाता हूँ तब जैसे महिलाएं फोन करती हैं, चूड़ी बाबा कब आओगे, चूड़ी बाबा कब आओगे, तो इसी चक्कर में मुझे पहनानी पड़ती है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बताइएगा आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी, क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: आज सुनवा दीजिए, इतना सुनना चाहता हूँ बहुत।
1: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। धन्यवाद आपने हमें कॉल किया सतीश जी। तो श्रोताओं, सुनते हैं सतीश जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी राज, इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को ना चाहे। लेकिन आप कॉल लगाइएगा, तभी तो आपको भी कॉल जल्दी से लग जाएगा। एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, और मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते 2 से, एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था रोचित कोहली एंड जुबिन नौटियाल और साथ में नीति मोहन जी ने। तो चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील शिरोन जिला बिजली मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा हारून जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ सर। बताइएगा कैसा मौसम है मध्य प्रदेश का?
1: जी मध्य प्रदेश का मौसम तो अच्छा है, हल्की फुल्की धूप खिली हुई है और हल्के फुल्के बादल भी छाए हैं। बस गर्मी है, मच्छर है, बस बस खास तौर पर।
0: अच्छा, तो साफ सफाई का ख्याल रखिए सर, साफ सफाई रखिए अपने आसपास।
1: जी, और आपके घर मौसम कैसा है? सबसे नहीं हुई है बारिश आपके घर?
0: सर हमारे यहाँ पर तो कल भी बारिश हुई थी और आज मॉर्निंग में भी बारिश हुई थी।
1: जी हमारे घर से तो बस रक्षाबंधन में गिराता बारिश हुई थी, लेकिन तब से बारिश नहीं हो रही।
0: अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगी सर। बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: फिल्म का नाम है दो जिस्म एक जान। गाने के बोले हैं हाय रब्बा कुमार सानू का गाया वो गीत आप
0: सुना। ठीक है सर, हम आपको सुनवा देते हैं ये खूबसूरत सा गीत। ओके
1: जी, धन्यवाद
0: आपका, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक। एंड अभी मुझे कॉल लगाई, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और देखिए दोस्तों, वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 4:39। और हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे करने के लिए रेडी हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम सानिया
0: आलम। ओके, ठीक है सर, सुनवा दें ये ट्रैक आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी फना से।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज इस संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना था ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी फना। इस खूबसूरत से गीत को गाया था शाना एंड कैलाश खेर जी ने। और बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश
1: जी। खुशी मैम आदाब
0: जी, आपको भी आदाब सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैम मैं आरिफ खान मंसूरी बात कर रहा था
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: भोपाल एमपी से बात कर रहा था मैडम
0: जी। बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे 3 बजे से। और मैं सिलाई कर रहा था
0: जी,
1: फिर दिल्ली माना तो मैंने की अब सब श्रोताओं को फोन आ रहा है तो मैं भी।
0: हाँ होता है, जब सबकी कॉल आते हैं तो हमारा मन भी करता है कि हम भी अपनी फरमाइश का ट्रैक सुने।
1: जी जी
0: जी, तो बताइएगा सर कैसे चल रहा है आपका काम?
1: काम मैम, काम तो बढ़िया चल रहा है, अच्छा काम है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि ऊपर वाले आपको और बरकत दें, खूब काम दें, आप खूब पैसा कमाएं।
1: शुक्रिया
0: जी, मोस्ट वेलकम सर। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम आज मुझे फांसी फिल्म का गाना सुनवा दीजिए
0: जी।
1: तुझे आती होगी याद, मेरी दिल तेरा ही मचलता होगा।
0: ओके तो सुनवाते हैं गीत आपको, शुक्रिया आपने कॉल किया।
1: हमारे मित्र गजराज लोधी, उनको रहेगा ये।
0: ठीक है, अच्छा आप उनको डेडिकेट करना चाहते हैं ट्रैक?
1: जी।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना आपको। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: 89.6 पर आरजी खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुना ये ब्यूटीफुल ट्रैक एंड बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है? हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
1: नैना बोल रही हूँ।
0: नैना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक है, तबीयत खराब।
0: तबीयत खराब हो रही है, क्या हुआ? फीवर हो रहा है?
1: हाँ, दवा कर दिया।
0: ओके, तो अभी आपने दवाई वगैरह ली?
1: हाँ,
0: दवाई ले। चलिए ठीक हो जाएंगे आप बहुत जल्द, अपना ख्याल रखो अच्छे से। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मैम सॉन्ग सुनना था, तेरी यादों की यादें रो रहे।
0: अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको। ठीक है नमस्ते, अपना ख्याल रखो अच्छे से, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, कीप स्माइलिंग एवरीवन, टेक केयर। एंड जाते जाते बस यही कहूंगी, अपना और अपनी फैमिली का ना अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है? और जो टाइम आपको मिला है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिएगा। और नैना की पसंद पर सुनते हैं शानदार सा ट्रैक। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते हुए आप सब बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन ना जाने क्यों मुस्कुराने में कंजूसी कर देते हो। हाँ,

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
7: बता दो राई, उन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के पति के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
7: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग स्पोर्ट पोत आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि आईएनएस निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय बचाव दल चिली में लांगटांग में पानी संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगाई मैदान वाले इलाके, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज की हमारी कहानी पहुंचती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस शहर में जिसने इतिहास में क्रांति की चिंगारी जलाई, खेल के मैदानों में देश का नाम रोशन किया और आज विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: जी हाँ, बात हो रही है मेरठ की।
1: मेरठ यानी 1857 की क्रांति की ऐतिहासिक धरती, देश के खेल सामान उद्योग की बड़ी पहचान और आज एक ऐसा शहर जहां परंपरा और आधुनिक विकास दोनों साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और मेरठ की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानती हो?
1: बताइए।
0: यहाँ विकास सिर्फ सड़कों, इमारतों और उद्योगों की कहानी नहीं है। विकास तब पूरा होता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम परिवार के जीवन में खुशियाँ लेकर आए।
1: और इसी सोच को केंद्र में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अलग अलग वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में जन कल्याण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिखाई देता है।
1: और इसी क्रम में सरकार की योजनाएं कोशिश कर रही हैं कि विकास का लाभ समाज के उन परिवारों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
0: इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
1: सोचिए, एक परिवार के लिए बेटी का विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं होता, वो वर्षों का सपना होता है, जिम्मेदारी होती है और कई बार आर्थिक चिंता भी।
0: ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक सहारा बनकर सामने आती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह कराना और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
1: योजना के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पात्र जोड़े को सरकार की ओर से कुल 1,00,000 रुपए तक का प्रावधान है। इसमें 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 25,000 रुपए की विवाह सामग्री और 15,000 रुपए का आयोजन संबंधी खर्च शामिल है।
0: यानी मदद सिर्फ चेक तक सीमित नहीं बल्कि बेटी के नए जीवन की शुरुआत को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश है।
1: और यही तो है जन कल्याण की असली तस्वीर, जब सरकारी योजना फाइलों से निकलकर किसी परिवार की मुस्कान बन जाए।
0: अब जरा सुनते हैं मेरठ की दो ऐसी युवतियों की आवाज़ जिनके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बनी। हमारा एक खास कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इसमें लाभार्थियों की जो कहानियां हैं वो आपके बीच हम साझा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो लाभार्थी यहां पर मौजूद हैं, एक का नाम है दीपांशी और दूसरी का नाम है छवि, और दोनों को लाभ मिला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का, जो एक बहुत ही अच्छी योजना है। बहुत युवतियां, बहुत युवक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले छवि और दीपांशी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
0: छवि, आप मुझे बताओ कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके बारे में आपको कैसे पता चला?
2: हमारे गांव के पंचायत घर से हमें पता चला इसके बारे में, तो वहां से हमने जानकारी ली इस योजना के बारे में।
0: ओके, तो जब योजना के बारे में आपको पता चला तो आगे की प्रक्रिया कैसे की आपने, क्या किया फिर?
2: इसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है जो जन सेवा केंद्र पे जाके हमने भरा है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो तैयार किए, फिर हमने जन सेवा केंद्र पे जाके फॉर्म भरवाया है।
0: तो जब आपका फॉर्म भरा गया था छवि, तो फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे आपके?
2: डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड और जी
3: बैंक की किताब लगी थी और पैन कार्ड की और फोटो लगे थे और राशन कार्ड की लगी थी।
0: अच्छा, कब हुई है आपकी शादी?
3: 27 जुलाई।
0: ओके, तो क्या क्या लाभ मिले हैं इस योजना से आपको?
3: सामान मिला है और पैसे आपके खाते में।
0: क्या क्या सामान मिला है
3: उसमें? कम्बल है और मतलब 51 बर्तन है और उसमें तके हैं, गद्दे हैं और इटैची है, मतलब उसमें सारा सामान है।
0: और कितना कैश आएगा आपका?
3: 64,000
0: खाते में आएगा। छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कौन सी डेट को आपकी शादी हुई?
2: 27 जुलाई को हुई थी मेरी शादी।
0: तो शादी के बाद क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं आपकी जिंदगी में?
2: अच्छा लग रहा है, काफी चेंजेस आए हैं, तो सही चल रहा है, मतलब सब
0: लाइफ आसान हो गई है पहले से। छवि, हमारे श्रोताओं को बताओ कि क्या क्या सुविधा आपको इस योजना के अंतर्गत मिली है?
2: तो हमें सामान मिला है, कुछ जरूरत की चीजें मिली है और कैश मिला है।
0: कौन से गांव में आपकी शादी हुई है?
2: चंदसारा।
0: चंदसारा में। हस्बैंड ठीक है आपके?
2: हाँ ठीक है।
0: कोई दिक्कत कोई परेशानी
2: नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: तो इस तरह की जो स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, कितनी सहायक हो सकती है ये समाज के लिए या फिर उन वर्ग के लोगों के लिए जो थोड़े से गरीब वर्ग के लोग हैं?
2: हाँ, बहुत सहायक है ये, और लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, सभी सेवाओं का फायदा उठाना चाहिए जो चल रही है, जो गवर्नमेंट ने ये निकाली है।
0: छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भरने के बाद क्या प्रक्रिया हुई, आगे कैसे हुआ सब?
2: फॉर्म भरने के बाद फिर सबमिट कर दिया वो ब्लॉक में जाके, और उसके बाद फिर डेट मिली है हमको कि 27 तारीख को आपको वहाँ पे जाना है। कार्ड आया था उससे पता चला, फिर वहाँ पे गए हम लोग, फैमिली गई है हमारी और जो मेरे हस्बैंड उनकी फैमिली गई है, वहाँ पे जाके फिर हुआ है।
0: छवि, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जितनी शानदार योजनाएं दे रहे हैं आप सभी लोगों को, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगी?
2: हाँ, वो ही मतलब अच्छा कर रहे हैं, वो योगी भी और मोदी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो गरीब फैमिली है उनको काफी योजना निकाल रहे हैं, नई नई योजना आ रही है, तो अच्छा ऐसे चलता रहना चाहिए।
0: और भी बहुत सारी ऐसी युवतियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है बहुत वक्त से, या फिर पैसे की तंगी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगी?
2: इनको बस यही कि उनको जानना है इस चीज के बारे में, या नहीं पता होता बहुत से लोगों को कि क्या योजना आ रही है सरकार की तरफ से, तो बस उनको इस चीज का पता करना चाहिए प्रधान से या फिर किसी भी पंचायत घर में जाके इस चीज के बारे में पता करना चाहिए। यह तो हमारा अधिकार है, तो हमें नहीं डरना चाहिए इस चीज से, पूछना चाहिए सबसे।
0: छवि, आप क्या संदेश देना चाहोगी?
3: योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
1: आपने सुना, किसी भी योजना की सबसे बड़ी सफलता उसके आंकड़ों में नहीं बल्कि उन चेहरों की खुशी में दिखाई देती है जिन तक उसका लाभ पहुंचता है।
0: वैसे मेरठ की बात हो और खेलों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: बिल्कुल नहीं, मेरठ को देश की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पहचान मिली है। यहाँ क्रिकेट बैट, बॉल, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन और दूसरे खेल उपकरणों का बड़ा उद्योग है।
0: और यही तो है उत्तर प्रदेश की खासियत, हर शहर की अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपनी कहानी।
1: सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP पहल के तहत मेरठ की पहचान स्पोर्ट्स प्रोडक्ट से जुड़ी है, जिससे स्थानीय उत्पादों और उनसे जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
0: यानी मेरठ के मैदानों में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं और मेरठ की कार्यशालाओं में कारीगर अपने हुनर से खेलों का सामान तैयार करते हैं।
1: वाह, क्या बात कही आपने।
0: क्योंकि विकास वही है जहां हुनर को पहचान मिले, रोजगार के अवसर बढ़े और स्थानीय पहचान को नई उड़ान मिले।
1: और यही वजह है कि जब हम विकास का प्रदेश कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होता।
0: इसका मतलब है किसी बेटी के विवाह की चिंता कम होना, किसी कारीगर के हुनर को बाजार मिलना, किसी युवा को आगे का अवसर मिलना और किसी परिवार के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान आना। दोस्तों, फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मिलाएंगे मेरठ की CDO यानी कि मुख्य विकास अधिकारी, जो कि 2023 से मेरठ शहर में कार्यरत हैं। मैम एक IAS ऑफिसर हैं और मैम ने मेरठ की तरक्की को, यहाँ पर हो रही प्रगति को बहुत ही करीब से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन के कारण और CDO मैम के नेतृत्व के कारण मेरठ लगातार आगे बढ़ रहा है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका।
4: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि मेरठ में चल रही हैं इस वक्त, जो मुख्य योजनाएं हैं?
4: इस वक्त मेरठ में बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेरठ आई थिंक एशिया का एक इकलौता ऐसा, SRTS भी चल रही है और मेट्रो भी चल रही है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी मेरठ में ही आया और अभी गंगा एक्सप्रेस वे का भी हाल फिलहाल में ही इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे रोड्स का जाल यहाँ मेरठ में बिछाया जा रहा है और जा चुका है, जिससे आज के टाइम पे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेरठ इज आई थिंक नंबर वन व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश ऑन द होल। साथ ही में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाना, जहाँ पर हमारी सरकारी स्कूल्स में भी वही सारी फैसिलिटीज के लिए हम ट्राई कर रहे हैं जो सारी प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है बच्चों को, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इसके साथ में अगर हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि और बहुत सी ऐसी अलग परियोजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जहां उन्हें सब्सिडी दी जाती है, उन्हें फर्टिलाइजर्स उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम युवा की बात करें तो PMGP एक बहुत अच्छी योजना सामने आई है
0: जी।
4: जिसके अंदर उन्हें लोन दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पे। इसके साथ ही हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में आयुष्मान कार्ड एक ऐसा गोल्डन कार्ड है जो 5 लाख तक का फ्री उपचार मरीजों को उपलब्ध कराता है किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी। और मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर ही एक मजबूत और विकसित प्रदेश की नींव रखी जा सकती है। और हमारे यहाँ पर आप किसी भी सेक्टर की बात कीजिए तो सभी में ही काम लगातार किया जाएगा।
0: जी मैम, एक योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दें मैम।
4: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेसिकली ऐसे निर्धन परिवारों की बच्चियों की शादी कराई जाती है जिसे खुद सरकार कराती है। इसके अंदर हाल फिलहाल में अभी जो धनराशि दी जाती है उसे भी बढ़ाया गया है, उसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसके अंदर सरकार ना सिर्फ उनको कुछ सामग्री देती है जैसे उन्हें ब्रीफ केस, गद्दा, चुनरी, कुछ साड़ियाँ, बेडशीट्स, कुकर, एक डिनर सेट, ये सब देती है। साथ ही साथ उनके खाते में भी डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं। और इसके साथ में ही एक सामूहिक रूप में एक बहुत अच्छा वेडिंग हॉल तैयार किया जाता है जिसमें उन सभी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि वो वहाँ पर आए, शादी करें। और साथ ही में उनके परिवारजन, लड़कियों के परिवारजन और लड़कों के परिवारजन दोनों ही वहाँ आते हैं, विवाह संपन्न होता है। और साथ ही में वहाँ पर उन सभी के लिए एक प्रीति भोज भी रखा जाता है जिसके अंदर ये एक धर्मनिरपेक्ष चीज है जहाँ पर दोनों ही हिंदू भी और मुस्लिम परिवार दोनों की ही शादियाँ करवाई जाए।
0: जी मैम, क्योंकि आपको 3 साल हो चुके हैं मेरठ में आपके कार्यकाल को, तो आपके अनुसार मैम जो मेरठ के लोग हैं खासकर जो ग्रामीण लोग हैं किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो क्या आपके पास आते हैं बताने के लिए कि मुझे ये योजना मिली है और इससे मुझे फायदा हुआ है?
4: बिल्कुल, जब हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीधा सीधा गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिला है। जब हम पेंशन की बात करें, चाहे हम कोई भी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, इन सभी का लाभ उन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो आज हर एक गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल स्थापित किया गया है
0: जी।
4: एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर एक गांव में बसाया गया है। वहाँ जो गांव की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई है। हर एक गांव में आज एक पंचायत घर बनाया गया है, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। और मैं खासकर ये बात बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मेरठ में जो डिजिटल लाइब्रेरीज या जो पंचायत घर में लाइब्रेरी बनाई गई है उसमें आज के दिन में टोटल 1231 बच्चे ऐसे है जिन्होंने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या फिर SSC CGL हो या फिर UPSC हो, इन सब में उत्तीर्ण हुए हैं, वो उन्होंने सफलता पाई है। तो मेरा मानना है कि ये जो सरकार की सारी स्कीम्स है, शासन की सारी परियोजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार लोगों तक पहुंचाती है। और हम सब लोगों का भी यही एक ट्राई हमारा रहता है, कोशिश रहती है कि हम सब उन सभी लोगों तक जा सके और उन सभी लोगों की मदद कर सके जो इनके इच्छुक है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर गांव में समूह की महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक हमारे यहाँ पर समूह की महिला है जो फूलों की खेती कर रही है खेरकौदा में, एक समूह की महिला है जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बना रही है, उसको अलग रेसन कोट करके वो जयपुर में अपना माल सप्लाई करती है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दीदियां हैं जो आज लखपति दीदी बन गई
0: है।
4: यहाँ मेरठ जनपद में हमने ना सिर्फ इन सब बट आशा बहुओं का भी बहुत ध्यान रखने की कोशिश की। यहाँ पर DM सर के नेतृत्व में एक आशा पेकट के प्रोग्राम चलाया गया जिसके अंदर आज के दिन हमारी जो एक एवरेज आशा जो सैलरी पा रही है, जो एक पैसे पा रही है मंथली, वो लगभग 9000 के लगभग पहुंच गए हैं, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल भी DM सर के द्वारा हमारे यहाँ पर 4 ऐसी आशाओं को सम्मानित भी किया गया था वॉशिंग मशीन देकर, जो सबसे ज्यादा पैसे पा रही थी। और मैं ये बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि वो चारों ही आशा 14,000 से 15,000 रुपए प्रति महीना वो कमा रही थी। तो ये सभी चीजें दर्शाती है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे प्रगति कर रहे हैं।
0: जी मैम, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा जो गांव के लोग होते हैं, मैम बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, आपके ऑफिस में भी काफी लोग आते हैं, मैम सारी योजनाओं का तो सभी को नहीं पता होगा, तो लोगों तक योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए मैम विभाग की तरफ से मैम क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं?
4: हर एक सेक्टर अपना अलग अलग कार्यक्रम करता है और साथ ही में हमारे द्वारा भी एक कन्वर्जेंस भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि समय समय पर यहाँ पर ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाता है जिसके अंदर पूरा पूरा प्रशासन उठ के वो गांव में जाता है और वहां सभी लोगों को सभी स्कीम्स के बारे में बताता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में उन्हें इन्वाइट किया जाता है। जैसे अगर मैं कृषि की ही बात करूं तो कृषि में हमारे द्वारा ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती है जहां पर यहां से साइंटिस्ट, जिले से साइंटिस्ट या हेडक्वार्टर से साइंटिस्ट उनके गांव में जाते हैं और उन्हें बताते हैं और वाइस वर्सा भी। उन्हें भी बहुत बार ब्लॉक्स पे या फिर हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है कि वो लोग यहाँ आके सीखे और जानकारी ले। जैसे अगर मैं डीपीओ विभाग की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, कन्या सुमंगला योजना जैसे हो गई जिसमें पहले लोगों को शिक्षित किया जाता है और फिर उनका लाभ उनके द्वारा लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे बैनर्स सोशल मीडिया सर का, डीएम सर का, कमिश्नर सर का और सूचना विभाग के द्वारा भी समय समय पर न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में, बैनर्स में बड़े बड़े ये चीज बहुत सारे लोगों तक बताई जाती है। और साथ ही में आपका रेडियो भी हमारी बहुत बहुत हेल्प करता है ये सब चीजें आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा मानना है कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हम जैसे जैसे सोच सकते हैं हम लोग वैसे ट्राई करते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। जैसे कल ही एक कॉन्क्लेव हुआ जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो कैटल फार्म चलाते हैं या जो पशुपालन से रिलेटेड है। तो ऐसे भी बहुत सारे कॉन्क्लेव यहाँ पर कराए जाते हैं।
0: जी मैम, क्योंकि हमारा जो एक कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश जागरूकता के लिए है, लोगों तक हम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, बेसिकली मेन पर्पस है अवेयरनेस। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम?
4: हाँ, मैं सभी लोगों से यहाँ पर आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जागृत रहिए। यहाँ पर आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी न्यूज भी फैलाई जा रही है जो भ्रामक है, जो सही नहीं है। तो एक बार प्लीज फैक्ट चेक कीजिए। कोई भी चीज जो आप सोशल मीडिया में पढ़ते हैं या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पढ़ते हैं वो सही नहीं भी हो सकती है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, देश के हित के लिए काम कीजिए और आप खुद तरक्की कीजिए ताकि देश भी आपके साथ तरक्की करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है जिसके लिए हमें एक हमें अपने प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है और उसके लिए हम सभी को बहुत अच्छे से एकदम एड़ी चोटी पर जोर लगा के काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा देश वो हर बुलंदी पर पहुंचे जहां पर वो पहुंचने का हकदार है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है
0: और इन प्रयासों की खासियत यही है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थानीय जरूरतों और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की नई संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।
1: मेरठ इसकी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। एक तरफ इतिहास की विरासत, दूसरी तरफ खेल और उद्योग की ताकत और साथ में सामाजिक कल्याण की योजनाओं से जुड़ती नई उम्मीदें। मेरठ ने 1857 में बदलाव की एक चिंगारी देखी थी
0: और आज वही मेरठ नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपनी अलग पहचान बना रहा है।
1: मेरठ जहां खेल का हुनर है,
0: जहां उद्योग की ताकत है,
1: जहां इतिहास की विरासत है
0: और जहां जन कल्याण की योजनाओं से जुड़ती हैं उम्मीदें।
1: तो ये थी मेरठ से विकास की एक ऐसी कहानी
0: जिसमें आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोग, उनके सपने और उन सपनों को मिलती नई दिशा,
1: क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल रहा है
0: और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो शहर की कहानी विकास की कहानी बन जाती है।
1: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: हेलो, कोई है क्या?
2: हाय,
1: मुझे जिमी से मिलना है।
2: यार वन सेकंड।
1: आई वुड लाइक टू ब्लॉग।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
4: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
3: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

नमस्कार दोस्तों, शाम हो चुकी है और दिन भर की बहुत दौड़। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये सामान रह गया, कभी ऑफिस का ये काम रह गया, तो ये भागा दौड़ी चलती रहती है। गाड़ी बैठे हैं, बगल में साथी बैठा, बोला यार जल्दी से काम ख़त्म कर और अब फिर घर चल। कहते ना, ऑफिस की फाइलें हुई है बंद, दुकान का भी हिसाब बंद, और अगर बॉस सामने नहीं है ना तो मोबाइल ऑन हो जाता है। ऐसा कितनों के साथ होता है कि अगर सामने से नज़र हटी नहीं, चलो यार अपनी एक रील तो चेक कर ही लेते हैं। मगर हाँ, शाम की मस्ती अभी शुरू हुई है और सुस्ती जो है ना वो रेडियो से बाहर जा रही है साहब। तो आप सुन रहे हैं अपना शो, इस समय रीना जी का जो आता है ना गुड इवनिंग मस्ती वाला, तो गुड इवनिंग मस्ती शो चल रहा है आपका। हाँ बस आवाज़ बदल गई है थोड़ी सी, आज रीना सी हमारी बिजी है, मगर नहीं साहब, हम आपके साथ करेंगे खूब मस्ती, मस्ती नहीं करेंगे बंद। टेंशन की एंट्री हो गई है बंद, हंसी की हो गई है एंट्री फ्री, और दिल खोल के मस्ती करने की पूरी छूट है। तो बताइए आपकी शाम कैसी जा रही है, और शाम को जो मूड है ना उसको अगर नाम देना चाहेंगे तो क्या नाम देना चाहेंगे? पहला थकान एक्सप्रेस, मस्ती मेल, चाय और आराम, या आज तो पार्टी बनती है? तो अपने मैसेजेस करिए हमें 9837896896 पे कि इसमें से कौन सा नाम आपकी शाम को होगा। तब तक के लिए हम सुनते हैं बढ़िया से गाना और करते हैं ना थोड़ी सी मस्ती।

जी हाँ, थक के निकल रहे हैं और कोई वेट कर रहा है, या किसी की कॉल हो गई थी मिस। मगर कोई बात नहीं साहब, जब ये बात आती ना गुनगुनाने लगते हैं और उसकी भी याद आ जाती है। तो चलिए याद करिए और थोड़ा सा शाम को मस्त बनाइए।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो कहते हैं ना, चलते चलते हम जब भी कहीं चल रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस रहता है कि यार आज तो जल्दी पहुंचना है, और थोड़ा सा जो पेंडिंग वाला काम है ना, ये 5 मिनट वाला काम जो मेरा रह गया था, ये पूरा कर लेना है। कभी कभी हो जाता होगा कि जो काम हम सुबह सोच के निकलते हैं कि आज शाम को घर पर आके वापस करूँगा, और जैसे ही जल्दी आऊँगा 5 मिनट पहले आके इस काम को निपटाऊँगा, वही काम नहीं हो पाता साहब, हो जाता है ये। सुबह उठते ही इंसान के पास ना सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, अलार्म, काम और 5 मिनट और सोने दो। लेकिन शाम होते होते हालात ऐसे हो जाते हैं कि शरीर भी कहता है भाई चलो घर, और दिमाग ये कहता है कि भाई पहले खाना खा लो, मैगी और चाय अगर मिल जाए उस समय मज़ा आ जाता है भाई साहब, और मोबाइल कहता है आपका कि भाई एक रील और देख लो। तो आज का आपसे एक यही सवाल कि शाम को सबसे ज़्यादा नींद आपको कब आती है? ऑफिस से निकलते समय, घर पहुँचते ही, खाना खाने के बाद, या जब कोई रिश्तेदार फ़ोन करके कहता है अरे बेटा जरा एक काम था यार, यार ये काम मेरा पूरा कर दे। तो कभी ना कभी तो कहते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो अपने साथ घटता ही होगा। काम चाहे कितना भी हो, शाम की चाय देखकर ना इंसान के अंदर का जो CEO होता है ना, जाग ही जाता है। तो साहब अपने अंदर के CEO को जगाएं, कहीं भी एक प्यारी सी चाय या आपकी फेवरेट प्लेस पे अगर चाय मिल रही हो घर जाने से पहले, तो ज़रूर गाड़ी रोक के वो पीते जाएं।

बिल्कुल यही आवाज निकलती है जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, कहते हैं भाई साहब बोलो हमारा अब क्या होगा। अगर आप फंसे हुए हैं रामपुर रोड पे, तो सच में यही लाइन आपके लिए सबसे बेस्ट है कि साहब अब हमारा होगा क्या ये बता दो। और अगर आप हो इस समय दिल्ली रोड के आसपास, तो बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे साहब, क्योंकि वहाँ इतना जाम नहीं है, गाड़ियाँ बड़े आराम से मूव कर रही हैं। अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं तो ज़रूर हमें अपडेट करें, व्हाट्सएप करें कि किस रूट की लाइनें ज़्यादा व्यस्त हैं, ज़्यादा ट्रैफिक है, MDA में या फिर लाजपत नगर की तरफ।

तो हो गई खूब मस्ती वाली बात, चाय की सुस्ती भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। और कहते हैं ना कि थोड़े से अपडेट तो अपने पास होते रहने चाहिए, तो एक अपडेट अपने पास बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ गानों वाले अपडेट नहीं दे रहे साहब, कुछ ऐसा अपडेट जो आप सुन के भी कहेंगे क्या बात, क्या बात बताइए आपने। भारत सरकार ने आज ही सेमीकॉन 2.0 स्कीम को नोटिफाइड किया है, जिसका कुल आउटलेट करीब 1.27 लाख करोड़ बताया गया। इसका मकसद है पूरे देश में सेमीकंडक्टर यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मजबूत करना है। तो साहब ये जब चीज़ें एकदम अपने सेमीकंडक्टर में मजबूत होंगी ना, तो पूरे देश को कहीं ना कहीं मजबूती ले जाएंगे। मतलब आने वाले समय में मोबाइल से लेकर गाड़ियों और गैजेट्स तक चिप्स की दुनिया में ना भारत की भूमिका और बड़ी हो सकती है। हाँ साहब, अंकल चिप्स वाले चिप्स नहीं, सेमीकंडक्टर वाले चिप्स। वो तो पता ही चलेगा जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो ना, पता चल जाता है भाई साहब मेरी चिप सही चल रही है नहीं चल रही है। तो चलिए गानों का आनंद लेते हैं और एक आने वाली है खूब बड़ी ऐसी पहेली, देखते हैं कौन उसका देगा जवाब इस गाने के बाद।

सच में खूबसूरत तो इंसान जरूर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि खूबसूरती को बार बार दिखाना पड़े या बताना पड़े। कहते हैं ना कि अंदर से जितना आप खूबसूरत हैं, बाहर से उतना खूबसूरत खुद ही बन जाता है इंसान। तो हाँ, कभी ना कभी किसी को बिना बताए कोई ना कोई तो कहता है, यार ये इंसान सच में बहुत खूबसूरत है। कुछ बातें इसकी ऐसी हैं कि देखने से नहीं लगता होगा कि ये बंदा जो है ऐसा खूबसूरत भी हो सकता है अंदर से। हमारे पास कुछ हमारे लिसनर्स हैं जो कह रहे हैं कि गुड इवनिंग वाली रीना जी कहाँ हैं। तो गुड इवनिंग वाली रीना जी भी यहीं हैं, थोड़ा सा बिजी हैं। आज गुड इवनिंग वाले अखिल जी आ गए, मगर वो आएंगी और खूब सारी बातें भी करेंगी आपके साथ। बबली अनजान, गीता कश्यप, भाभी लक्ष्मी कश्यप, आज रीना जी मैम कहाँ हैं हमने बता दिया, आज वो मैम हवा में हैं, मगर बहुत जल्दी स्टूडियो में आ जाएंगी आपके पास। हमारी तरफ से आपको प्यारी प्यारी हेलो गुड इवनिंग है, और हमारे को ना एक प्यारा सा गाना सुना दीजिएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और आप मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं क्या? हाँ जी, हम मैसेजेस पढ़ते हैं और आपका मैसेजेस हमने पढ़ लिया है। एक मैसेज हमारे पास और आया है, वो आया है मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल। इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, इनका नाम अगर आपने नहीं सुना तो साहब मतलब कुछ नहीं सुना। आपको और एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोमवार शाम की राम राम जी, राम राम जी, बहुत बहुत राम राम। हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है जी, गुड वाली मस्ती है, गुड वाली इवनिंग है। तो बिल्कुल ये तो गुड वाली इवनिंग है, जो गुड वाला उनका टैगलाइन है ना रीना जी का, वो कोई नहीं ले सकता साहब, ये तो है। आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। सॉन्ग बिंदास सुना रहे हैं ललिता कश्यप जी, नवीन नगर मुरादाबाद। तो ललिता कश्यप जी, आज आपसे फिर मुलाकात हो गई, बात हो गई। और सर चाय पी लीजिए ज़रूर, मैम आप चाय ज़रूर पिलाइएगा और अदरक ज़रूर डालिएगा, थोड़ा सा अदरक डालेंगे तो मज़ा आ जाएगा, हम ज़रूर चाय पियेंगे। मौसम सच में अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा गुनगुना सा हो रहा है, मतलब बूंदाबांदी हो जाती है या फिर हवा चल जाती है। तो आप भी उस मौसम का मज़ा लीजिए, चाय पीजिए, चाय के साथ अगर नमकीन बिस्किट हो क्रैक जैक तो खा लीजिए। क्रैक जैक किस किस को पसंद था, आपको पसंद था या नहीं, या अभी भी पसंद है? अगर होगा तो ज़रूर बताइएगा। तब तक लेते हैं इस गाने का आनंद। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब कोई समय होता है उसको कंज्यूम करने का या पीने का, तो उसके साथ वो चीज़ नेसेसरी हो जाती है यार। अगर चाय पीने तो चाय के साथ मुझे इसका कॉम्बिनेशन चाहिए चाहिए, तो वो होता होगा, 100% होता होगा, आपके साथ भी होता होगा। तो आपका चाय के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होता है इवनिंग वाली, तो ज़रूर हमें बताएं। चाय हो या कॉफ़ी हो या फिर हो ब्लैक टी, कुछ भी हो तो हमें ज़रूर बताएं कि क्या कॉम्बिनेशन है। 9837896896 पर।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, और ये आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। बॉस जब चाहें जैसे चाहें अपनी फरमाइश बता सकते हैं, दिल से दिल को लगा सकते हैं, और हाँ जब जब मौका आता है ना, कहते हैं गाना जो मन में आ रहा है आपके दिल के वो भी गुनगुना सकते हैं। इवनिंग में ना जब अपने लोग अपने घर जा रहे होते हैं तो हमारे अंदर भी सभी के अंदर कोई ना कोई सवाल अंदर आता ही रहता है, यार अब जाके क्या करना है, या कैसे कौन होगा जो इस समय वेट कर रहा होगा, या घर पे मम्मी लॉक लगा के चली गई तो चाबी जो है पड़ोसी के पास से लेनी है, तो कौन होगा उसे कॉल करके कह दो भाई साहब फटाफट मेरे को गेट पे मिलना, मैं गाड़ी पार्क करूँगा, मुझे चाबी दे देना, मुझे फटाफट घर के अंदर जाना है। या फिर आपके घर में सबसे ज़्यादा नखरे कौन करता है, आप खुद या आपके कोई भाई बहन, मम्मी या पापा, या फिर आपका पेट डॉग। और अगर घर में कोई रहता है ना या कहता है कि भैया, जो रहने वाला कहता है जब मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, तो समझ जाइए सबसे ज़्यादा नखरे वही करता है। हमारे पास एक लिसनर का मैसेज है, वो कहते हैं राहुल जी भाई मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो है ना नखरे मेरी छोटी बहन करती है। राहुल जी अभी रक्षाबंधन गया है, पता चला कुटाई ना हो जाए बाद में। बहन आई वापस और बोले अच्छा तूने मेरे बारे में एकदम मैसेज कर दिया जैसे ही नखरों की बात हुई। तो भाई साहब वो नखरे नहीं होते, उन्हें कहते हैं VIP कैटेगरी में है, वो नखरे भी आपको सहने पड़ेंगे। तो चलिए तब तक कुछ नखरे सहें, कोई कुछ बात कहे, चाहे हमारे जेठालाल जी हों या हमारी बबली अनजान जी। जेठालाल जी कह रहे हैं कि आप बताइए आप चाय के साथ क्या लेना पसंद करते हैं। तो साहब हम चाय के साथ रस लेना पसंद करते हैं, अगर रस मिल जाए तो बढ़िया, वरना फिर मैगी बनानी पड़ जाती है। तो कोई भी आइटम हो वो मिल जाता है, और झटपट जो रेडी हो ना, चाय बढ़िया होनी चाहिए, उसके बाद का जो आइटम है वो अपना आप ही डिसाइड हो जाते हैं। कभी कभी चाय इतनी बढ़िया और टेस्टी हो जाती है कि बगल वाला जो आइटम जो हमें चाहिए होता है सब्स्टिट्यूट खाने के लिए, हम भूल जाते हैं कि क्या चाहिए। तो तब इस गाने को इन्जॉय कीजिए, और खूब सारी बातें होंगी 9837896896 पर।

जब हमें पता है कि जिंदगी दो पल की है, तो क्यों ना एक छोटी सी मुस्कान चेहरे पे हम अपनी रखें और सामने वाले को भी बड़े प्यार से स्माइल पास करते हुए निकले। यार सच में एंजॉय करना है इसी जिंदगी को, यहीं पे एंजॉय करना है।

इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंतज़ार के बाद जो फल आता है ना वो बहुत ही मस्त आता है, हो जाता है। कभी कभी आप खाने की इंतज़ार कर रहे होते हैं, किसी आउटलेट पे खड़े होते हैं और कहते हैं साहब मेरा ऑर्डर कब आएगा, वो कहते हैं भैया अभी रुक जाइए, जहाँ 2-3 ऑर्डर निकल जाएँ उसके बाद आपका ऑर्डर आएगा, देख नहीं रहे कितनी भीड़ है। मगर नहीं साहब, इंतज़ार होता है ना, बस जल्दी से आ जाए, फटाफट आ जाए, चाप खा लें या डोसा खा लें तो भाई साहब बस वेट नहीं हो सकता, एकदम भूख लग जाती है। तो जब खुशबू आ जाती है ना तो आप उसे रोक नहीं सकते। आपका फेवरेट आइटम क्या है ज़रूर बताएं, और कहाँ खाते हैं साहब, चटोरी गली में खाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में? कहाँ, कभी कभी होता है कि बस शाम को निकले और सोचा भाई साहब ये आज मेरे सामने से रेस्टोरेंट निकल तो गया है, मगर मौका मिलते ही रात में आऊँगा और पूरी पार्टी करूँगा। होता है कभी कभी कि सामने से तो निकल रही है आपकी फेवरेट पार्टी वाली जगह या फेवरेट खाने पीने वाली जगह, उसके बाद आप कहते हैं यार चलो अभी तो नहीं क्योंकि मौका नहीं है, जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, मगर उसके बाद थोड़ा टाइम निकालूंगा और यहाँ पे आऊँगा। तो तब तक करते हैं ये एंजॉय इस गाने को, और उसकी भी आपकी भी कोई फेवरेट जगह हो तो ज़रूर हमें मुरादाबाद की बताइए कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ आप शाम बिताना पसंद करते हैं।

शाम आई तो चेहरे पे मुस्कान आ गई, शाम आई तो चेहरे पे मुस्कान आ गई, चाय मिली तो जान में जान आ गई। दिन भर जो लोग काम में परेशान थे, दिन भर जो लोग काम में परेशान थे, रेडियो चला तो जिंदगी फिर जवान हो गई।

कोई ना कोई चाहिए शाम को आने वाला या साथ चाय पीने वाला। तो साहब मस्ती तो होगी तभी जब होता है कोई साथ में, और एंटरटेनमेंट भी आजकल खूब चल रहा है। अगर एंटरटेनमेंट से कुछ याद आया हो तो आपको जरूर आपको याद आया होगा कि एक मूवी है हनुमान अंश, जो इस समय बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा रही है। शुरू के हफ्ते में मूवी की ओपनिंग के समय में मूवी ने कुछ कम बिजनेस किया, मूवी थोड़ी सी लोगों को नहीं दिखी, नहीं कहते हैं कि नहीं उन्होंने उस समय उस पर ध्यान दिया, मगर आज 3 हफ्ते बाद उस मूवी की ग्रोथ 47 करोड़ तक पहुंच गई है साहब। तो मूवी सच में बहुत बढ़िया है, और मैं तो यही कहूंगा कि कई टाइम से अगर आप पिक्चर हॉल में नहीं गए हैं तो जरूर इस मूवी को देख के आए। बहुत ही एकाग्र, कहते हैं ना अंदर से अंदर वाला पन आता है, आवारापन नहीं आता, अंदर वाला पन आएगा अगर आप इस मूवी को देखेंगे, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इस हफ्ते OTT पर भी कुछ नया आने वाला है। 31 अगस्त से 6 सितंबर तक नई नई फिल्म्स और सीरीज रिलीज हो रही हैं, मगर ध्यान रखिएगा इन सीरीज के चक्कर में ना घर वाली सीरीज शुरू मत करवा देना, आराम से देखना भाई, बहुत सारी सीरीज हैं, थोड़ा टाइम लोगे ना तो सारी मूवीज सारी सीरीज निपटा दोगे। तो चलिए शाम को और भी करते हैं मस्त वाला, और कोई एक ऐसा इंसान आपको मिल जाए जिसके साथ सिर्फ चाय पी के मज़े की बात करते हैं या अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं, तो आप किसे चुनेंगे? माँ को, पापा को, भाई को, बहन को, या दोस्त को, या लाइफ पार्टनर को, या वो एक ऐसा खास जिसका आप नाम नहीं लेना चाहते हो? तो कुछ होते हैं साहब, ऐसे होते हैं। अगर हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें 9837896896 पे। तब तक करिए ये गाना एंजॉय, और ये गाना भी आपको उसी जगह ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं।

टाइम हो गया है 6:56 और साहब कहते हैं ना अब हो गया है चलने का टाइम, अब हो गया है हमारा विदा लेने का टाइम। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। शाम की चाय छोटी सी बात है, बस साथ बैठने वाले खास होने चाहिए। तो आज शाम हमारी पता ही नहीं चली कब आपसे और हमारी बातें जो हैं दिल की हो गई। और दोस्तों कहते हैं ना कि देखते ही देखते हमारी शाम की मस्ती का वक्त भी पूरा होने को आया है। आज हम हंसे, थोड़ी सी अंदर की पहेलियाँ भी बुझाई, आपके मैसेज भी पढ़े और देश का कुछ ना कुछ ज़रूरी अपडेट भी दिया है। तो याद रखिए, दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, शाम को मुस्कुराने की एक वजह ज़रूर ढूंढ लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर मुस्कुराना छोड़ दिया ना तो मज़ा ही क्या रह जाएगा। तो चलते चलते आपके लिए, हाँ जी बिल्कुल आप ही के लिए एक ख़ास शायरी। शाम ढली तो यादों का सिलसिला रहेगा, कल फिर मिलने का वादा रहेगा। थक जाओ अगर ज़िंदगी की दौड़ में कभी, तो रेडियो ऑन करना, ये दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और साथ के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन भी आने वाले हैं आप ही के शहर में बहुत जल्द। आपको सारे अपडेट्स हमारे शो में मिलते रहेंगे। इंदर साहनी जी फैशन एंड फार्मर्स प्रेजेंट करते हैं इंदर साहनी लाइव शो, जो होने वाला है 12 सितंबर को शाम को 8 बजे। वेन्यू है ड्राइव इन 24 दिल्ली रोड, और टिकट्स आपको मिल जाएंगे बुक माई शो, या फिर आप फॉलो कीजिए फैशन एंड फार्मर्स का इंस्टाग्राम पेज और सारे अपडेट्स वहां से लेते रहिए, वरना FM मुरादाबाद को भी कॉल करके सारे अपडेट ले सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। शो का नाम है इंदर साहनी लाइव, तो आप सिर्फ DM करिए इंदर साहनी और उससे रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स वापस पहुंच जाएंगी। तो चलिए साहब करते हैं बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड वाला इवनिंग, और आप सभी से होगी कल मुलाकात रीना जी की, और शाम को मिलेंगे 9 से 10 अखिल के साथ दिल से दिल की बात में भी। तो चलिए बढ़िया सा अलविदा आपकी पसंद का गाना प्ले करते हुए मिलेंगे अगले शो में।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेश।

0: कुमार सिंह न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद
1: कॉल 7500153841
2: है योर ट्यून इन टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: तो दोस्तों अब आइए आपको सुनवाते हैं विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी।
4: नहीं

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते शहरों की, बदलती तस्वीर की और सबसे अहम आम लोगों की बदलती जिंदगी की।
1: और आज हमारा सफर है उस शहर का जिसे दुनिया नवाबों का शहर, तहजीब और अदब के शहर के रूप में जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की।
0: दोस्तों, लखनऊ की पहचान जहाँ एक ओर उसकी गंगा जमुनी तहजीब, चिकनकारी और खान पान से है, वहीं दूसरी ओर बीते कुछ वर्षों में शहर ने विकास की नई रफ्तार भी देखी है।
1: बेहतर सड़कें, मजबूत कनेक्टिविटी, आधुनिक परिवहन, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव और आम लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच, लखनऊ की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है।
0: और दोस्तों, विकास की असली कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों या सड़कों की नहीं होती। विकास तब मायने रखता है जब उसका फायदा समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए एक पक्का घर, राशन या शौचालय जैसी सुविधा जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आती हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों तक ऐसी सुविधाएं पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: तो आइए आज के इस सफर में लखनऊ के विकास की कहानी को आंकड़ों से नहीं बल्कि लखनऊ के आम लोगों की जिंदगी में आए बदलाव के जरिए समझते हैं।
1: हमारी पहली कहानी है अनीता जी की। अनीता जी एक गरीब परिवार से आती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी आसान नहीं था,
0: लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद उनके परिवार की जिंदगी में कई बदलाव आए। परिवार को राशन, आवास और शौचालय जैसी सुविधाओं का लाभ मिला।
1: अब जरा उस दौर को याद कीजिए जब घर में शौचालय नहीं था। खासकर महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी परेशानी रही होगी। जरूरत के लिए घर से बाहर जाना, समय का ध्यान रखना और कई तरह की असुविधाओं का सामना करना, ये सब रोज की जिंदगी का हिस्सा था।
0: लेकिन जब घर में शौचालय बना तो सिर्फ एक सुविधा नहीं आई बल्कि परिवार को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान भी मिला।
1: आइए अब सीधे अनीता जी से सुनते हैं कि इन योजनाओं ने उनकी जिंदगी को किस तरह बदला।
0: विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। इस प्रोग्राम में हम उन लाभार्थियों के पास पहुंचते हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उनके विकास की कहानी उनकी जुबानी ही हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनीता जी मौजूद हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आइए जानते हैं कि इन लाभों से उनका जीवन कैसे बदल रहा है। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। आपका नाम अनीता है, आप काम क्या करती हैं?
2: हम भैया वह घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सबको स्वागत करते हैं।
0: अच्छा, और हस्बैंड क्या करते हैं आपके?
2: खाना बांटते हैं।
0: अच्छा, और घर में कौन कौन है लोग?
2: घर में हमारे दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का, हम, हमारे हस्बैंड सुनील।
0: अच्छा, तो हम आज लोगों को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी और आप लाभार्थी हैं। तो अनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
2: भैया हमका राशन भी सरकार दे रही है। सरकार राशन भी दे रही है, कॉलोनी भी हमारी बन चुकी है, लैट्रीन भी बन चुकी है।
0: अच्छा,
2: हाँ,
0: तो मतलब जो योजनाएं सरकार की चल रही है, जिनके पात्र आप हैं, वो आपको लाभ मिल रहा है। कब आपका ये जो है मकान सरकार ने बनवाया और शौचालय कैसे मिला आपको?
2: अरे भैया, तो मकान पहले जब प्रधानी रही तब मकान बना था हमारा, जीतू प्रधान जब रहे तब मकान बना, उसी में लैट्रीन बनी है।
0: सन आपको याद है कि किस सन में बना मकान?
2: भैया ये तो हम पता नहीं कब,
0: चार छह साल हुआ?
2: हाँ हाँ हाँ, ऐसे हो गया, छह साल हो गए।
0: अच्छा,
2: और ज्यादा ही हो गए, पहले पंची में रहे मतलब।
0: तो जब पहले मकान नहीं था तो क्या समस्याएं हुआ करती थी?
2: अरे भैया बहुत समस्या, सब खाना, खेती ना बारी ना कुछ, कमा, अगर आदमी कमा रहा तो खा रहे, और आदमी अगर नहीं बीमार आजार हो गया, समझ लो भैया जो परेशानी हम ही लोग जानी थे, ना खेती ना बारी कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है खेती बारी। अगर मेरा आदमी कमाता है तो खाते है, अगर बीमार आजार हो जाते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं।
0: तो राशन मिल रहा है कि नहीं?
2: राशन मिल रहा भैया,
0: से कुछ फायदा मदद मिलती है?
2: हाँ, फायदा मिलती है भैया,
0: सहयोग तो कुछ एक तरह से मिल रहा है ना?
2: जी जी, सरकार तो सहायता तो बहुत कर रही है, अच्छी कर रही है, बढ़िया कर रही है।
0: और शौचालय जब पहले नहीं हुआ करता था तब दिक्कतें होती होंगी।
2: हाँ दिक्कतें रहे, अब तो सरकार शौचालय चले सब सुविधा कह दी भैया, तो अब तो सही है, अब सब चीज सही।
0: तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगी जो इन सब कामों के करता धरता है?
2: भैया जी सही है, अपने जगह पे तो सही है, अपने जगह पे भाई सब लोग अपने अपने जगह पे।
0: आपका लाभ, आपको लाभ मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, तो फिर आपका जीवन तो परिवर्तित हो रहा है ना?
2: जी
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: दोस्तों। अब चलते हैं लखनऊ के सरोजी नगर ब्लॉक की ओर, जहां हमारी मुलाकात होती है लक्ष्मी नारायण जी से।
1: लक्ष्मी नारायण जी उम्रदराज हैं, उनके परिवार को राशन की सुविधा मिल रही है, वहीं उनकी पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा परिवार को कई अन्य सरकारी सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त हो रहा है।
0: लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया आवास योजना का लाभ मिलने के बाद।
1: एक समय था जब लक्ष्मी नारायण जी का परिवार कच्चे मकान में रहता था। कच्चे घर में रहना अपने आप में एक चुनौती था, और जब बारिश का मौसम आता था तो मुश्किलें और बढ़ जाती थी।
0: दोस्तों बारिश के दौरान घर की चिंता, रोजमर्रा के काम में परेशानी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता, इन सब का असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता था।
1: लेकिन जब उन्हें पक्का आवास मिला तो उनके लिए जिंदगी काफी आसान हो गई। अब सिर पर एक सुरक्षित छत है और परिवार पहले की तुलना में ज्यादा सुकून के साथ रह पा रहा है।
0: यही तो है जन कल्याण की असली तस्वीर। जब किसी योजना का लाभ कागज से निकलकर किसी परिवार के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और सुविधा को लेकर आता है।
1: तो आइए अब खुद लक्ष्मी नारायण जी से सुनते हैं कि आवास और दूसरी सरकारी सुविधाओं ने उनकी जिंदगी में क्या बदलाव किया।
0: विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, और आज एक ऐसी ही विकास की कहानी सुनाने के लिए एक ऐसे ही लाभार्थी के पास हम आ चुके हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक में भटगांव ग्राम सभा के रसूलपुर गांव में हैं, और एक लाभार्थी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के बाद उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया, कैसे वो विकास को महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका?
3: मेरा लक्ष्मी नारायण।
0: अच्छा आपका नाम क्या है माता जी?
4: सुमन चौरसिया।
0: अच्छा अब आपसे ये जानना चाहेंगे, एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, तो आप लाभार्थी हैं, आप बताइए कि आपका विकास कैसे हो रहा है और क्या क्या सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है?
3: इस सरकार में यानी योगी सरकार में हमको कॉलोनी भी मिली है, लैट्रिन भी मिली है, जिससे हमको बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया हम लोगों के साथ में।
0: दादा कब आपको कॉलोनी मिली और कब शौचालय बना घर में?
3: ये शौचालय करीब करीब 2016 में बना है, पहले बन गया था, कॉलोनी मिली 2018 में।
0: अच्छा तो आपने कैसे आवेदन किया या कैसे आपको पता चला कि सरकार शौचालय बनवा रही है, सरकार आवास दे रही है?
3: पहले कुछ नहीं मालूम था, प्रधान के द्वारा हमको सब मतलब ये अवगत हुआ कि आपकी कॉलोनी आई है, और ये वाइफ के नाम से कॉलोनी आई थी, तो हमको पैसा मिला, हमने कॉलोनी बनवाई, और उसके बाद हमको पूरा पैसा मिला, लेबरिंग का पैसा मिला, सब कुछ मिला इस योगी सरकार में, और हमको बहुत प्रसन्नता है, लैट्रिन भी मिली, और हमको पहले घर टपकता था, सब कुछ दिक्कतें थी, छप्पर था, आज हम सुकून से रह रहे हैं।
0: दादी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अब तो पक्का मकान बन गया है, पहले दिक्कत होती थी क्या?
4: हाँ पहले बहुत दिक्कत होती थी, पानी उलचना पड़ता था, भर जाता था बरसात में, बाहर लेटरिन जाना पड़ता था, तो बहुत कीचड़ था, बहुत पानी था।
0: और अब?
4: अब आराम है, ठीक है, मोदी सरकार के योजना में हमका बहुत लाभ मिली है।
0: अच्छा तो जीवन लोगों का बदल रहा है जो सरकार प्रयास कर रही है?
3: बहुत ज्यादा बदल रहा है, बहुत ज्यादा बदल रहा है। अभी ये सब सुविधाएं आरसीसी बन गई, ये बन गया, सब बन गया, तो हम लोगों को सब सुविधाएं मिल रही हैं, और हमको क्या चाहिए?
0: राशन वगैरह भी मिलता है?
3: राशन भी मिलता है, वाइफ को मेरी वो मतलब वृद्धा पेंशन भी मिलती है। अच्छा। मतलब है सब सुविधाएं मिली हुई है हम लोगों को।
0: घर में कितने लोग हैं आपके?
3: चार लोग हैं, हम मेरी वाइफ, एक लड़का और बहू।
0: अच्छा, बच्चा क्या करता है आपका?
3: ये सामने दुकान पे है।
0: अच्छा, दुकान खोल रखी है। तो कहने
3: खुली है, दुकान अभी अभी खुली है।
0: तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरा जीवन है बहुत बेहतर से चल रहा है, सुकून से चल रहा है, और इसी को हम कहते हैं कि विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। आप सुनते रहिए और ऐसे ही लाभार्थियों के पास जाकर के उनके विकास की कहानी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों, लखनऊ की इस कहानी से एक बात साफ है, शहर का विकास सिर्फ चौड़ी सड़कों, बड़े प्रोजेक्ट्स और आधुनिक इमारतों से नहीं मापा जाता।
1: विकास की असली तस्वीर तब दिखाई देती है जब एक गरीब परिवार को राशन मिलता है, जब किसी घर में पहली बार शौचालय बनता है, जब किसी परिवार को कच्चे मकान की जगह पक्की छत मिलती है, और जब बुजुर्गों को पेंशन का सहारा मिलता है।
0: दोस्तों, लखनऊ अपनी तहजीब और विरासत को संभालते हुए विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है,
1: और विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश का हमारा आज का सफर यही संदेश देता है
0: कि जब विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचता है तभी विकास सही मायनों में जन कल्याण बनता है। तो आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे यानी कि आरजे अभिषेक और
1: आरजे सोनू को इजाजत।
0: फिर मिलते हैं उत्तर प्रदेश के एक और शहर, एक और कहानी और एक और जन कल्याणकारी सफर के साथ। नमस्कार। नई

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं, और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियाँ हो सकती है। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं, और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: उपेक्षित स्थानों को उपयोगी बनाने के लिए दो निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
3: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम ने निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उसके 18 वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। आज करीब 4000 छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान की गई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की मसौदा सूची आज प्रकाशित की गई। SIR इस वर्ष 20 जून को शुरू हुआ और घर घर जाकर गिनती 30 जून को शुरू की गई। मतदाता सूची में मतदाता के नाम, EPIC नंबर, आयु, पता और रिश्तेदार के नाम आदि का विवरण है। एक रिपोर्ट।
4: मसौदा मतदाता सूची के अनुसार 1,45,10,299 मतदाताओं में से कुल 97,53,577 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। इनमें मुख्यतः पुरुष 49,88,993, महिलाएं 47,64,137 और 18 से 19 वर्ष के बीच 1,03,870 मतदाता हैं। नागरिक codelhi.gov.in से मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दावे और आपत्ति 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकती है। यदि कोई निर्वाचन निर्दिष्ट अवधि 30 जून से 17 अगस्त 2026 के भीतर अपना भरा हुआ गणना प्रपत्र जमा करने में असमर्थ रहा हो तो वह दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान शामिल किए जाने के लिए निर्धारित घोषणा पत्र के साथ प्रपत्र 6 दाखिल कर सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
2: सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली मौजूदा पेपर बेस्ड पिंक टिकट व्यवस्था को अगले महीने की 17 तारीख तक बढ़ा दिया है। ये फैसला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आधारित सिस्टम में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करने और आने वाले त्योहारों के दौरान महिला यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है। दिल्ली परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस बढ़ी हुई व्यवस्था से लिए महिलाएं ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी मुफ्त बस यात्रा का फायदा उठा सकेंगी और इसके बाद पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 19 लाख महिलाओं ने पहले ही इस कार्ड के लिए अप्लाई या रजिस्टर कर लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत दो निजी कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य फ्लाईओवरों के नीचे और उनके आसपास मौजूद उपेक्षित या कम उपयोग वाले स्थानों को स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और नागरिकों के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थल बनाना है। एक रिपोर्ट।
6: इस साझेदारी के अंतर्गत स्वच्छता, हरियाली, सौंदर्यकरण, सुरक्षा, पैदल आवागमन को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। पहली कंपनी के पहल के अंतर्गत दीपाली चौक से मंगोलपुरी मार्केट तक 2.5 किलोमीटर के स्थानों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित सामुदायिक स्थलों के रूप में

0: विकसित करने की योजना है। वहीं दूसरी कंपनी द्वारा मथुरा रोड और एमपी मार्ग के आसपास के करीब 2 एकड़ की ग्रीन बेल्ट के विकास और दीर्घकालिक रखरखाव की पहल की जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वर्ण पहलों से दिल्ली के प्रमुख कॉरिडोर की सुंदरता और पहचान बेहतर होगी, हरियाली बढ़ेगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होंगे। वहीं दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार अकेले सारा काम नहीं कर सकती है और अगर सरकार के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी हो तो काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
1: सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है, सरकार के साथ में पब्लिक पार्टनरशिप भी हो तो और काम अच्छे से हो सकता है। बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो दिल्ली को सुंदर बनाना चाहती हैं और ये हमारा पहला एमओयू नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे पीएसयू के साथ में एमओयू किया और हर जगह पे आप ये देख रहे होंगे दिल्ली की जनता को फर्क दिखाई दे रहा होगा कि रोड के साइड में नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, प्लांटेशन हो रहा है और अच्छा उसको सुंदर बनाया जा रहा है।
0: श्री सिंह ने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और निजी क्षेत्र की यह साझेदारी आगे भी इस प्रकार से मजबूत होती रहेगी, साथ ही मिलकर दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के संकल्प को नई गति मिलेगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
2: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में निगम के स्वच्छता सुपरवाइजर कर्मचारियों के साथ ओपन हाउस बैठक की। इस बैठक में स्वच्छता कर्मचारियों ने आयुक्त के समक्ष शहर को स्वच्छ बनाए रखने से संबंधित अपनी समस्याएं, सुझाव और विचार रखे। इस अवसर पर श्री खिरवार ने कहा कि वर्तमान मानसून का सीजन एमसीडी के लिए बेहतर रहा और पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ये निगम के लिए सबसे अच्छे मॉनसून सीजन में से एक रहा है। उन्होंने मॉनसून के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने में योगदान के लिए स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। राजधानी में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महापौर प्रवेश वाही ने आज दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने विजय कैंप में निर्माणाधीन फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को फिक्स्ड कॉम्पैक्टर को जल्द से जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ई वेस्ट के बेहतर प्रबंध को लेकर सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में झंडे वालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को मॉडर्न सुविधाओं से लैस स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली में ई वेस्ट के सही कलेक्शन, सेमिग्रेशन, डिसमेंटलिंग और रिसाइक्लिंग के लिए साइंटिफिक फैसिलिटी स्थापित करने के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज टोडापुर के यातायात पुलिस के कामकाज की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने और जाम वाले स्थानों पर समय रहते जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने विधानसभा के राजा विहार नया रास्ता में नई सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस नई सीवर लाइन के निर्माण से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और स्थानीय निवासियों को सीवर संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत मिलेगी। जाफराबाद स्थित एक निजी डे केयर और प्ले स्कूल में 3 वर्षीय बच्चे के साथ कथित दुष्कर्म मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित स्कूल को सील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित बच्चे के परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो दिल्ली सरकार उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बवाना क्षेत्र में 3 वर्षीय नर्सरी छात्रा के साथ दुष्कर्म पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। इस मामले में स्कूल बस चालक के कथित रूप से शामिल होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही पर सवाल उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अदालत ने ये निर्देश एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर चिंता के बीच दिया है। वर्ष 2013 में भी एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
0: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग DPL क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के 183 रन के लक्ष्य को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 18 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। साउथ दिल्ली के लिए अंकित डबास 34 गेंद पर 62 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया। शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए अंकित डबास को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली के कला संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कला संस्कृति और भाषा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में पुस्तकालय की सेवाओं को अधिक जन उपयोगी बनाने और नए विचारों को धरातल पर उतारने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के PGDAV कॉलेज और लॉ सेंटर के छात्रों ने दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भी मुलाकात कर उनसे संवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि खुली बातचीत, विचारपूर्ण सवालों और नए विचारों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आज के युवा लोकतंत्र को लेकर जिज्ञासु हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा सूची जारी की। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों के आसपास मौजूद उपेक्षित स्थानों को उपयोगी बनाने के लिए 2 निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: पापा
4: लाइए 3,000।
5: क्यों भाई?
4: मेरी पॉकेट मनी।
5: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
4: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो?

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है, और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन, और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों। तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
4: थैंक यू आनंद। सच कहूँ तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है, लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
5: बिल्कुल सही कहा, पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते।
6: रीना जी और कुमकुम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और सबसे दुख की बात ये है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम होती जा रही है।
2: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा,
2: बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी, मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के रीना कुमकुम के साथ नहीं है, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदि हो गए कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल

0: सही कहा। और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूं आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
0: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
1: करेक्ट। और हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
0: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा, और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
1: तो मुझे लगता है कि देखिए सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
0: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
1: करेक्ट।
0: किसके मन में क्या बात, आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के टाइम, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
1: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी
0: है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ है ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, या आज आप उदास क्यों है।
1: सही कहा आपने।
2: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
0: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
3: जी। और आज बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
0: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
3: बिल्कुल,
0: अब बातें ज्यादा होती हैं,
3: रिश्ते कम टिकते हैं।
1: क्या बात है। चलिए दोस्तों ये बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
4: हेलो 9821026212 BPL अरे 9820026235 MaxTouch

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो। और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी। और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था। Correct. और सबके कमरों में ही पहुंचा देगा था।
0: पहुंचा
1: और
0: रूम
1: पे नहीं बेटा, हम तुम्हारा रूम में मतलब आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ। क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था।
1: हाँ
2: अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे।
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग
1: तो
0: लेट लाइट
1: आ गई। पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती। अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब होना कि हम समय पर सोए, समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं। पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है।
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू समझते।
0: एग्जैक्टली,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो।
2: बिल्कुल,
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल ChatGPT जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले, अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे। डिक्शनरी कम हो गई है क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरीथिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा, आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, और जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि देखिए, दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए। हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना, घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए। आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल ये दूध लेने भी नहीं जाते, क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
1: पहले चलो ठीक है, कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल नहीं निकलना है, कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है। हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
0: सोचो
1: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं,
1: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
0: सही कहा आपने। तो दोस्तों मतलब कुल मिला के यह है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार, हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं, हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ पे अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी
0: सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
1: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ जाके लोग वहाँ की खूबसूरती नहीं देखते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए, वहाँ की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ये, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि या कौन सा व्यू हम देख लें, यहाँ पे हमारा फोटो सबसे बेस्ट,
2: फोटो वीडियो
0: कैप्चर करो उसको ही।
1: खाने के टेबल पे खाना रखा है
0: Correct.
1: लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आठ ठीक था, बाद में अगर एक डिश, चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट के लिए, वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए,
2: क्यों, हमारा ध्यान तो फोन में होता है। पहले हम फोटो खींचते, स्नैप भेजते हैं, और फिर वही टाइम हो जाता है, चलो चलो ठीक है।
1: टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में, ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
1: तो मतलब वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोगों को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है।
2: बिल्कुल,
1: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या नेगेटिव चीज पे दे रहे हैं? पॉजिटिव भी है इसमें, नेगेटिव भी है।
0: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है शैली। जाते जाते रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखें कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए,
2: सुविधा के लिए दी जाते हैं क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारा पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं। पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसके आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देखती है तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
4: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे बच्चे। अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते हैं या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया, तो भैया तो समझो बेटा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय,
4: सबसे
3: ज्यादा स्ट्रेस। लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है। साइड चल गई है, आइए बात करिए।
4: बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए, यहाँ सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में रख दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं यहाँ से जाने के विदा।
0: बिल्कुल, इजाजत लेंगे, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाएं, अपने परिवार को भूल जाएं। परिवार को क्वालिटी टाइम दीजिए और फैमिली से भी कहना चाहता हूं, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही हैं, वर्किंग लेडी हैं, आप वुमेन वर्किंग वुमेन हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही करती रहिए, ऑल द वे बेस्ट। बट उसके साथ ही साथ अगर आप घर जा रही हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में एक ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट एक घंटा ही सही, बट वो आप जरूर करें, कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें, मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है। तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी, हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनते रहिए, है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
2: बजाते रहो,
3: गुनगुनाते रहो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
8: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे हम अष्टमी के रूप में भी जानते हैं। यह पावन दिन समर्पित है माँ महागौरी को, जो शुद्धता, करुणा, शांति और सौम्यता की प्रतीक है। नवरात्रि का यह पर्व हमें नारी शक्ति के हर स्वरूप को पहचानने और सम्मान देने की प्रेरणा देता है, और माँ महागौरी का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में पवित्र और दृढ़ संकल्प से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। माँ महागौरी वह दिव्य शक्ति है जो अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती है। उनकी आराधना हमें यह संदेश देती है कि अगर मन शुद्ध हो, सोच सकारात्मक हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो सफलता अवश्य मिलती है। श्रोताओं, यही सकारात्मक सोच आज उत्तर प्रदेश के विकास में भी देखने मिलती है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने न केवल विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। आज प्रदेश की महिलाएं और बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार व समाज का नाम रोशन कर रही हैं। यह परिवर्तन संभव हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व के कारण। उनकी सोच साफ है, हर महिला को सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिले ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सके। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाना। इन प्रयासों से आज लाखों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या फिर उद्यमिता। वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं और समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। माँ महागौरी की तरह ही आज की नारी भी धैर्यवान है, मजबूत है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, हर महिला को समान अवसर मिले और वह अपने जीवन को बेहतर बना सके। श्रोताओं, नवरात्रि का यह 8वां दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि वह हमारे विचारों, हमारे संस्कारों और हमारे संकल्प में होती हैं। और आज उत्तर प्रदेश इसी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हर महिला सशक्त है, आत्मनिर्भर है और सम्मान के साथ जीवन जी रही है।
1: You are listening FM Muradabad 89.6 MHz.
2: Committed to community.

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे राज। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो हर सपना सच हो सकता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर की रहने वाली गुंजन देवी की, जिन्होंने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और आज एक सफल उद्यमी बन चुकी है। दोस्तों, साल 2020 जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, हर परिवार किसी न किसी संकट से गुजर रहा था। गुंजन देवी का परिवार भी इस मुश्किल समय में अछूता नहीं रहा।
1: कोविड के समय मेरे पति की नौकरी चली गई थी, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
0: एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी, लेकिन यही से शुरू होती है एक नई कहानी, हिम्मत की, आत्मनिर्भरता की। गुंजन देवी ने हार नहीं मानी बल्कि एक फैसला लिया कुछ अपना काम करने का, और इसी राह में उनका साथ दिया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ASVEP योजना ने।
1: हमें स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी मिली, फिर SVEP योजना के बारे में पता चला, वहीं से रास्ता मिला।
0: गुंजन देवी तुलसी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और यही से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्हें 40,000 रुपए का ऋण मिला। अपनी बचत मिलाकर उन्होंने दिसंबर 2022 में बेकरी व्यवसाय की शुरुआत की। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा कदम लेकिन बड़ा बदलाव। शुरुआत आसान नहीं थी, चुनौतियाँ थी।
1: शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन मैंने और मेरे पति ने मिलकर सब सीखा, धीरे धीरे काम बढ़ता गया।
0: यही तो असली ताकत है, परिवार का साथ और खुद पर विश्वास। गुंजन देवी ने कच्चे माल की खरीद से लेकर उत्पाद बनाने और बेचने तक हर चीज खुद सीखी। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से संपर्क किया, अपने उत्पादों की सप्लाई शुरू की और देखते ही देखते उनका व्यवसाय बढ़ने लगा।
1: आज हमारा काम अच्छा चल रहा है, लोग हमारे प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं।
0: आज गुंजन देवी का मासिक कारोबार 1.5 लाख से 1.8 लाख पहुंच गया है और हर महीने 15,000 से 20,000 रुपए तक का लाभ भी हो रहा है। यानी जो कभी संकट में थी आज सफलता की मिसाल बन चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ऋण का लगभग 80% हिस्सा भी चुका दिया है और हाल ही में उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सम्मानित भी किया गया है।
1: हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारे काम को पहचाना गया।
0: ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है बल्कि उन लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो कुछ नया करना चाहती हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और SVEP आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया जाता है। सरकार की यह सोच साफ है, जब महिला सशक्त होती है तो परिवार मजबूत होता है और जब परिवार मजबूत होता है तो पूरा प्रदेश आगे बढ़ता है।
1: अगर हमें यह मौका नहीं मिलता तो शायद हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते।
0: यानी सही मार्गदर्शन और थोड़ी सी आर्थिक मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज गुंजन देवी का सपना सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है,
1: आगे हम अपने काम को और बढ़ाना चाहते हैं और दूसरों को भी रोजगार देना चाहते हैं।
0: वाह, यही तो असली सफलता है, जब आप खुद आगे बढ़े और दूसरों को भी साथ लेकर चलें। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। गुंजन देवी ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो हालात जैसे चाहे जैसे भी हो, रास्ता जरूर निकलता है। उत्तर प्रदेश आज आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और विकास की एक नई पहचान बन चुका है और यह संभव हो रहा है सरकार की योजनाओं और मजबूत नेतृत्व के कारण। तो श्रोताओं, अगर आपके पास भी कोई सपना है तो आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे राज, अभी के लिए लेता हूं आपसे विदा। जल्द ही मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोफ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
4: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं, और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है, और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है।

0: प्रधानमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ बातचीत में नौबहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: थोड़ी कम हुई है अब और दिल से बात करने की वक्त हुई है चालू। तो बहुत ही बढ़िया रहा कि सबसे पहले आज हमारे एक लिसनर है, उन्होंने कहा कि जी मैं तो आपको कॉल पहले ही मिला के रखूंगा क्योंकि मेरी बात नहीं हो पाती है। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया उनसे बात करके अपने लिसनर, देखते हैं क्या कहते हैं वो भी। नमस्कार दिल से दिल तक अखिल संघ, हेलो।
1: हेलो
0: सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम गुलजार सैफी है।
0: गुलजार जी,
1: मैं कांट से बात कर रहा हूँ।
0: आप कांट से बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी सर।
0: क्या करते हैं गुलजार जी आप?
1: अपना काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा, इंटीरियर एक्सटीरियर का काम है हमारा।
0: बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया। तो आज कौन सी फरमाइश है आपके पास जो आप चाहते हैं सुनना?
1: हमारे भाई है आसिफ भाई, उनकी फरमाइश थी हमारे भाई की, राणा जी मुझको माफ करना।
0: तो माफ कर दिया, नहीं कर दिया आपने उन्हें?
1: सर आप नहीं सुनाओगे तब तक माफ नहीं होगा, गाना नहीं सुनाएंगे तब तक माफी नहीं मिलेगी इनको।
0: जब तक ये गाना नहीं प्ले होगा तब तक इन्हें आसिफ जी को माफी नहीं मिलेगी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो कोई किसी और को भी डेडिकेट करना चाहते हैं आप गाना?
1: है किसी और को करना चाहते हैं? अभी तो हम दो ही हैं फिलहाल।
0: आप दो ही हैं फिलहाल? तो चलिए साहब,
1: ऑडियंस को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा जहाँ तक है आपकी।
0: जरूर जरूर, जब आपने गाना इतना अच्छा चुना है मुझको राणा जी माफ करना तो जरूर पसंद आएगा। ये करण अर्जुन मूवी का गाना है और इस मूवी की तो मतलब कहते हैं ना दीवाने भी बहुत रहे हैं।
1: जी जी जी, हमारी जो कंपनी है हमारी ना एंटी कॉन्ट्रैक्टर है, इंटीरियर करके हमारी कंपनी है।
0: ओके।
1: मुरादाबाद, मुरादाबाद रामपुर अमरोहा संभल, मतलब पूरे आसपास के क्षेत्र में, हल्द्वानी नोएडा ये आसपास के सारे क्षेत्रों में, दिल्ली तक काम करती है।
0: तो आपकी कंपनी का ऑफिस किधर है?
1: सर हमारा ऑफिस है हरतला हिमगिरी कॉलोनी 39, मकान नंबर ऑफिस का मतलब जो एड्रेस है
0: तो
1: मेन रोड मुरादाबाद।
0: तो हमारे श्रोतागण सभी ध्यान से सुने, अगर कभी भी कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर डिजाइनिंग से लेके आपको कोई भी काम हो तो एक बार जरूर हमारे आसिफ जी और गुलजार सैनी साहब को, गुलजार सैफी साहब को जरूर मौका दें। और इनका ऑफिस भी हिमगिरी में ही है, यहीं आपके पास हरतला कॉलोनी में। तो जरूर गुलजार साहब आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। चलिए तब तक आप एंजॉय करिए, राणा जी को भी माफ करिए और थोड़ा सा दिल की बात करिए आसिफ जी के साथ।
1: ओके सर, थैंक यू सर। ओके।

0: बिल्कुल सही कहा, मुझको जी राणा माफ करना, सारा पैसा मेरा खर्च हो गया है, पूरा महीना जो था ऐसे ही निकल गया है, अब नया महीना चालू होने वाला, खर्चा जो है काबू में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, और साहब हमारे पास कहते हैं ना आज खूब सारी फरमाइशें हैं, खूब सारी दिल से दिल की बातें हैं, कह रहे हैं कि आज हमारे मन का गाना प्ले कर दीजिए, क्योंकि जाता हुआ महीना है, कुछ तो साहब मन का हो जाए तो जरूर हम अपने लिसनर से बात करते हैं, क्या कहते हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका? दल सिंह सैनी जी, क्या करते हैं आप और कहां से बात कर रहे हैं? पीतल नगरी रोड देवापुर। कैसा मौसम हो रहा है इस समय सर वहां पे?
1: मौसम सर तैयार है, बरसात सारा पूरी चमक रहा है, चमार हो रही है।
0: मतलब हवा चल रही है, नहीं चल रही है थोड़ी बहुत? हवा बंद है तो जल्दी बरसात होने वाली है फिर तो। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे इस मौसम में आप?
1: मैंने ही बोला था प्यार दिखता नहीं मूवी का नाम है, और मूवी है।
0: जरूर जरूर जरूर ये गाना हम प्ले करते हैं। किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: दोस्तों के लिए कर देना है, बहुत से दोस्त बेवफा होते हैं, वो ये थोड़ा बहुत सुन लेंगे तो थोड़ा मन की शांति हो जाए।
0: तो बेवफा दोस्तों को सुनाना है ये गाना आपको? क्या नाम है अब जब इतना बोल ही दिया तो बेवफा दोस्तों के नाम भी बोल दीजिए। इसका मतलब सब आपके करीब हैं, ये दिल के बहुत करीब हैं आपके। चलिए साहब आपकी ये फरमाइश पूरी करते हैं, और ये मिथुन चक्रवर्ती पे फिल्माया गया गाना जरूर आपके लिए प्ले करते हैं। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे पीतल नगरी से दाल सिंह जी, और कह रहे हैं कि मेरा जो बहुत ही बेवफा दोस्त, मतलब जो बहुत इनका खास दोस्त है, उसके लिए इन्होंने गाना डेडिकेट करना चाहा, तो जरूर वो गाना भी प्ले करेंगे। और कहते हैं ना प्यार में दिल खर्च होता है और शॉपिंग में जेब, लेकिन आज बात सिर्फ प्यार की नहीं हो रही है, आज बात हो रही है पैसों की भी, क्योंकि पैसा खर्च करना भी जरूरी है, लेकिन सवाल ये है खर्च करना है लेकिन कैसे, संभाल के कैसे किया जाए। तो आप भी बताइए कैसे बचा सकते हैं पैसे। पहले तो ये बताना पड़ेगा साहब कि आप पैसे खर्च करने वाले इंसान हैं या पैसे बचाने वाले, और शॉपिंग में आपका बजट बिगड़ता है या आपका दोस्त आपका बजट बिगाड़ देता है। और हाँ, अगर पार्टनर कह दे आज कि आज कुछ अच्छा सा खरीद लो, तो आप क्या करेंगे, चटोरी गली ले जाएंगे या फिर ले जाएंगे वेव मॉल? तो दिल की बातें होंगी और प्यार की बातें होंगी। तब तक करते हैं गाना एंजॉय, जो पूरा सीधा दल सिंह जी की फरमाइश में अपने बेवफा दोस्त के लिए, अरे नहीं नहीं मतलब उनके खास दोस्त के लिए। 9837896896 पे आप भी करें फरमाइश और बताएं कि कौन सा गाना जो है बहुत ही दिल के करीब है।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। और सच में साहब, कभी कभी महंगाई मारी जाती है, चाहे कितना भी बचाओ कितना भी बच लो, मगर महंगाई जो है ना वो आपको पकड़ ही लेगी कहीं ना कहीं कहीं से। कुछ रिश्ते जो हैं पैसों से नहीं चलते हैं, बस एक दूसरे की कदर से भी चलते हैं। प्यार में कीमत नहीं देखी जाती, बस इंसान की नीयत देखी जाती है। महंगे तोहफों से क्या होगा साहब, जब दिल में मोहब्बत सच्ची हो तो छोटी सी चीज भी खास बन जाती है। और एक छोटी सी बात, अगर कोई आपको प्यार करता है तो जरूरी नहीं कि वो आपको हर बार कोई महंगा गिफ्ट दे। कभी कभी वो खुद भी बोल देता है, साहब मैं हूं ना। तो ये तीन शब्द भी आपके लिए सबसे बड़े गिफ्ट हैं। चलिए बात करते हैं अपने नए लिसनर से और पूछते हैं वो क्या सुनना चाहते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका सर?
1: हेलो, मेरा नाम राम सेवक शर्मा।
0: राम सेवक शर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया साहब, आप सुनाइए कैसे हैं?
0: बस बढ़िया बढ़िया। क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं सर।
0: इस समय फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, अभी तक आप घर नहीं पहुंचे हैं?
1: पहुंच गए, आगे ट्रांजिस्टर खोला है।
0: चलिए चलिए, तो क्या फरमाइश है, क्या कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, दिल से कौन सा गाना निकल रहा है आपके?
1: मेरी बीवी काली कलूटी के नखरे वाले।
0: अरे साहब, ये जो गाना सुन रहे हैं अपने रिस्क पे सुन रहे हैं या सभी का, मतलब आसपास होने वाला?
1: हमारी बीवी बहुत खुश हो रही है साहब।
0: आपने ये खाना खा लिया है इसका मतलब?
1: हाँ, खाना खा लिया बस।
0: हाँ, तो आप ये रिस्क, हाँ तभी आपने रिस्क ले लिया है सर। और किसको डेडिकेट करना चाहेंगे ये? चलिए सर, बहुत ही बढ़िया है। तो ये गाना गुनगुना दीजिए, आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, तो एक लाइन गा भी दीजिए इसकी। गाने की हिम्मत नहीं हो रही है, फरमाइश हो गई है मगर गाने की हिम्मत नहीं हो रही है साहब। चलिए कोई नहीं, बहुत बढ़िया आपने। नहीं साहब, सही है साहब, दरोगा का डंडा भी जरूरी है। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा आपने कॉल करी और आपने अपने मन की फरमाइश बोली। ठीक, तो सर ने तो ले लिया है साहब रिस्क। अगर आपके पास भी है इतना डेयर तो जरूर 9837896896 पे कॉल करें और पसंदीदा गाना, हाँ हाँ ये वाला नहीं, ये वाला तो आपने आपके डेडिकेट कर दिया है, रामचरण जी ने आप ही के लिए कर दिया है, आप सभी का मन की बातें कर दी है, मगर कोई और भी गाना हो ना, कुछ और भी कहना हो तो जरूर आप एकदम कॉल करके या मैसेज करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए आनंद लीजिए इस गाने का।

0: बिल्कुल सही कहा, आपका क्या होगा जनाबे अली, जब आप निकल गए हैं और घर पहुंचने वाले हैं तो बस यही निकलता है दिमाग में जवाब कि अब मेरा क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है खाने में, और क्या कैसा होगा मेरा साथी जिसे मनाना पड़ेगा आज। तो कोई नहीं, तब तक करते हैं कुछ बात अपने लिसनर्स के साथ कि हाँ भाई, उनकी भी दिल की बात सुन ली जाए। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: तुमने चाहा ही नहीं तब वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं तब वरना हालात बदल सकते थे, उसके आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे, वो तो ठहरे रहते पानी और झील की तरह, वो तो ठहरे रहते पानी और झील की तरह, अगर दरिया बन के बहते तो बहुत दूर निकल सकते थे।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, आपने तो अपनी एंट्री ऐसे धमाकेदार करी है, हम पूछते रह गए नाम, और इतनी इतनी शायरी पढ़ दी, इतनी बढ़िया शायरी पढ़ ली आप।
1: सबसे पहले सर आपको प्यारे प्यारे सभी सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर।
0: सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपको भी एक प्यार भरा नमस्कार, पूरी पूरी उम्मीद है कि आप भी प्यारे ही होंगे।
1: जी सर, मैं काफी अच्छा हूँ, और सर सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो रामपुर में इस समय मौसम कैसा हो रहा है अमरजीत जी?
1: सर मैं इस समय रामपुर में तो नहीं हूँ, मैं एमपी मध्य प्रदेश इंदौर जिला धार करता या महेश्वर के पास में, यहाँ से बात कर रहा हूँ, एमपी से इंदौर से।
0: तो आप जो है इस समय भ्रमण में निकले हुए हैं या वहाँ पे एमपी में बस गए हैं इस समय?
1: सर मैं यहाँ पे अपना एक कार्य है हैंडवर्क का, और यहाँ पे कसीदा कंपनी है जो विवाह का, इसका शोरूम है कपड़े का सर, इस कंपनी में अपना जरी का काम करता हूँ हैंडवर्क का।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, हम तो चाहते हैं कि आपकी कारीगरी का कभी कभी हमें भी कोई नमूना दिखाइएगा, आपने भेजिएगा। तो आज कौन सी फरमाइश है, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और किसके लिए सुनना चाहते हैं?
1: सर मैं गीत जो सुनूंगा आज, फिल्म का नाम रहेगा सड़क, और इसमें गीत के बोलेंगे हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुमने ही आते तो हम मर जाते, और मैं तो लेना और कहना चाहूंगा सर आपसे।
0: हाँ हाँ जरूर जरूर अमरजीत जी जरूर।
1: तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं था मैंने, कि तेरे बगैर किसी और को आज भी देखा नहीं है मैंने, सूख गया था तेरा बगुलाब मगर आज भी फेंका नहीं है मैंने, वो सुनने वालों के नाम लेना चाहूंगा सर।
0: जरूर जरूर बोलिए सर, हम भी सुनना चाहेंगे उनके नाम।
1: जैसे कि मेरे बड़े भाई साहब हैं ऋषि पाल, और बड़े भाई साहब अमरपाल, छोटा भाई शुक्लाल, छोटा भाई सीएम बक्साना दातागंज से विमल ठाकुर जी हैं, और सरनूर अंसारी बरेली से रहेंगे, और मुरादाबाद से फरमान भाई रहेंगे, मुकेश कश्यप रहेंगे, अतर सिंह सैनी रहेंगे, रामपुर से मोहम्मद आदिल खान रहेंगे, और भाई रफत साहब रहेंगे, और प्यारे प्यारे सुनने वाले भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, साथ में आप हैं अमरजीत सिंह।
0: धन्यवाद अमरजीत सिंह जी, धन्यवाद। आपकी लिस्ट तो ऐसी थी कि अखबार में नाम निकलना चाहिए साहब, सुबह मतलब पहली लाइन से लेकर आखिरी तक आपने एक सांस में नाम ले दिए, बहुत ही अच्छा लगा।
1: सर सर मुझे आपका प्रोग्राम काफी अच्छा लग रहा है, और काफी दिनों के बाद इस प्रोग्राम में कॉल मेरी शामिल हुई है, मुझे काफी खुशी हो रही है, और आज के प्रोग्राम में बराबर सुन रहा हूँ, काफी अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, और मैं आपके प्रोग्राम में कंटिन्यू सुनता हूँ, मुझे सारे ही प्रोग्राम पसंद आते हैं सर आपके यहाँ के।
0: चलिए, इससे ये बात तो कंफर्म होती है कि आपने जो रिचार्ज पैक करवा रखा है वो लंबा वाला करवा रखा है, 3 महीने बाद वाला करवा रखा होगा, जैसी रिचार्ज दोबारा हो।
1: ऐसे कोई बात नहीं है सर, आपकी जो प्यार मोहब्बत है जो आपकी ओर खींच लाती है सर, और कॉल लगाने को मजबूर कर देती है सर।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमें इतनी दूर से भी कॉल करते हैं, याद करते हैं और अपने दिल की बातें कहते हैं ना, दिल से जो निकले हुए गाने हैं। कभी कभी हमें जी जी ये कुछ गाने ऐसे होते हैं जब तक आप उन्हें सुनना लें तब तक दिल को चैन भी नहीं आता, ऐसा ही है ना
1: जी सर? क्योंकि ऐसा होता है सर, क्योंकि एक ब्रीफ वॉइस ही होती है जो अपनी पसंद आपके केंद्र के माध्यम से पूरी होती है, और जो सुनने वाले सभी साथी लोग इस प्रोग्राम से जुड़े होते हैं तो सभी की आवाज हम सुनते हैं, और जाहिर सी बात है इस प्रोग्राम में हमारी आवाज भी आप तक पहुंचती है, सभी सुनने वाले सुनते हैं, तो काफी अच्छा लगता है सर।
0: बहुत ही बढ़िया बढ़िया, और उसके ऊपर उम्दा, सबसे बड़ी बात आपने जो शायरी आज सुनाई है दोनों, बहुत ही अच्छी, लाजवाब सुनने।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए, धन्यवाद अमरजीत जी हमसे संपर्क करने के लिए और अपनी फरमाइश बताने के लिए।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू अमरजीत जी। तो श्रोताओं जी, एमपी से बोल रहे हैं, एमपी से हैं, हमारे रामपुर के ही, मगर बोल रहे हैं इस समय एमपी से और कह रहे हैं कि सड़क मूवी का हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। तो जरूर जरूर अनुराधा पौडवाल और मनहार उदास जी की आवाज में, और इसकी जो लिरिक्स लिखी है वो नन अदर देन समीर साहब ने लिखी। तो जरूर इस गाने को आप एंजॉय करें।

0: 보자. 그냥 와.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
6: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। और कहते हैं ना कि अब हो रहे हैं 9:55, तो साहब अब जाने का टाइम आ गया है। जैसे जैसे घड़ी जो है ना, सुइयां जो है ना, घड़ी की सुई टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक करके 10 बजा रही है ना, बस वही कह रही है कि भाई साहब तुम भी जल्दी से आराम करो और इन सबको भी आराम करने दो, इनके मन के और दिल के गाने बजने दो। तो जाने से पहले हम पढ़ेंगे मैसेजेस जो हमारे लिसनर्स के आए हुए हैं और देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं सब। हमारे पास मैसेज आया हुआ है, सर जी, हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है दिल से दिल तक, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, प्यारा है। ललिता कश्यप जी, नवीन नगर मुरादाबाद से। धन्यवाद ललिता जी, आपसे भी बहुत दिनों बाद आपका, कहते हैं ना, एक मैसेज आया है। लगता है आप भी कहीं ना कहीं बिजी थी, कहीं कहीं घूमने तो नहीं गए थे, या सावन में कहीं चले गए घूमने? भाई साहब चलो जी, मैं तो जा रही हूँ घूमने, फिर आऊँगी जैसे सावन ख़त्म होगा। तो ऐसे ही हो रहा होगा। हाँ जी, मौसम और बिजली दोनों ही चमक रहे हैं और बारिश हो सकती है, पक्का पक्का। आपने लाइनें लिखी हैं और वो लाइनें जरा मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा सभी को। जिनकी माँ नहीं होती वो माँ को तस्वीरों में नहीं यादों में ढूंढते हैं। दुनिया चाहे कितना भी प्यार दे, माँ की कमी के आंसू अक्सर आंखों में ही रहते हैं। माँ चली जाती है मगर उसकी यादें जिंदगी भर दिल में जिंदा रहती। क्या सुंदर बातें लिखी आपने। माँ के लिए तो जितना भी लिख लो ना उतना कम है। एक सॉन्ग जरूर सुनाएंगे हम आपकी माँ के लिए, डेडिकेट करते हुए आपकी तरफ से भी अपनी पसंद का। हेलो नमस्ते अखिल भाई, कैसे हैं आप? आशा है ठीक ठाक ही होंगे। बिल्कुल जी ठीक ठाक हैं। गाने के बोल रहे हैं, दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा ढूंढ उठा, मूवी है दोस्ताना, तो ज़रूर इस गाने को भी हम करेंगे प्ले। सुनने वाले हैं दलजीत सिंह जी, कोहली, रीना कोहली, देव कोहली, सरगम कोहली, महादेव कोहली, कोहली परिवार के सभी सदस्य कपूर कंपनी मुरादाबाद से। तो ज़रूर ज़रूर ये भी पूरा होगा आपका। एक मैसेज और है हमारे पास। हेलो अखिल सर, नमस्ते, गुड इवनिंग, फूल बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, सुगंध बनकर दिल में उतर जाएंगे, जरा महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर रह के भी पास नजर आएंगे। सिद्ध यादव, विनायक यादव, रंजीत यादव, अनुराधा यादव। सॉन्ग है मेरी किस्मत मैं तू नहीं शायद, तो ज़रूर ये सॉन्ग शायद हमारी किस्मत में है या नहीं, ये भी चेक करते हैं आज। और बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब होने वाला है टाइम। आज हमारे पास एक मैसेज आया था, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और आप सब समझ ही गए होंगे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ वाले हमारे यूनिक लिसनर्स कौन हैं। नमन, निरांशी, अमित, ऋतु, शंकर लाल जी की ये फरमाइश आई थी जो बीच में प्ले हो गई है, और उन्हें याद होगा कि आज तो उनका पसंद का गाना जल्दी ही उनकी लिस्ट में आ गया। तो चलिए अब करते हैं बाय बाय। जाने से पहले लास्ट कॉल लेते हैं अपने लिसनर की, देखते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, साकिबुल्ला की जारत के पीछे नक्की पैसे, मोहम्मद उस्मान और साकिब गुप्ता।
0: कभी कभी मुझे लगता है आप बताते बताते कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: बंधन पिक्चर का, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों जन्मों का।
0: क्या बात है साहब, आप कितने जन्मों का बंधन है ये और बता दीजिए आप।
1: जब तक ये बंधन है साहब।
0: पीछे पीछे आपकी नदी में उफान तो नहीं आ रहा है?
1: नहीं, आपके होते हुए कैसे उफान आ जाएगा?
0: सर क्यों नहीं आ सकता सर, ध्यान रखिएगा पीछे, कभी पता आप सो रहे हो जल स्तर बढ़ जाए रात में।
1: क्या पता मोड़ और कैसे कर दे आप।
0: कोई शायरी सुनाना चाहेंगे उस्मान जी आप?
1: जी, जीने न देंगी आंखें तेरी गिर रुबा मुझे, इन खिड़कियों से जाग रही है सजा मुझे, सो तो उम्मीदें बांधती है एक एक निगाह पर, मुझको ना ऐसे प्यार से देखा करे कोई।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: सैकड़ों फूल मोहब्बत के उधर खिल उठे, सैकड़ों फूल मोहब्बत के उधर खिल उठे, तुमने हंसती हुई नजरों से इधर देख लिया।
0: अब आप ये बताइए, आपने स्क्रॉल करते हुए देखा है या कहीं पेपर पे लिखा देखा है? अटक अटक के आ जाते हैं, मगर बहुत ही खूब शायरी, खूब अच्छे आपके अल्फाज हैं। मुझे पता है आप शायर बनाए, मैं आपको शायर बना के ही छोड़ूंगा उस्मान जी। आप जिस तरीके से अपना एड्रेस बताते हैं ना, मैं ही अपना एड्रेस भूल जाता हूँ। मैं ही लगता हूँ अगर कल को मुझसे कोई एड्रेस पूछेगा तो मैं भी शाकिबुल्ला की पूरी एक लाइन जो है ना, नदी के पार और नदी के उफान से, वही लिखवा दूंगा उसे एड्रेस।
1: चलिए, गुलाब का खुशबू तो लीजिए, खाते मुझ गरीब का जवाब तो दीजिए। अगर मैं भी किताब होता तो सीने से लगा होता, बाद इम्तहानों के रद्दियों में पड़ा होता।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया शायरी ये वाली, तो आपको याद थी, आपने एक झटके में बता दी। तो अच्छा था बिल्कुल। जैसी मुझसे भी कोई पूछता है साहब ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ, मैं एकदम सुना देता हूँ ट्विंकल ट्विंकल, उसे तो मेरी ट्विंकल ट्विंकल फेमस हो गया। चलिए उस्मान जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपने कॉल करी, और बहुत ही कहते ना शायरी सच में आपने दिल से बोली है, ये बात तो बिल्कुल कहेंगे। चलिए साहब, शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे हमारे उस्मान जी। कहते ना, जो दिल से निकलती बातें तो बिल्कुल एकदम दिल से बोलते हैं, खुश होके बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है बिल्कुल जिंदा दिल इंसान है। तो आज इनकी पसंद का गाना ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और ये हमेशा प्यार का बंधन रहेगा इनके साथ। और कहते हैं ना कि अब हो गया है चलने का समय। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल हम ठीक फिर मिलेंगे 9 बजे, दिल से दिल की बातें होंगी और कुछ ऐसी भी होंगी जो आपको भी याद रहेंगी। तो अपनी फरमाइश, अपने दिल के करीब का जो भी गाना है ना, ज़रूर हमें बताएं कि कौन सा है। 9837896896 ये नंबर है साहब, सेव कर लीजिए और ज़रूर कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
3: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
2: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।